0: Traffic solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
1: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी। सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
2: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
1: K2 ड्राइव मतलब
2: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है। लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लव फील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
1: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
2: 100%
3: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2 ड्राइव.com और कॉल 214-814-0402। K2 ड्राइव, डायलिसिस स्मार्टेस्ट फ्लीट पार्टनर।
4: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
5: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
6: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, khoobsurat libas khushiyon ko dugna kar deta hai.
7: Har khushi mein aapke saath Manyavar Mohe, traditional celebration wear for men, women and children, crafted with exquisite blended fabrics. Manyavar Mohe, located on Regent Boulevard of 635 East in Irving.
8: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
9: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
10: कौन सा?
9: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
10: अरे सारे तो सेम है।
9: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला।
10: ओ हाँ, ये तो अलग है।
11: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
12: Hi, I'm Rajkumar Rao, and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

Guys, guess it. I am totally okay. Guess what? Who's back in the studio? Hunji, it's me, your bestie. Ippy the hippie, Hunji, that's right. And it is Wednesday evening, and y'all are listening to An Evening in Dallas. Digga digga, digga digga. अब मेरे पास ड्रम्स है नहीं तो टेबल से ही काम चलाना पड़ेगा क्योंकि टेबल ड्रम्स भी अपनी अपना फील होता है यार. आई मीन इट्स ओन थिंग. बचपन में हम सब करते थे टेबल ड्रम्स. अभी भी रेडियो पे भी हम वही कर रहे हैं. आज तो भाई क्या सही दिन था. मैं सुबह 9 बजे से काम कर रही हूँ. आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही ओवरवर्कड हूँ. पता है मैं आजकल दीज डेज आई एम पुलिंग अ 13 to 14 hour वर्क डे. इट्स मैडनेस. बट यू नो वॉट, आई लव एवरी मिनट ऑफ इट. आई लव इट. आई एम गेटिंग टू डू थिंग्स दैट आई लव टू डू. ऐसा नहीं है कि मैं पैसे वगैरह कमाने के लिए मैं ऐवें सी कोई जॉब कर रही हूँ जिसमें मेरा मन नहीं है और मेरे को सब बोल रहे हैं हाय आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस वर्क. ये पता नहीं क्या करा रहे हैं. आई लव एवरी मोमेंट ऑफ माई वर्क एंड दैट आई थिंक दैट इज एन इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल ड्रीम दैट आई हैव रियलाइज्ड. कि भाई लोग सारी ज़िंदगी ऐसा काम ढूंढते हैं जिसमें उनको मज़ा आता है. भाई मुझे तो इतना मज़ा आता है आपके साथ बातें करने में, सारे दिन गाने सुनने में, सुनाने में और सिखाने में. वाह वाह क्या दिन गया है. ठीक है थक जाती हूँ, कोई बात नहीं, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. अभी नहीं करेंगे यार हसल तो बाद में कब करेंगे. 70 साल की उम्र में थोड़ी ना हसल करेंगे. अभी आप जब तक यंग हो हसल हसल अवे हसल अवे. आजकल तो इकोनॉमी इतनी हार्ड हो गई है, एवरी वन नीड्स अ साइड हसल एनी वेज. सो एनीवेज दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय उमर ख्वाजा. अगर आप किसी एक्सीडेंट में फंस गए हैं सो प्लीज डू कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा एंड ही विल कम एंड फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कॉम्पेंसेशन दैट यू डिजर्व. अगर आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ डील डील करके थक गए हैं देन डोंट बी स्ट्रेस्ड. आपको सिर्फ उमर ख्वाजा जी की जरूरत है एंड ही विल मेक श्योर दैट यू आर कॉम्पेंसेटेड. क्योंकि जब तक आपको अपना पैसा नहीं मिलेगा उनको आपको पैसे देने की जरूरत ही नहीं है ना. यू डोंट पे अंटिल यू विन. फॉर अ फ्री कंसल्टेशन कॉल 4693005046. दैट इज राइट. एंड यू कैन विजिट अटर्नी ओमर डॉट कॉम. भाई आज मैंने शुरू किया बहुत सारे गानों के साथ. दे वर ऑल अराउंड द सेम वाइब. टुडे वी आर फॉलोइंग अ डिस्को पार्टी थीम वाइब क्योंकि यार वेडनेसडे हो चुका है. आई नीड अ ब्रेक, यू नीड अ ब्रेक, वी ऑल नीड अ ब्रेक. इट्स ऑलमोस्ट मिड वीक. बस 2 दिन और हैं. 2 दिन किसी तरह से निकाल लो. फिर अगले फिर वीकेंड तो आ ही जा रहा है. फ्राइडे नाइट से तो वीकेंड शुरू करते हैं यार. लेकिन आई विश थर्सडे नाइट से भी हम वीकेंड शुरू कर सकते हैं. उसी से रिलेटेड गाइज, मैंने कल बोला था आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दिस अमेजिंग आर्टिस्ट कॉल्ड रश्मीत कौर, हु इज बाय द वे जस्ट सो यू नो, येस शी इज एन इंडी आर्टिस्ट. बट यू नो वॉट गाइज, एवरी सिंगल इंडी आर्टिस्ट हैज बिन अ पार्ट ऑफ सम काइंड ऑफ अ बॉलीवुड मूवी दीज डेज. आई मीन इंडी इज सच अ बिग फोर्स. इंडी मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट. दे आर नॉट साइन टू एनी लेबल और समथिंग लाइक दैट. बट मोस्ट ऑफ देम हैव बिन साइन टू एटलीस्ट वन बॉलीवुड सॉन्ग दैट यू ऑल हैव हर्ड. पर आपको पता नहीं है कि इस बंदे ने ये गाया. तो गाइज कल ना मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रही थी. आई वाज लाइक यार रश्मीत कौर को देखने चलते हैं बिकॉज मतलब शी इज कमिंग ऑन 1 जुलाई एंड इट्स नॉट लाइक अ मैसिव शो. मतलब दिलजीत जैसा मैसिव शो तो नहीं है. इट्स नॉट इन अ बिग ऑडिटोरियम, इट्स एक्चुअली इन अ क्लब. सो द वाइब इज रियली वेरी चिल. इट्स गोइंग टू बी एट क्लब डाडा इन डैलस. आई थिंक आई बिलीव इट्स इन डीप एलम या डीप एलम के पास है. एंड आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज इट्स गॉट लाइक अ यंग थीम एंड हर म्यूजिक इज ऑल्सो लाइक सुपर ट्रेंडी, सुपर मॉडर्न. देयर इज अ लॉट ऑफ रैप हैपनिंग इन हर ओरिजिनल सॉन्ग्स, हिप हॉप. If you're into that kind of stuff, you should totally go for her show. You know, I'm really excited about it. But 1st of July को, और by the way, मैं ये promote नहीं कर रही हूँ. मुझे इसके extra पैसे नहीं मिल रहे कोई. मैं इसीलिए बोल रही हूँ because I am genuinely excited. I really like her music. कल मैंने रश्मीत कौर का गाना बजाया था, हाय रे दुनिया जालिम है यूं काका करती जाए. लेकिन अभी मैं आपके लिए एक और गाना बजाने वाली हूँ रश्मीत कौर का, जो आपको शायद पता है पर आपको ये नहीं पता कि रश्मीत कौर ने गाया. सो एंजॉय दिस नेक्स्ट ट्यून.

गाइज हाउ आर यू. अभी तो मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग सी कॉल आई. इंटरेस्टिंग सी नहीं, सारी कॉल्स ही इंटरेस्टिंग होती है वैसे तो. मैंने कुछ दिनों पहले, एक्चुअली कुछ दिनों पहले तो नहीं, पिछले हफ्ते आई हैड अनाउंस्ड अबाउट दिस इंडियन मैच मेकिंग इवेंट. बिकॉज भाई आज के

0: गाइज हाउ आर यू। अभी तो मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग सी कॉल आई। इंटरेस्टिंग सी नहीं, सारी कॉल्स ही इंटरेस्टिंग होती है वैसे तो। मैंने कुछ दिनों पहले, एक्चुअली कुछ दिनों पहले तो नहीं, पिछले हफ्ते आई हैड अनाउंस्ड अबाउट दिस इंडियन मैच मेकिंग इवेंट। बिकॉज भाई आज के ज़माने में पीपल आर नॉट सोशलाइजिंग, और अगर सोशलाइज कर भी रहे हैं, इन पर्सन कोई आपसे आके बात भी कर रहा है, सो इट्स अ लिटल स्केच। यू नो, सब सोच रहे हैं कि हाय बड़ा क्रीप है या बड़ी, मतलब यू नो वी ऑल लुक एट इट विद अ लॉट ऑफ सरप्राइज, है ना। तो इसीलिए देर इज एन इंडियन मैच मेकिंग इवेंट। अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस इवेंट, आई डोंट गेट पेड फॉर इट, बट इफ आई केम अक्रॉस दिस ऑन माई फीड, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू शुड गो। इट इज ऑर्गेनाइज बाय, देयर इंस्टाग्राम हैंडल इज इंडियन इंडियन अंडरस्कोर देसी अंडरस्कोर सिंगल्स अंडरस्कोर मीट, एंड द इंडियन मैच मेकिंग इवेंट इज ऑन June 28th फ्रॉम 1 PM टू 6 PM एट फेयरफील्ड बाय मैरियट इन एंड स्वीट्स इन कोरिंथ। तो देयर इट्स फॉर ऑल एज ग्रुप्स। इफ यू हैव फाउंड योर सेल्फ टू बी सिंगल एंड रेडी टू मिंगल अगेन एट द एज ऑफ 30, 40, 50, या फिर यू हैवेंट इवन स्टार्टेड मीटिंग पीपल येट एंड यू हैवेंट एक्सप्लोर्ड द यू नो डेटिंग ऐप सीन येट इन योर 20s, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर ऑल एज ग्रुप। सो डू चेक इट आउट, बिकॉज आई नो इट्स रियली हार्ड टू मीट पीपल दीज डेज यू गाइज। सो मे बी वी शैल टॉक अबाउट इट। आज मैं सोच रही थी कि आज क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे, क्या थीम पे बात करेंगे, बट उसी से याद आया आज तो मेरे पास थीम है, हम इसी के बारे में बात करेंगे। हाउ टू अप्रोच गर्ल्स स्लैश गाइज इफ यू वांट, ओके। डू नॉट डू वट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, आई मीन आई डोंट गो अप्रोच पीपल, बट डू नॉट डू वट पीपल हैव आस्क्ड मी, ओके। एनीवेज, दिस नेक्स्ट पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय श्री कृष्णा ज्वेलर्स। At Shri Krishna Jewelers, jewelry is more than an accessory. It's a reflection of tradition, elegance, and timeless beauty. From classic gold designs to sparkling diamonds, and from intricate kundan to stunning polki collections, every piece is crafted to celebrate life's special moments. Now they welcome you at their new location in Frisco, Shri Krishna Jewelers, crafting fine jewelry and cherished memories since 1967. Bhai, agar aapko gehne wehne khareedne hain, to jao, hum to ja rahe hain break pe, okay?
1: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
2: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
1: Renew?
2: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carats. It from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
1: What better way to celebrate than with something timeless?
2: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
4: Kya matlab?
5: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
5: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
4: Ab to karna hi padega, madam.
6: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke योग है।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
11: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
12: Excuse me, it's called being loyal.
11: It's called being predictable.
12: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
11: And what's so special at Neon Cactus?
12: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of

गाइस, कौन कौन सुन रहा है ये गाना अभी 2026 में? भाई हम सारे सुन रहे हैं क्योंकि आप सब रेडियो पे सुन रहे हैं। हाँ जी यार, ये गाना तो लाइक इट्स सुपर नॉस्टैल्जिक। आई थिंक मोर देन द सॉन्ग, व्हाट आई लव्ड वाज द आइडिया ऑफ द वीडियो वेयर शी गोज टू दिस ब्यूटीफुल आइलैंड और वहां पे अपनी लाइफ जी रही है अकेले। शी इज ऑन द सोलो वेकेशन, अभी जीप चला रही है, वहां पे खाना वाना खा रही है, गरीब बच्चों को खाना खिला रही है। मतलब यू नो, इट वॉज काइंड ऑफ ग्लैमरस, यू नो। इट वॉज लाइक, ओ एंड शी इज हैविंग द टाइम ऑफ हर लाइफ, सोलो डेट एंड ऑल दैट। आई मीन, आई एम काइंड ऑफ लिविंग दैट लाइफ राइट नाउ। और अगर आप मुझसे ये पूछो, आई विल से दैट ये दुनिया बड़ी रंगीली, बट फॉर लाइक अ 20 समथिंग ईयर ओल्ड समबडी हु इज नॉट ट्रेवल्ड दैट मच, आई डोंट नो। तुम्हें कैसे पता दुनिया रंगीली है या नहीं है? तुम बाहर जाके तो देखो पहले। तो दिस इज माई मैसेज टू ऑल यू यूथ फोक, यंग फोक। अगर आप 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 24, जो भी है, वट एवर योर एज इज, एक्चुअली इट डजेंट मैटर, इवन इफ यू आर नॉट यंग, गो आउट, ट्रैवल द वर्ल्ड, एक्सपीरियंस द वर्ल्ड। क्योंकि दुनिया घूम कर ही हमें पता चलेगा दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और हम तो उसी चीज़ में फंसे हुए हैं। लेकिन आप दुनिया घूमोगे तो आपको मज़ा आएगा, कितना कि कितने अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, कितनी सारी बातें होती हैं करने के लिए, है ना? तो एनी वेज गाइज, मेरे एक रेगुलर लिसनर है जिमरान, हु इज सच अ ग्रेट किड, आई मीन आई लव हिम। जिमरान, थैंक्स फॉर कॉलिंग एवरी टाइम आई एम ऑन एयर एंड यू कॉल मी एंड लाइक ऑलवेज से अ हाई, आई लव दैट। दिस सॉन्ग गोज आउट टू जिमरान। भाई सब लोग जिमरान को ऑल द बेस्ट बोलो, क्योंकि जिमरान का कल इंटरव्यू है। ही इज इंटरव्यूइंग टू बी अ फ्लाइट अटेंडेंट एट सम एयरलाइन, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी होप यू रियली गेट दैट जॉब, ओके? बिकॉज आई थिंक लाइक यू रियली डिजर्व इट, एंड यू आर सच अ पीपल्स पर्सन, आई थिंक यू डू सो वेल एट दिस। सो मेरी तरफ से एंड पूरे DFW की तरफ से जिमरान ऑल द बेस्ट, डोंट ब्रेक अ लेग, क्रैक द इंटरव्यू, ओके?

मैं भी मुसाफिर हूँ, घर पर मेरा ठीक ठिकाना है। मैं हर रात को घर जाती हूँ अपने एड्रेस पे, जो मैं एयर पे नहीं बताऊंगी क्योंकि वो बड़ा रिस्की बिजनेस हो जाएगा। लेकिन गाइस, जो जो मेरा रेडियो शो सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दी ब्यूटिफुल कॉल्स। मैं आपके सारे रिक्वेस्ट भी लगा रही हूँ। आज आज रिक्वेस्ट डे है। हाँ जी हाँ जी, अगर आपको कोई गाना है दैट यू रियली वॉन्ट हियर ऑन द एयर, यू कैन कॉल मी एंड रिक्वेस्ट इट। लेकिन जिनको गिव अवे चाहिए, हाँ जी, चंडीगढ़ बाइट्स का अमेजिंग कढ़ाई पनीर एंड कढ़ाई चिकन का गिव अवे है 8 बजे के बाद। तो आप रेडियो सुनते रहिए और गाने भी सुनते रहिए, क्योंकि

गाना जाता है वन ऑफ माय एब्सोल्यूट फेवरेट लिसनर्स के लिए. मलिक जी, थैंक यू फॉर लिसनिंग. आप कितने अमेजिंग हैं, आप मुझे इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं हर बारी मुझे कॉल करके. मलिक जी एक्चुअली मिस्ड माय शो जिसमें मैं सुष्मिता सेन के बारे में बात कर रही थी. भाई मलिक जी, ये आपके लिए सुष्मिता सेन जी का गाना, उनका गाना तो नहीं है खैर, आई मीन शी हैज़ डांस्ड इन दैट सॉन्ग, बट मुझे नहीं पता था ये ह्यूस्टन में शूट हुई थी. बाय गॉड, मुझे आई हैड नो आइडिया कि इसको ह्यूस्टन में शूट किया था, बट उन्होंने मुझे बताया एंड दैट वाज काइंड ऑफ कूल टू नो. फन फैक्ट, हाँ.

0: भाई जो लोग गिव अवे के लिए कॉल कर रहे हैं 5-10 मिनट पहले से, आप थोड़ा धैर्य से काम लीजिए, क्योंकि गिव अवे तो 8 बजे के बाद होगा। पहले तो अभी एक थोड़ी सी मैं अनाउंसमेंट करूंगी, फिर हम ब्रेक में जाएंगे, फिर ब्रेक से आके गाना बजेगा, फिर होगा गिव अवे। तो अगर आपको कुछ फ्री गिव अवे जीतना है, फ्री फूड, वी ऑल लव फ्री फूड, आई गेट द पैशन फॉर इट, ओके। लेकिन थोड़ा धैर्य से काम रखिए भाई, धैर्य से ही आगे बढ़ती जाती है जिंदगी। वैसे तो नहीं, पता नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट पेशेंस इज अ वर्च्यू, इट इज डेफिनेटली अ वर्च्यू, है ना। यू हैव टू लर्न टू बी पेशेंट इन लाइफ। पेशेंस डजन कम विद फॉर एवरी वन नेचुरली। मेरे को तो बिल्कुल पेशेंस नहीं है, स्पेशली माई जनरेशन, मिलेनियल जनरेशन, वेयर एवरी थिंग वॉज लाइक फास्ट फूड एंड एवरी थिंग। पेशेंस इज नॉट ईजी फॉर अस, बट समटाइम्स वी मस्ट प्रैक्टिस इट टू बिकम, यू नो, जेन, टू गेट दैट जेन पावर, यू नो, इन आवर माइंड्स एंड एवरीथिंग। एनी वेज, इनफ ऑफ टॉकिंग गाइज, देर आर सम रियली कूल इवेंट्स हैपनिंग। क्या क्या इवेंट्स हो रही हैं? नेशनल आउटलेट शॉपिंग डे है। चलो, पैसे उड़ाने का मौका मिल गया, वाह वाह। जून 11 से जून 14 के बीच में इट्स नेशनल आउटलेट शॉपिंग डे। तो अगर आपके घर के आसपास आउटलेट मॉल्स हैं, जो कि फन एशिया के ऑफिस के पास तो है एलन में, देन यू मस्ट गो फॉर दिस 4 डे शॉपिंग इवेंट। यस, दैट इज राइट, शॉपिंग इवेंट। देयर इज गोना बी लॉट्स ऑफ सेल्स एंड एवरीथिंग। लेकिन अगर आपको वहां नहीं जाना है, सो देर आर सम अदर कूल इवेंट्स हैपनिंग दिस वीकेंड। देर इज ए नॉर्थ डैलस टॉय शो। गाइज, दिस इज फॉर ऑल योर फैमिली वाला पीपल, ऑल योर फैमिली पीप्स, ऑल योर बच्चाज। अगर आपको जाना है नॉर्थ डैलस टॉय शो देखने, देन यू कैन गो टू कोर्टयार्ड बाय मैरियट इन डैलस और एलन में। एक्चुअली नो नो सॉरी, कोर्टयार्ड बाय मैरियट इन एलन। इट फीचर्स 130 टेबल्स ऑफ विंटेज एंड मॉडर्न टॉयज, कॉमिक बुक्स, हॉट व्हील्स, पोकेमॉन कार्ड्स, कलेक्टेबल्स, यू कैन इवन बाय देम, ओके। मतलब ध्यान से लेके जाना, बच्चों को संभाल के लेके जाना, नहीं तो बच्चे ऐसे इवेंट्स में जाके ना पागल होता है, मम्मी ये भी चाहिए, मम्मी वो भी चाहिए। आई टोटली गेट इट। मेरे बच्चे हैं नहीं, बट मेरी नीस है, तो मुझे पता है कैसे होता है सब कुछ। उसके अलावा अगर आपको कुछ और इवेंट्स करनी है, फ्राइडे जून 19th से सैटरडे जून 20th तक, एंड द इवेंट स्टार्ट्स एट 9 AM बाय द वे, हिल्टन गार्डन इन In Allen and in Dallas, there is a 2-day crafting and cropping event happening, which is celebrating the 20th anniversary of Just Crop. And it's $50 for a day and you get to craft, and $85 for both days. In case you want to do some crafting stuff and you need something to do over the weekend, then this is a great event to go to. There's also Father's Day Market at the Hub in Allen, if you're interested in that. And that is on June 21st, Sunday, 12 baje, dupair ke 12 baje. It is a holiday-themed community market showcasing local gifts and unique items for perfect Father's Day shopping. Bhai, Father's Day aa raha hai. Ab apne father ke liye aapne kuch liya ki nahi? Did you say thanks to your dad today? है ना, वी मस्ट हैव मेड सो मेनी सैक्रीफाइसेस फॉर अस टू बी हियर, सो मेक श्योर यू थैंक योर डैड, ओके। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट, देर इज ए बीडेड बीच हैट वर्कशॉप हैपनिंग ऑन जून 11th, विच इज टुमारो एट 7 PM एट द हब ऑल्सो, सो यू कैन सिट देर एंड मेक योर ओन हैट्स। एंड देर इज अ बेसिक वायर रैपिंग वर्कशॉप ऑल्सो ऑन ट्यूजडे जून 23rd। वो तो बाद में, उसकी अनाउंसमेंट मैं बाद में करूंगी। चलो अभी थोड़े से ब्रेक में जाते हैं, ब्रेक के बाद आके आई विल प्ले सम मोर रिक्वेस्ट एंड गिव अवे।
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2, सैंगर टेक्सास, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन, ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG FinTax, ऑफिशियल Injury Law Partner, the Law Offices of Omar Khwaja, in association with Passion Health Primary Care.
2: Zindagi ek safar hai suhana. यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़ावे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़ावे, सुइट 205, फ्रिस्को।
3: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
4: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
3: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
4: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
3: ये क्या होता?
4: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
5: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
6: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
7: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth at mytimeequity.com for professional advice.
8: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
9: Calculating route, rerouting.
8: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है।
9: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
8: क्यों?
9: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं। Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
8: अच्छा तो सीधा वही ले चलो।
5: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
9: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
5: कफिंग और स्नीजिंग एट होम, योर एयर डक्ट्स मे बी टू ब्लेम, एंड क्लॉग्ड ड्राई वेंट्स कैन इवन कॉज फायर्स। डक्ट टाइम रिमूव्स डस्ट, पोलन, एलर्जेंस एंड लिंट, गिविंग यू क्लीनर एयर, बेटर हेल्थ, एनर्जी सेविंग्स एंड पीस ऑफ माइंड। सर्विंग द DFW एरिया एंड 15+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विद CSIA सर्टिफाइड टेक्नीशियंस एंड फ्री एस्टिमेट्स। फन एशिया लिसनर्स गेट $100 ऑफ डक्ट क्लीनिंग प्लस फ्री dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jitu Patel at 972-877-2500 or visit callducktime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
10: Chicken banana.
11: Chicken banana?
12: Bro, banana nahi, banana. Matlab, make the chicken right.
5: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
13: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khanzada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye The Jago Times available hai ek click par, thejagotimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada 682-551-6500. The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
14: भूख लगी
15: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
13: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
16: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी.

right, guys, आप ready हैं? Phone number dial almost करके पहले मत dial करना भाई. अगर आपने पहले dial कर दिया और मैंने बड़ा मुश्किल सा गाना बजा दिया copycat वाला, तो आपको giveaway नहीं मिलेगा. तो वो थोड़ा embarrassing हो जाता है कि आप call करोगे तो हमें तो सवाल ही नहीं पता. तो भाई पहले सवाल सुन लो, फिर कॉन्फिडेंस के साथ डायल करना. पता चले कई बार क्या होता है, मेरे पास कॉल आ जाती है और लोगों को आंसर ही नहीं पता होता. मैंने कहा भाई पहले क्वेश्चन तो सुन लो. आप रेडी हैं गिव अवे के लिए? भाई इफ़ यू प्लेड माय गेम देन आपको पता है मैं एक गाना बजाने वाली हूँ. अब वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, हिंदी तो नहीं होगा, खैर हिंदी आपको आंसर करना है. बट वो जो क्वेश्चन होगा वो है, आप मैं एक गाना बजाऊंगी, इट कुड बी इन इंग्लिश, इट कुड बी इन पंजाबी, इट कुड बी इन बंगाली, इट कुड देखो आ गई कॉल मेरे पास. मैंने सवाल ही नहीं पूछा अभी तक. भाई ठंड रखो बाजी, रुको पहले ही कॉल आ रही है. एनीवेज मैं नहीं उठा रही अभी कॉल, मैं पहले सवाल बोलती हूँ फिर मैं कॉल उठाती हूँ. रुको ठीक है. So I'll play a song. It's in any language and you have to tell me what is the copycat Hindi song of that song. Okay? Chalo, ready? And here we go.

0: गाइस, आपने अपने फ्री टाइम में कभी वो वाला डांस ट्राई किया है जो संजय दत्त और माधुरी दीक्षित वो करती हैं? दैट डांस मूव, अपेरेंटली इट्स कॉल्ड अ शफल. ओके, आई हैव ट्राइड इट सो मेनी टाइम्स एंड फेल्ड एवरी सिंगल टाइम. माई लेग्स डोंट मूव दैट फास्ट. आई डोंट नो हाउ दे डिड इट. मे बी दे यूज्ड अ फास्ट फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी बैक देन, क्योंकि AI तो उस टाइम पे था नहीं. बट आई एम होपिंग, और मतलब आई डोंट नो अबाउट माधुरी दीक्षित, बट संजय दत्त मे हैव यूज द फास्ट फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी बिकॉज इट्स सो ऑन पॉइंट. हाउ कैन समबडी कैच एवरी सिंगल बीट? लाइक इट्स इनक्रेडिबल, राइट? आई मीन आई हैव ट्राइड इट सो मेनी टाइम्स. मैं अभी स्टूडियो में ना दोबारा ट्राई करने वाली हूँ. जब मैं अभी बातें करने का रखूंगी, गाना एक और बजाऊंगी, तब मैं आई एम गोना गो एंड ट्राई दिस डांस मूव. बट एनी वेज गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर वंडरफुल कॉल्स. मुझे आपको मज़ा नहीं आता कभी इतने सारे गाने सुन के हम, क्योंकि मेरा शो है, हम लोग जो कॉपी कैट गिव अवे करते हैं, आपको भी समझ रही, मतलब ये नहीं फील होता कि यार बॉलीवुड में तो सारे कॉपी करे हुए गाने ही भरे हैं, मतलब इतने सारे कॉपी कैसे हो सकते हैं, राइट? आई नो, ऐसा ही है, क्या करें, कई बार इंस्पिरेशन थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है तो हम पूरा उसको रिप ऑफ कर ही डाल देते हैं. एनी वेज गाइज, लेट्स प्ले अनदर सॉन्ग. एंड अगर आप मेरे को पहले कॉल कर रहे थे एक रिक्वेस्ट करने के लिए, अनफॉर्चुनेटली आपने गिव अवे के टाइम पे कॉल कर दिया तो वो तब मैं कॉल नहीं ले पाई. अगर आपको कोई और रिक्वेस्ट करना है, प्लीज डू कॉल मी अप. आई एम टेकिंग रिक्वेस्ट रे, यस वी आर टेकिंग रिक्वेस्ट अक्रॉस जॉनरस. But it has to be good, high quality songs. You know, we can't just play ऐसा कोई गाना, ठीक है? चलो तब तक के लिए ये वाला गाना enjoy करते हैं. I love Bali Sagu. If you are a millennial and if you grew up in the late 90s, early 2000s, you know what I'm talking about.
1: It's not working. It's just not happening.
0: But it is working, isn't it? It is totally working.

भाई केसरिया से याद आया। बाय द वे गाइस, डिड यू सी द न्यूज़? आई डोंट नो, ये इंस्टा की अलग न्यूज़ है, ये वे मेन लाइन न्यूज़ नहीं है, लेकिन अपेरेंटली नेपाल हैज जॉइंड जापान इन बैनिंग इंडियन मैंगोज। ये जो हम इतना प्राउडली बोलते हैं ना, इंडियन मैंगोज, इंडियन मैंगोज, जो पूरी दुनिया इम्पोर्ट करती है, अपेरेंटली नेपाल ने भी बैन कर दिया। यार इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जापान ने पहले बैन किया हुआ था 2006 में, फिर उन्होंने बैन उठा दिया था उसके बाद, पर अब उन्होंने दोबारा बैन कर दिया है और नेपाल ने भी बैन कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब पहली बात तो ये कौन से वाले मैंगोज है? अब केसर से मुझे याद आया, भाई ये वाले मैंगोज है। अल्फांजो बैन हो चुका है, केसर मैंगो बैन हो चुका है, जो आई थिंक गुजरात वाले रीजन से आता है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। लंगड़ा बैन हो चुका है, लंगड़े का सीजन बाय द वे, एटलीस्ट जो नॉर्थ इंडिया वाले लोग हैं उनको पता है, लंगड़े का सीजन ये जून महीने के बाद आता है। जून के बाद, जुलाई टू अगस्त इज लंगड़ा सीजन, और उसके पहले वाला होता है सफेदा या बंगना फली का सीजन। ठीक है, तो ये जो चारों मेन वराइटीज है ना, अल्फांजो, केसर, लंगड़ा और बंगना फली, ये चारों बैन कर दिए गए हैं। क्यों? बिकॉज जैपनीज प्लांट इंस्पेक्टर्स दे फाउंड दैट इंडियाज एक्सपोर्ट का जो ट्रीटमेंट है, जो इन आम के लिए है, एंड देयर एक्सपोर्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज वर नॉट अबाइडिंग बाय द सैनिटरी स्टैंडर्ड्स टू विच इंडिया हैड अपेरेंटली अग्रीड टू। तो जापान ने इंडियन मैंगोज को फ्रूट फ्लाई कंसर्न, वो जो आपको नेट्स नहीं पता, आपके घर पे ज्यादा ह्यूमिडिटी कभी हो जाती है, बहुत सारे जिनके घर के प्लांट्स वगैरह हैं, वो छोटे छोटे छोटे काले काले मक्खियाँ टाइप की, बहुत ही छोटी छोटी होती है, वो घूमने लग जाती है। यू हैव सीन इट, इफ यू हैवन सीन इट, आप देखना कभी। तो या तो वो वाले फ्रूट फ्लाइज हैं, या फिर यू नो देयर सम अदर टू मच पेस्टिसाइड्स की वजह से, और ये लोगों ने ज्यादा अपेरेंटली इंडियन जो ट्रीटमेंट प्लांट्स है, बिफोर दे आर गेटिंग एक्सपोर्टेड, दे वर नॉट मेंटेनिंग देयर स्टैंडर्ड्स, एंड इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स द फ्लाइज वर स्टिल देयर। सिमिलरली नेपाल ने भी अभी बैन कर दिया है इंडियन मैंगो स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल, एंड राइजिंग नेपाल, विच इज लाइक अ न्यूज सोर्स, रिपोर्टेड दैट ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ पेस्टिसाइड

0: सिमिलरली नेपाल ने भी अभी बैन कर दिया है इंडियन मैंगो स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल. एंड राइजिंग नेपाल विच इज लाइक अ न्यूज सोर्स रिपोर्टेड दैट ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड बिकॉज द एक्सपोर्टर्स फेल टू मेंटेन क्वारंटीन प्रोटोकॉल्स. भाई ये तो दिस इज लाइक थोड़ी शर्मनाक बात, पर इसका एक फायदा ये होगा कि इंडिया में जो है लोग उनको ज्यादा आम मिलेगा, क्योंकि बाहर के एक्सपोर्ट कम जाएंगे तो इंडियंस को अपना आम खाने का ज्यादा मौका मिलेगा. गुटलियां नहीं गिनेंगे फिर, वो आम ही आम खाएंगे, गुटलियां नहीं गिनेंगे, है ना. नेपाल्स न्यू क्वारंटीन रूल स्टिप्युलेट दैट इंडियन मैंगोज मस्ट अंडरगो हॉट वाटर इमर्शन ट्रीटमेंट एंड पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस डिजाइन टू किल पेस्ट सच एज फ्रूट फ्लाई लावे एंड टू प्रिवेंट फंगल डिजीजेस. यस आई एम रीडिंग बट इट्स टू मेनी वर्ड्स गाइज, आई कांट मेमोराइज दिस स्टफ. ओके बट दिस एड्स टू अबाउट 40 आवर्स ऑफ प्रोसेसिंग एंड 22,000 पाउंड शिपमेंट making costs prohibitive. Matlab it's very expensive, so that's why that's the news. Okay, totally unrelated to the normal news of visa shiza, but koi baat nahi, kesar se mujhe yaad hai, chalo kesar aam ki bhi baatein kar lete hain na. To ye next wala gana main bajaungi break ke baad, jo bhi abhi hum 30 second mein break mein jane wale hain. But this next part of the show is brought to you by Texas Primary Care. For 13 years, Texas Primary Care Clinic has proudly cared for our community. Now growing with a brand new name and a second Frisco location, including Lenoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. They have primary care, urgent care, in-house labs testings, x-rays, CT scans, cardiac diagnostics, and Himalayan med spa services. So call them, no appointment.
1: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility, and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety, and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
2: Paid for by Mark Hill for Mayor.
3: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
4: Main shaadi karungi to Kareena wala designer lehenga pehen ke karungi. वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करो।
5: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
6: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
7: इतना सब और प्राइस?
6: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
8: मैं हीरो.
9: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
10: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
11: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
12: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
11: Renew?
12: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
11: What better way to celebrate than with something timeless?
12: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
13: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you.

0: watch this.
1: और गाइस कैसे हैं भाई? आज तो मैं बहुत बहुत धमाकेदार गाने बजा रही हूँ फ्रॉम द नॉस्टैल्जिया फीलिंग, बिल्कुल एकदम अर्ली 2000s, लेट 90s के इंडी सॉन्ग्स, इंडी पॉप सॉन्ग्स, यू नो द होल वेव ऑफ इंडी पॉप म्यूजिक दैट वाज हैपनिंग. बट एनीवेज, उसके अलावा आई सॉ दिस रियली अमेजिंग थिंग दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू गाइस टुडे. मतलब गर्मी से हम सब परेशान हैं, यू नो इट्स लाइक क्रॉसिंग ओवर 100 डिग्रीज ऑलरेडी इन टेक्सस. मतलब इंडिया में तो भाई 40-50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो जा ही रहा है, 50 तो नहीं जा रहा, खैर 40-50 के बीच में ही रह रहा है, बट इट्स स्टिल वेरी वेरी वेरी हॉट, लाइक इट्स नेक्स्ट लेवल हॉट. एनीवेज, तो उसमें मैंने ना बड़ी एक्साइट चीज़ देखी आज. मैंने पता क्या देखा? मैंने देखा एक आइसक्रीम वाले ठेले वाले भैया, ठीक है, वो जो इंडिया में अब चलते थे वो आइसक्रीम वाले ठेले नहीं होते, फूड ट्रक्स. सो दिस आइसक्रीम वाला भैया, इट वॉज ओवर 40 डिग्रीज इन दिल्ली एंड दिस भैया इज इन ओल्ड दिल्ली, और वो ना एक एक करके बंदरों को, एग्जैक्टली आपने सही सुना, बंदर, मंकीज, क्योंकि आपको अगर आप दिल्ली गए हो तो आपको पता है दिल्ली में मंकीज बहुत हैं, इतने ज़्यादा मंकीज हैं कि कई बार लंगूर बुलाने पड़ते हैं मंकीज भगाने के लिए. एंड आई एम नॉट किडिंग, अगर आपने कभी तुगलकाबाद फोर्ट के वहां से ड्राइव किया है देन यू विल सी पूरे हाईवे के ऊपर, पूरे रोड के ऊपर देर आर लाइन से मंकीज, मतलब अ होल फैमिली ऑफ मंकीज एक दूसरे के सर से जुएं निकाल रही हैं. इट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग टू वॉच, देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मंकीज, मंकीज विद रेड बॉटम्स एंड मंकीज विद नॉट रेड बॉटम्स एज वेल. सो इट्स क्वाइट फनी टू सी. बट एनीवेज, सो चेक दिस आउट, दिस भैया, दिस आइसक्रीम वाले भैया, वो ना अपने आइसक्रीम के ठेले में से वो जो पॉप्सिकल्स निकाल के, वो जो आइस कैंडीज नहीं होती, ऑरेंज कैंडी, कोला कैंडी वगैरह वगैरह, तो वो पॉप्सिकल्स निकाल के बेचारे बंदरों को वो आइसक्रीम खिला रहे थे फ्री में, और वो बंदर इतने खुश. एंड आई एम नॉट किडिंग, ये ना AI जनरेटेड वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, ये इंस्टाग्राम पे चल रहा है बाय दिस क्रिएटर ऑफ द ओनली वंडर मैन, एंड द वे यू स्पेल इट इज द THE ओनली WANDERMAN. He shared this video and I was just absolutely amazed. मैंने कहा यार कितनी sweet बात है, मतलब भैया भी animals पे भी तरस आ रहा है उनको कि animals पे भी ice cream खिला रहे हैं. Anyways, चलो एक गाना बजाते हैं, तब तक एक call उठाते हैं, and then we'll come back and talk some more.

गाइज मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप मेरे स्टोरीज सुन के उस पर रिस्पॉन्ड करते हो ना, दैट यू कॉल मी अप एंड यू टेल मी कि आपको मेरे वो भैया वाले बंदर वाली स्टोरी इतनी पसंद आई दैट इट टच्ड योर हार्ट. एक और उससे रिलेटेड एक और मेरे कॉलर थे, उन्होंने अपना नाम बताना भूल गए, मैं लिखना भी भूल गई, लेकिन उन्होंने ये बोला भाई आपको पता है उससे भी ज्यादा बंदर कहाँ मिलते हैं दिल्ली के अलावा. मैंने कहा कहाँ, कहते दिल्ली में ही मिलता है पर एक और जगह भी मिलता है इतने बड़े सारे बंदर. मैंने कहा कहाँ मिलते हैं, कहते 542 बंदर है टोटल वहां पे. मैंने कहा कहाँ, कहते पार्लियामेंट. तो ये गाना उनके लिए, उनकी रिक्वेस्ट के लिए. अरे क्यों तो हो जाए भाई.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury brilliance celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
1: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
2: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
3: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
2: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
3: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
4: Attention passengers, flight Punjab 001 to Chandigarh wale Irving is now boarding. Destination, real Punjabi flavor.
5: Arey yaar, Dallas mein Punjab?
6: Bilkul, Chandigarh wale, jahan butter chicken bhi asli aur naan bhi tandoor se garma garam.
1: From buttery curries and fresh naan to street-style Punjabi favorites, every bite takes you straight to Punjab. Shadi ho, party ho, ya corporate event, Chandigarh Wale brings live Punjabi catering straight to your celebration. Proudly awarded Best of Dallas for Indian Food by D Magazine. Skip the flight and take the shortcut to Punjab. Chandigarh Wale, Irving, where Dallas meets Punjab.
2: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी। डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी। फ्रॉम टैक्सेस टू सीएफओ एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com. प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज।
7: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at desigottalentus.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
8: Guys, how are we doing? It is our last hour. I hope you are enjoying the beautiful, beautiful music that I bring to you. क्योंकि भाई ये म्यूजिक ही तो हमारे लिए सब कुछ हो रहा है. अगर ये नहीं होगा तो कैसे चलेगा, है ना? तो इसी खुशी में आपके लिए मैं एक बड़ा अच्छा सा गाना पेश कर रही हूँ. तो आप ये गाना सुनिए, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट तो करते हैं. भाई मेरा काम है, वो अब मुझे करना पड़ेगा. आई एम सॉरी बट प्लीज़ बेयर विथ मी. कनेक्टिंग अमेरिका, विथ कनेक्टिंग अमेरिका यू कैन टर्न योर बिजनेस एक्सपेंसेस इनटू अ पावरफुल इनकम स्ट्रीम थ्रू अ यूनिक इंश्योरेंस बेस्ड स्ट्रेटजी डिजाइन टू बूस्ट योर बॉटम लाइन. एंड इट डजंट स्टॉप देयर, दे ऑल्सो हेल्प होम ओनर्स पे ऑफ देयर मॉर्गेज इन 10 इयर्स और लेस. सो डोंट वेट, call James today at 321-888-7345 or visit connectingamericafinancials.com and start turning your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash. Where everyone needs a side hustle. Maybe they can help you out, you know. Economy is very tough these days. Anyways, enjoy this song. We're winding down. It's our last hour. I hope you enjoyed today's radio show.

गाइज, आर यू एंजॉइंग द म्यूजिक? येस, वी आर टेकिंग रिक्वेस्ट. तो अगर आपको कोई रिक्वेस्ट करनी है तो आप जरूर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक घंटा और है आपके पास. ओनली 1 आवर, क्योंकि उसके बाद मैं जाने वाली हूँ और मेरे बाद कोई नहीं आने वाला है. तो आपको अगर कोई गाना, स्पेशल सॉन्ग रिक्वेस्ट करना है, तो अभी इज द मौका टू डायल, यू नो माई नंबर. या फिर दोबारा बोल दूँ? चलो बोल ही देते हैं. 972-235-5555. हाँ जी, एंड यू आर लिसनिंग टू इपी द हिपी ऑन फनेशिया. अभी मैं आपको जो गाना बजाने वाली हूँ, दिस इज एक्चुअली बाय वन ऑफ माई फेवरेट आर्टिस्ट. कुछ टाइम पहले मैंने ये गाना बजाया था, सो देन यू नो आई गॉट अ यू नो अ लिटिल क्रिटिक दैट प्लीज प्ले ओनली बॉलीवुड, बिकॉज दिस इज एक्चुअली अ पाकिस्तान आर्टिस्ट सॉन्ग. इट्स अ by this artist called Zeb and Hania. I absolutely love these two girls. They're actually graduates of Berklee College of Music. Lekin us time pe maine apni puri research kari nahi thi. I have been a fan of this duo for a long, long time. Unke sare gaane maine sune hue hain. Aur they have also traveled to India for the South Asian Music Festival and everything. Lekin guys, ye mujhe aaj pata chala hai ki Zeb ne to kitne sare Bollywood gaane bhi gaaye hain. So technically now this qualifies as Bollywood. So agar aapko nahi pata who Zeb and Hania is, they are a duo of two singers, Zeb and then Hania, and they have performed in this 2013 movie called Madras Cafe, जिसका गाना है कौन ये आया. हाईवे में भी ज़ेब ने गाना गाया है कॉल्ड सुहा साहा, विच वॉज कम्पोज बाय रहमान. एंड फितूर वाली मूवी में, 2016 की मूवी में, ज़ेब ने गाया है हमितांशु, कम्पोज बाय अमित त्रिवेदी. तो अब उनका इंडी गाना एक सुनते हैं, बिकॉज आई लव दिस वन. इट्स स्लाइटली ब्लूजी, स्लाइटली मॉडर्न, इट्स वेरी मूडी, परफेक्ट फॉर दिस आवर.

और आप सुन रहे हैं एन इवनिंग इन डैलस, बिकॉज इवनिंग में डैलस में हम क्या कर रहे हैं आज DFW में? यस, वी आर ईदर ड्राइविंग फ्रॉम वर्क या फिर हम घर पहुंच चुके हैं और आप गाने सुन रहे हैं एंड यू आर प्लानिंग टू गो टू बेड. भाई समर चल रहा है, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, अगर आपके बच्चे समर कैंप्स में नहीं हैं और आप उनको बिजी रख रहे हैं तो कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है यार बच्चों को बिजी रखना. मुझे खुद पता है क्योंकि आई एम इन्वॉल्व विद सो मैनी चिल्ड्रन. मैं सुबह 9 बजे से कैंप्स कराती हूँ एंड मोस्ट ऑफ दीज आर लाइक म्यूजिकल या म्यूजिकल थिएटर कैंप्स एंड इट इज़ क्वाइट फन बट इट इज़ ऑल्सो वेरी एग्जॉस्टिंग, आई हैव टू टेल यू दैट. ओके, तो एनी वेज अगर आपको ये गाने पसंद आ रहे हैं एंड इफ़ यू वॉन्ट टू रिक्वेस्ट अ सॉन्ग यू कैन रिक्वेस्ट मी. अभी हमारा लास्ट आई थिंक आधा घंटा ही है तो एक गाना मैं आपके लिए बजाती हूँ. वी आर वाइंडिंग डाउन, सो वेन एवर यू रिक्वेस्ट अ सॉन्ग प्लीज मेक श्योर इट्स दैट वाइब, यू नो वेयर दिस इज लाइक अ चिल जोन राइट नाउ. इट्स नॉट हाई एनर्जी डांस पार्टी वाइब्स, ऑल्दो आई नो वीकेंड आने वाला है एंड हाई एनर्जी डांस पार्टी वीकेंड होना चाहिए, बट वी ऑल्सो नीड टू वाइंड डाउन. यार कल सुबह मुझे काम पे भी जाना है, सो इट्स लाइक यू नो गेट रेडी फॉर द बेड, सेट योर सर्कैडियन रिदम वगैरह वगैरह, ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे. ठीक है, चलो गाना सुनते हैं.

0: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
1: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
2: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
3: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
4: हाँ।
3: घर रिलोकेट करनी है?
4: हाँ।
3: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
4: हाँ भाई हाँ।
3: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
5: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
6: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
7: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
8: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
9: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
10: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
9: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
11: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
12: इन प्लेनो।
11: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
8: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
13: क्या मतलब?
14: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
14: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914।
13: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
15: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।
17: Guys, you are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM and this is Ippy the Hippie. Hanji, main thoda thak gayi hoon, meri energy bhi thodi si down ho chuki hai, caffeine bhi utar chuki hai. Abhi ek aur Diet Coke pee loon ya fir agar main pee lungi to main so nahi paungi fir raat ko. Anyways, guys, this part of the show is brought to you by AG Fintax, one of the fastest growing tax firms in the US. They offer innovative financial services with untapped potential for both individuals and businesses. They are trusted, efficient, and get you ready for the future. Call 469-942-9888 or visit agfintax.com. Bhai, call a good tax attorney. Pata hai mere ek, or whatever, good tax firm in this case. One of my friends, one of my former roommates, he decided ek time pe ki bhaiya, main khud hi tax file karunga. I'll go to like freetaxusa.com and file my own taxes.

गाइस, दिस इज अ जेनजी वाइब. जेनजी ने तो गिव अप ही कर दिया है भाई. मिलेनियल्स क्या करते थे? मिलेनियल्स, जेन एक्सेस, और क्या करते थे? अगर कोई आपको ब्रेकअप करके जाता है, आप उसके पीछे पड़ जाते हो. क्यों ब्रेकअप किया भाई, क्यों ब्रेकअप किया, बता बता बता. या फिर हम डिप्रेशन में चले जाते थे. मिलेनियल्स जाते थे डिप्रेशन में, तभी मेंटल हेल्थ एंड थेरेपी इज नाउ अ थिंग, बिकॉज वी मेड इट दैट पॉपुलर. और जेन एक्सेस और हमारे जो भी है बूमर्स जो है, वो कहते थे क्यों नहीं है, बताओ, हम तो वी विल मेक इट वर्क, चाहे कुछ भी हो जाए, वी विल मेक इट वर्क. तुम्हें मेरे से दुख है, मैं आई विल फिक्स एवरी थिंग इन लाइफ एंड वी विल मेक इट हैपन. जेनजी क्या कहता है? तू जाना, जा भाई, मुझे कोई दुखी नहीं है. आई एम डन, आई एम गोइंग, आई एम मूविंग ऑन विथ माई लाइफ, आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन एंड आई विल एंजॉय माई बेस्ट लाइफ. तुम्हें जाना है तुम जाओ, आना है आओ, मत करो मत करो, कोई और मिल जाएगा यार. आई थिंक दैट्स अ कूल आइडिया. आई मीन आई फील लाइक दैट एटीट्यूड इज अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड. भाई, जो होता है सब भले के लिए ही होता है, बाकी आगे चलती जाए जिंदगी. दिस इज रुचि. रुचि, थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए. ये खामोशी बोल के बहुत अच्छी मूवी आई थी 90s में, फीचरिंग मनीषा कोयराला एंड सलमान खान, ऑल्सो फीचरिंग नाना पाटेकर एंड हु वॉज दैट फीमेल एक्ट्रेस, अदर फीमेल एक्ट्रेस, आई फॉरगॉट द नेम. बट एनीवेज गाइज, इट वॉज ए रियली रियली ग्रेट मूवी. उस टाइम पे इट वॉज अ रियली बिग फ्लॉप, बिकॉज आई थिंक द मूवी वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम. बिकॉज यू नो, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस मूवी खामोशी, बट उसके सारे गाने इतने प्यारे थे, इतने प्यारे थे, लाइक आई लव्ड ऑल ऑफ देम. आई बेट सम ऑफ दीज सॉन्ग्स वर ऑल्सो मे बी रिप्ड ऑफ फ्रॉम समवेयर, बट एनी वेज, इट वॉज डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली, विच वी नो ही इज ए फैंटेस्टिक डायरेक्टर एंड मेक्स ऑफ बीट मूवीज. बट यू नो द मूवी वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम. एंड बेसिकली इट वॉज अबाउट दिस डेफ एंड डम कपल. डेफ एंड डम मतलब वो गूंगे बहरे कपल थे, नाना पाटेकर और उनकी बीवी, और उनकी बेटी थी मनीषा कोयराला, हु कुड नॉट जस्ट हियर एंड टॉक बट शी कुड सिंग लाइक अ नाइटिंगेल. लाइक शी हैड सच अ ब्यूटिफुल वॉइस. एंड देन कम्स द सिटी बॉय, और वो आई मीन एंड शी न्यू साइन लैंग्वेज एंड हर पेरेंट्स वर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन हर. एंड वो नहीं चाहते थे कि भाई हमारी बेटी हमें छोड़ के चली जाए. अगर वो हमें छोड़ के चली जाएगी, हमारा क्या होगा? हमें तो ना बोलना आता है, ना यू नो सुनना आता है. हम तो बाकी दुनिया से हम सिर्फ साइन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं. उस टाइम पे सेलफोन्स नहीं होते थे. अगर अब आज की डेट पे अगर ये मूवी बनेगी तो इट विल बी अ लॉट मोर इजियर, क्योंकि एवरी वन कैन टेक्स्ट एवरी वन एंड यू नो कम्युनिकेट वट एवर दे वॉन्ट. एंड दे कैन ऑल्सो गेट अ जॉब, बिकॉज अ लॉट ऑफ जॉब्स आर ऑनलाइन एंड रिमोट एंड नोबडी रियली नीड्स टू टॉक टू ईच अदर एनी मोर और हियर ईच अदर एनी मोर. आई फील लाइक नोबडी वॉन्ट्स टू डू दैट. दे आर जस्ट काइंड ऑफ लॉस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड. दिस प्रॉबली वुड नॉट हैव अ मीनिंग टूडे. हाउ एवर, बैक देन इट डिड हैव अ लॉट ऑफ मीनिंग, बट अनफॉर्चुनेटली इट फ्लॉप्ड बिकॉज वी वर नॉट in that space. Anyways, I love the song. I hope you all like it too. I hope you remember this one. Ruchi, this one goes out to you. Thanks for reminding me.

गाइज, दैट सॉन्ग वॉज फ्रॉम द मूवी रॉक ऑन. अगर आपने मूवी रॉक ऑन नहीं देखी है देन आपको देखनी चाहिए, बिकॉज देर इज समथिंग सो रियल अबाउट दैट मूवी. आफ्टर बींग इन द म्यूजिक इंडस्ट्री फॉर सो मेनी ईयर्स, आई स्टार्टेड इन 2009 एंड आई एम स्टिल हियर, बट आई एम जस्ट इन अ डिफरेंट लोकेशन नाउ. आई स्टार्टेड इन दिल्ली और दिल्ली से मैंने पूरा सफ़र तय करके मैं गई मुंबई, मुंबई से फिर वापस दिल्ली, दिल्ली से गई मुंबई, मुंबई से गई दिल्ली, दिल्ली से आई डैलस. ऐसे करके मेरा सफ़र रहा ऑन हाउ टू बी अ फुल टाइम म्यूजिशियन. एंड यू नो वॉट गाइज, आई एम स्टिल डूइंग इट. आई मीन, आई मे नॉट बी परफॉर्मिंग एज मच एज आई यूज टू इन माई 20s. I mean, I'm in my 30s now, but I'm not performing as much as I used to. I'm not gigging every single night. I'm not going out and like performing in front of hundreds of people like every other week and everything. But I'm still here and I'm still playing amazing music. And इसमें मैंने जो रॉक ऑन में जो अगर आपने मूवी देखी, यू नो इट्स लाइक अ बंच ऑफ कॉलेज किड्स. दे आर रियली सक्सेसफुल. दे आर डूइंग लाइक दीज रॉक शोज. दे पार्टिसिपेट इन दिस बैटल ऑफ द बैंड्स. दे विन द बैटल ऑफ द बैंड्स. फिर उनको लेबल एक साइन करता है. लेबल बोलता है, भाई तुम्हारा ये जो रॉक ऑन वाला जो म्यूजिक है, इट्स टू मॉडर्न फॉर आर इंडियन ऑडियंस. यू हैव टू मेक सम तड़कता धड़कता आइटम नंबर टाइप का गाना. फिर उसमें एक हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, फिर ऐसे ऐसे करेंगे. एंड देन दे फील लाइक कि ऑथेंटिसिटी चली आती है. भाई वो वाली स्ट्रगल्स हम अभी भी फेस करते हैं. आई एम नॉट इवन किडिंग. लाइक sometimes there are music that I want to play and I cannot play because it might be too progressive, or and I'm not just talking about language, I'm just talking about modern sounds while the world is listening to it, but maybe the man is not okay with it because it may be too modern for, you know, hamari purani janta or whatever it is. I don't even know. I mean, I think you guys are more progressive than that. I think you guys want to listen to some new music along with some old music. There's some vibe with it, है ना? So anyways, when I was watching this, उसमें आपको अगर आपको movie याद है, आपको याद रहेगा कि उनके जो चार member थे band के, all four of them eventually landed up leaving the band. Band टूट गया, सब अलग अलग अपने career में चले गए. एक बंदा बन गया investment banker, उसकी proper job लग गई, बड़े पैसे वैसे कमाए फरहान अख्तर. फिर शादी वादी भी हो गई, हु लव्स हिज वाइफ वगैरह वगैरह, ठीक है. देन एक बंदा जो जिसने डिसाइड किया, द गिटार प्लेयर प्लेड बाय अर्जुन रामपाल, ही डिसाइडेड टू बी अ फुल टाइम म्यूजिशियन. बट वॉट इज ही डूइंग? ही इज टीचिंग सम किड्स. ही हैज नॉट मैनेज टू टर्न हिज टीचिंग इन टू ए प्रॉपर प्रोफेशन. भाई मेरे से आके लेसन लेता तो देन आई वुड हैव टोल्ड हिम कि भैया प्रॉपर प्रोफेशन में कैसे बदलते हैं उसको, हाउ टू जनरेट ए सस्टेनेबल इनकम. आई वुड हैव टोल्ड हिम बिकॉज आई एम डूइंग दैट राइट नाउ. ओके, ही नीड्स टू टेक सम लेसन फ्रॉम मी. एनी वेज, सो प्रीटी मच माई स्टोरी इज वॉट अर्जुन रामपाल स्टोरी वॉज. बट आई मीन, आई एम नॉट एज सैड एज हिम. ही इज क्लियरली लिविंग इन अ वेरी सैड लाइफ. यू नो, ही इज फ्रॉम अ फिशरमैन्स फैमिली. पैसे नहीं है उनके पास. यू नो, हिज वाइफ इज ओवरवर्कड वगैरह वगैरह, जो भी है, दैट्स हिज लाइफ. देन देयर वाज दिस अदर गाय हु डिड लैंड अप गोइंग टू द म्यूजिक इंडस्ट्री एंड स्टार्टेड मेकिंग जिंगल्स विच आर वेरी वेरी पॉपुलर. मतलब जो भी है, ठीक है. आई थिंक आई एम एक्चुअली मोर लाइक हिम. जो भी, ल्यूक केनी, ही वॉज प्लेड बाय ल्यूक केनी. एंड लास्ट में एक और जो बंदा था, जो ड्रमर था, क्या नाम था उसका? अरे यार, उसका बड़ा कैची सा नाम था मूवी में, मेरे को याद नहीं रहती यार. इतनी सारी चीज़ें रहती है मेरे दिमाग में, ये छोटी छोटी चीज़ें निकल जाती हैं. एनीवेज, केडी और समथिंग लाइक दैट. एंड ही वॉज द ड्रमर. बेसिकली ही लैंडेड अप जॉइनिंग हिज डैड्स ज्वेलरी बिजनेस. और वो गहने बेच रहा है, ठीक है, विच इज़ प्रेटी गुड. मतलब बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया, पैसे तो है उसके पास. तो एक्चुअली फन फैक्ट मैं आपको ये बताती हूँ, मेरे जो बैंड के साथ जो स्टोरी हुई, आई मीन माई बैंड वॉज कॉल्ड बिग बैंग ब्लूज. It's still existing, बस I am not there in India. और जो original members थे band के, वो भी नहीं है वहाँ पे. सब लोगों ने सब अलग अलग जगह पे चले गए. तो हमारा जो bass player है, था rather, we are still very good friends. हम लोगों की वैसी लड़ाई नहीं हुई, but we all decided to grow up and move on to different things in life. But हमारा जो bass player था, he was actually an engineer from IIT. ही डिसाइडेड, एक साल उसने छोड़ छाड़ के बोला, नहीं मैं म्यूज़िक बजाऊंगा. तो एक साल तो उसने म्यूज़िक बजाया, फिर उसने बोला कि नहीं यार, पैसे कमाने हैं, लोन वगैरह है, स्टूडेंट लोन है, तो मेरे को मेरे जॉब से ऑफर मिल रही है न्यूयॉर्क शिफ्ट होने के लिए, मैं तो न्यूयॉर्क जा रहा हूँ. तो उसके बाद वो न्यूयॉर्क चला गया. न्यूयॉर्क में उसने अब अपर वेस्ट साइड पे, नॉट एनी वेयर एल्स बट अपर वेस्ट साइड पे, उसने घर वर खरीद लिया, शादी कर ली, दो बच्चे हो गए. ही मैरिड दिस अमेरिकन लेडी. ही हैज़ लाइक टू मिक्सड रेस बेबीज, हाफ वाइट हाफ इंडियन. अमेजिंग, वेरी हैप्पी फॉर हिम. देवांग, ही स्टिल प्लेज बेस ओकेजनली एज अ हॉबी,
But that's not his main thing. He is in a very good position right now. I don't remember what company. I think he works for Morgan & Chase, but not 100% sure. Then, hamara jo guitar player tha, Sushant, he decided to turn his love for rock music into love for Bollywood music. And he started a Bollywood wedding band in India, which is doing immensely well. He does a lot of shows. He also teaches at a school in India. Pretty amazing, right? Main Dallas aa gayi. Mujhe music ka itna shauk tha. Maine chhod chhad ke maine kaha main ja rahi hu music karne. I'm moving to Dallas. Main aayi music padhne yahan pe. Padhte padhte maine apna teaching career bhi establish kiya. Now I'm independently teaching and I've built a pretty decent business for myself. I have a pretty good clientele. And then I just do this radio thing for fun. And then hamara jo drummer tha Rahul, wo bhi Houston shift ho gaya. He got a job in an insurance company somewhere, and he has a kid as well and a family and everything. Sometimes we all get on a group call and we talk about it. It's literally like Rock On ki story. It's really amazing, but it's so relatable. Now in hindsight, when I watch this Rock On wala, us time pe lagta tha jab movie aayi thi, maine kaha yaar ye exaggeration hai, aise thodi na hota hai. But now when I look at it in hindsight, I'm like, no, they make movies out of people's real experiences, you know. Anyways, guys, last 2 minutes, I'm gonna play you this song. I won't talk much. I hope you enjoy. This is a new song by this artist called Ritvis, who is very, very popular. He has 2.5 million subscribers on YouTube. Yes, it is not Bollywood, but I'm sure you are going to love this. Check it out.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
3: ड्यूड लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
4: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
3: कैसे?
4: पेज 3 ईटरी?
3: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
4: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोल्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
3: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
5: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
2: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
6: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: playing the best tunes in all of Dallas. Fun Asia Radio, 104.9 FM.
1: तुझको याद है बता भूली बिसरी वो जगह उसमें लिपटी वो सुबह

Happy music, happy people, only on Fun Asia Radio.

0: has a proven record of integrity, fiscal responsibility, and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety, and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
1: Paid for by Mark Hill for Mayor.
2: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khanzada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye, The Jago Times available hai ek click par, thejagotimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada, 682-551-6500. The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panasia.
3: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
4: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
3: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
4: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
3: सच में? सब संभाल लेंगे?
4: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
5: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

जहे नसीब, इतनी रात गए आप हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ तो बात होगी इस चैनल में। रात भर आपके साथ फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

Thank you for tuning in to 104.9 FM Fun Asia Radio. एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है. मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं. छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे. जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट. सो कमाल धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ.

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें, declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एजर रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

एक रात वो गया था जहाँ रात रुक के, अब तक रुका हुआ हूँ वही रात रुक के. डोंट चेंज दैट डायल, कीप इट राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM.

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डालस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

0: ये क्या कर रहे हो चंदर? लाओ मेरा गीता बदलाओ, लाओ।
1: गीतों से मियाँ तानसेन, कानों में शहद तो भरा जा सकता है लेकिन पेट की आग नहीं बुझाई जा सकती, समझे?
0: तुमने फिर शुरू कर दी ना अपनी कीड़ों वाली बोली। जब देखो एक रेट लगा रखते हो, भूख लगी है, भूख लगी है। लाओ दबा।
1: भूख दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है और इस बात को अपने दिल से तुम भी मानते हो और इसीलिए अपना और मेरा हिस्सा जेब में दबाए रखते हो। मैं तुमसे अपना हिस्सा मांग रहा हूँ।
0: कौन सा हिस्सा? 2 रुपए थे, उसमें से 1 रुपया तुम्हें दे दिया है। दिया है कि नहीं
1: दिया? मैं कहां इनकार कर रहा हूँ। अब 1 रुपया तुम्हारे पास बचा है कि नहीं?
0: बचा है।
1: और उस 1 रुपए में से मैं 50 पैसे मांग रहा हूँ, अपना हिस्सा। 50-50 हमारा परमानेंट एग्रीमेंट है कि नहीं?
0: तेरी तो भूख की ऐसी की ऐसी।
2: कमाल के लोग रहते हैं तुम्हारे पड़ोस में, गा रहे थे तो महसूस होता था किसी ने अमृत पिला दिया हो मेरी कविता को। लड़ने लगे तो मरने मारने के लिए तैयार हो गए।
3: पुराने दोस्त हैं, साथ रहते भी हैं, रोज लड़ते भी हैं, मगर दोस्ती में कभी फर्क नहीं आता।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनीशा रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा। डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनीशा रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फनी शो 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: अब क्या?
1: क्लॉस्ट्रोफोबिया. व्हाइट हाउस की कैंटीन में स्टोर पहुंच गया, प्लीज चेक.
2: अच्छा, कौन सा? वो हाइड्रोजन बम वाला?
3: सर, कोर्ट में बात कीजिए.
2: अशरथ, सिक्योर लाइन है, प्लीज डोंट इरिटेट मी, नहीं तो अभी वो ट्रिगर दबा दूंगा. हाँ, फाइनल चेक्स एवरीवन. शाफ्ट सील करने का वक्त आ गया है, कम ऑन, गेट रेडी.

0: FM turns up the heat in Dallas.
1: Come down, selector. Rewind.

Spreading love and understanding with best music. 104.9 FM.

0: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट. When it comes to taxes, only one name pops up, AG Fintax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Grandhi Tax Pros, an associate of AG Fintax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Grandhi Tax Pros, powered by AG Fintax. Plan today, profit tomorrow.
1: Filmon ka maza, action, drama aur romance mein. और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
2: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
1: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
2: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट.
3: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
4: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा.

0: फन की फ्रीक्वेंसी बजे दिन रात।
1: इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना

0: तो रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है, स्टे ट्यून टू फनेशिया।
2: द गॉर्जियस ट्विंस सुकृति एंड प्रकृति रेडी टू ड्रॉप देयर बिगेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर। द फुटेज ऑफ द वीडियो बीइंग शॉट हैज लीक्ड।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: तुम्हारी माँ होती तो हमको सोने में तुलता देख के बहुत
1: अब दो तीन टीम्स बनाओ, एक को मेरे पास भेजो, बाकियों को अनुभव और राकेश की फैक्ट्रीज में सब कुछ सीज कर लो। एक टीम को कोऑपरेटिव बैंक भेजो और वो लॉकर्स भी सील कर लो। अभी क्या रेशमा इंडस्ट्रीज और सूरज राइस मिल के सारे बैंक अकाउंट सील कर दो। सेल्स टैक्स और एक्साइज की बहुत बड़ी चोरी है, उन डिपार्टमेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दो।
2: Rest a while and run a mile with Fun Asia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

104.9 FM. Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Non-stop infotainment.

नूर का झरना है, मैं प्यास पुरानी। मैंने आंख से गटक लिया उस हुस्न का पानी।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

तेरे बिना जिंदगी से खालू शिकवा तू नहीं, एक हार है यार थानेदार का फतवा तू नहीं, अता पता तो बता कोई सुरा बेसुरा, ना रफी ना लता खालू प्लीज बता, तू गया तो कहां मेरा सुना है जहां, कहीं दिखता नहीं तेरे जूते के निशान, सर पीट वहां कोई सजदा तू नहीं, तेरे बिना जिंदगी से खालू शिकवा

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट डैलस में रेडियो का डैड फोनीशिया 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

0: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।
1: आकर
2: ओह शिट।

0: ow.
1: Masagali. Ow. Masagali. Ow.
2: Ah, you got what's done.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, a division of Brazos National Bank.
8: Hire moti main na chahu.
9: Achha, manifest karne se pehle thoda dobara soch lo, kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho ya bas apni sparkle upgrade karni ho, ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
10: Documents ya parcel bhejni hai?
11: हाँ.
10: घर रिलोकेट करनी है?
11: हाँ.
10: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
11: हाँ भाई हाँ.
10: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
12: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
13: जिस बात का डर था वही हुआ, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन.
14: अरे कहना क्या चाहते हो?
15: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी, अब टेंशन का टाइम गया. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं. हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर. फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, इरविंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू, कॉल 214-666-6259 और विजिट passionhealthprimarycare.com. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ, योर लैंग्वेज, योर कम्फर्ट.
16: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट. When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
17: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store? For you.
18: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
17: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी.
18: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान. एस्ट्रोलॉजर ईश्वर, कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
19: और सुनाओ, हाउस हंटिंग कैसी चल रही है?
10: क्या बताऊं, इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
19: यू नीड टू कॉल अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. ही इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर हु प्रोवाइड्स एक्सेप्शनल सर्विस प्लस कैशबैक एट क्लोजिंग. अजय रिव्यूज ईच हाउस थरली एंड शेयर्स ऑल द प्रोज एंड कॉन्स एंड नेगोशिएट्स द बेस्ट प्राइस एंड बिल्डर इंसेंटिव्स. जस्ट विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
20: If you're ever involved in a car accident, remember these important three tips. First, stay calm. Second, check for injuries and move to a safe place if possible. Third, gather information by taking pictures, exchanging contact information, and insurance details. Always, always file a police report. Remember, never ever admit fault at the scene. Even minor injuries can turn serious, so seek medical attention right away. The law offices of Omar Khwaja specializes in personal injury law, and we are here to help you navigate through the legal process. Call us for a free consultation at 1-833-GET-OMAR or visit our website at attorneyomar.com for your free consultation. We can't wait to hear from you.
11: Ladies and gentlemen, welcome to the show. Let's go ahead and get it started. It is Thursday, the 11th of June. Sabse pehle, tareef us upar wale ki, jisne duniya banayi. Chand sitare banaye, zameen aasman banaye, insaan ke dil mein mohabbat ka jazba paida kiya. Usi upar wale ki tareef hai jisne mujhko, aapko aur ye sari kainat ko insaniyat ko aage badhane ke liye banaya hai. Aap sabko mera pyar bhara namaskar, sat sri akal, assalamu alaikum, ya ali madad, and a very, very good morning to all of you. Welcome to the show.

0: Let's talk a moment here about Hail-to-Nail Contracting. They specialise in roof replacement and repairs. Let me give you their number first, 682-561-9795. And or whether it's shingle roofs, TPO flat roof, rain gutters, siding or general remodelling, they'll do a free inspection and they'll also help you with claims for with your insurance company. You can call Nisar Ahmed, 682-561-9795, and do check out that 5-star Google reviews that they have. Hail-to-Nail Contracting, roof replacement as well as other general repair. Also, they do painting or concrete work or anything else that you may need to make your property look beautiful, and it could be commercial or residential projects at Hail to Nail.
1: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
2: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
7: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
8: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी, जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
7: के टू ड्राइव मतलब
8: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब के टू ड्राइव हैंडल करता है।
7: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
8: 100%
5: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट k2drive.com और कॉल 214-814-0402. Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
2: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
9: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
10: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
11: अरे भाई, वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट।
12: Because you don't travel with Lawson. चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर, Lawson Travel. For nearly 30 years, Lawson Travel has been helping families plan stress-free international trips with the best airfares, vacation packages, cruises and customized travel solutions. Lawson Travel makes every journey smooth, affordable and tension-free. Call now 214-631-2458 or visit LawsonTravel.com.
13: के लगी, भूख लगी, जोरों की भूख लगी।
14: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
15: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू। ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
10: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
16: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
17: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
16: Renew?
17: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
16: What better way to celebrate than with something timeless?
17: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
18: This is Ali Zafar, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: Turned Barcelona into the stage for a historic celebration yesterday. We'll talk more about that later in the next hour of the program.
1: Sunita, tumhare bete ke marks kafi improve hue hain na recently?
2: Haan, bas thoda right guidance mil gaya hai.
1: Same teacher, same school, phir bhi mera beta struggle kar raha hai.
2: Difference school ka nahi hai, concept clarity ka hota hai.
3: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper aur McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math aur English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
4: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
5: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
6: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
7: Excuse me. It's called being loyal.
6: It's called being predictable.
7: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
6: And what's so special at Neon Cactus?
7: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
6: Not bad.
7: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
6: Okay, this I didn't expect from you.
7: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, traditional celebration wear for men, women and children, crafted with exquisite blended fabrics. मान्यवर मोहे, located on Regent Boulevard of 635 East in Irving.
10: सुनो कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
11: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
10: कहाँ?
12: Foodistan in Aubrey. Fresh grocery, halal meat, puja essentials, live pani puri, fresh ganne ka juice, bakery items, plus lowest price match guarantee. And inside Foodistan, enjoy the premium Indian cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
9: Foodistan in Aubrey. Everything desi. One place, one vibe.
13: Ritesh, kabhi socha hai? Kal agar tum nahi rahe, to mera kya hoga?
14: Arre relax, sab tumhara hi to hai.
13: Sach? Ya phir court decide karega?
14: Wait, what?
15: Yes, agar proper estate plan nahi hai, to aapki family ke decisions court leta hai.
16: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. Main families ko help karti hoon, unki mehnat ko protect karne mein. The right way with estate planning.
15: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
17: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
18: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
17: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
18: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट.
19: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करें.
1: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
19: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
1: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
19: सच में सब संभालेंगे?
1: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
9: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.

काली की याद आ गई। राधिका की माँ और मेरा हनीमून वहीं पर हुआ था। माइंड ब्लोइंग। नो नो नॉट हिम नॉट हिम ओ नो दिस शिट इज गुड बट वी शुड नॉट डू इट रेगुलरली मेकी बॉय कीप ऑफ द ग्रास दिस डॉग इज स्टोन्ड यार।

0: बेटा इसने ब्रेकफास्ट के 20 पाउंड दिए हैं, टिप इंक्लूडेड। अगर तुम दोनों का प्रॉब्लम नहीं चल रहा होता तो मैंने इसे ऊपर वाला कमरा ऑफर कर दिया था एज ए किराएदार। हर रिश्ते में एक गलती तो माफ होनी चाहिए।
1: Can I have my 20 pounds back?

0: It is 8 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: अरे भाई वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट.
9: Because you don't travel with Lawson. चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर. Lawson Travel. For nearly 30 years, Lawson Travel has been helping families plan stress-free international trips with the best airfares, vacation packages, cruises and customized travel solutions. Lawson Travel makes every journey smooth, affordable and tension-free. Call now 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
10: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
11: Calculating route, rerouting. Rerouting.
10: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
11: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ.
10: क्यों?
11: क्योंकि फोर्ट वर्थ, केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ.
10: अच्छा तो सीधा वही ले चलो.
12: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
11: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
13: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
14: Paid for by Mark Hill for Mayor.
15: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
16: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
15: Kya matlab?
16: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
15: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
16: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
15: Ab to karna hi padega, madam.
17: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
18: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी. और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को.
19: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
18: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग. ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो. श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी.
7: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
6: लिया.
7: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
6: नहीं आया.
7: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
12: Visit www.sanadainc.com today.
18: Is shahar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadoo? Dhuaan dhuaan. Kyun sab uljhe hain parivarik samasyaon mein? Kabhi padhai to kabhi naukri ki chinta. Zindagi ke raaste dhundle ho gaye hoon. तो वक्त है सही दिशा का।
0: पंडित रामनाथ जी जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
14: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
20: मामू देखो क्या हो गया।
21: ओ क्या हो गया?
20: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है।
21: ओए जर्मन का कमाल है।
20: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
21: ओ नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623। कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
22: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
23: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
10: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन।
13: Let's go ahead and get started with this hour of the program. If you are just joining us, please receive my very warm welcome to the show. And we will get you caught up on this lovely Thursday morning. It is the 11th of June today.

0: स्वैग का राजा
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
2: ओ हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com. यार बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस।
4: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं।
3: सच में? एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
4: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू। उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
3: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं, वापस भी आएंगे।
4: एग्जैक्टली, अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
3: नंबर बोल जल्दी।
4: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com।
5: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश।
6: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। फ्रिस्को में इतना प्यार मिलने के बाद पंचतारा इज नाउ ओपन एट अ न्यू लोकेशन इन एलन। वही स्वाद, वही जुनून और वही जबरदस्त मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस। फेमस गर्मा गर्म पराठे, रोज ताजी बनी मिठाइयाँ और फुल सर्विस बार वेटिंग जस्ट फॉर यू। एंजॉय फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस और पंजाबी बफे एवरी डे। कैटरिंग सर्विस इज ऑल्सो अवेलेबल टू मेक योर एवरी सेलिब्रेशन मेमोरेबल। पंचतारा नाउ इन फ्रिस्को एंड एलन। मेंशन अपना पंजाब एंड गेट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑन your first visit.
3: Are you tired of the same arguments, reactions, and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents, and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques, and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
0: और सुनाओ, हाउस हंटिंग कैसी चल रही है?
2: क्या बताऊं, इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
0: यू नीड टू कॉल अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। ही इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर हु प्रोवाइड्स एक्सेप्शनल सर्विस प्लस कैशबैक एट क्लोजिंग। अजय रिव्यूज ईच हाउस थरली एंड शेयर्स ऑल द प्रोस एंड कॉन्स एंड नेगोशिएट्स द बेस्ट प्राइस एंड बिल्डर इंसेंटिव्स। जस्ट विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
7: गिव योर चिल्ड्रन द गिफ्ट of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

0: Fiscal.
1: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस। ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क। ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न। या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर।
2: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
1: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
0: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं। रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
3: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338। The SBA Loan Experts. फैसला क्लैरिटी के साथ।
4: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
5: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
6: Desi cravings simple nahi hoti. Unke levels hote hai. Level 1, mixed veg pakora. Light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, masala omelette aur dahi bhalla. Thora nostalgia, thora comfort. Level 3, Amritsari kulcha platter ya pindi chana. Full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhook ho next level, slow cooked keema mutter. Rich, bold, no compromises.
3: Isiliye Tandoori Flame lekar aaya hai. New on the flame and new weekend menu. Visit Tandoori Flame in Garland at Shiloh and PGPT. Tandoori Flame, now serving new favorites. Craving ka level badhao. Flavor hum sambhal lenge.
7: Aaja meri gaadi mein baith ja.
0: Baith jao? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
8: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
0: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
9: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
10: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 469-298-3870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो।
7: आजा मेरी

0: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. FunAsia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Time.
3: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety, and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
4: Paid for by Mark Hill for Mayor.
5: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
6: Kya matlab?
7: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
7: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: Ab to karna hi padega, madam.
8: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: Main shaadi karungi to Kareena wala designer lehenga pehen ke karungi. वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
10: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
11: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
12: वेट, इतना सब और प्राइस?
11: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
13: मैं।
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
15: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
16: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
16: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
18: जिस बात का डर था वही हुआ, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन।
19: अरे कहना क्या चाहते हो?
4: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी, अब टेंशन का टाइम गया। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर। फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, अर्विंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू। कॉल 214-666-6259 और विजिट पैशन हेल्थ primarycare.com. Passion Health Primary Care. Your health, your language, your comfort.
3: Documents या parcel भेजनी है?
8: हाँ।
3: घर relocate करनी है?
8: हाँ।
3: गाड़ी भी transport करना है?
8: हाँ भाई हाँ।
3: तो फिर tension क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को call कर।
7: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में trusted shipping और moving services. SFL Worldwide.
13: हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
20: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Funasia Radio.
21: And now here is your chance to win a free aloo kulche or chole bhature from the Panj Tara restaurant. They have two locations, the original one in Frisco and now one in Allen. Now, you all know this song, but do you know which movie it's from? The first person who gives me the right answer wins either aloo kulche or chole bhature from the Panj Tara restaurant. Need the name of the movie? 972-235-5555.

0: your brothers would have been preachers. Right. If you'd have been a soldier, they'd be soldiers. You know that. I mean, they all came here because of you.
1: That is the voice of Ruby Dee. And ladies and gentlemen, those were some stories from the annals of history that happened on today's date, which is the 11th of June. And that pretty much is my show for today. Me Too will be coming on right after me. And y'all continue listening to the Fun Asia Network as we try and bring to you programs that are entertaining as well as informative. For those of you who'd like to reach me directly, 214-675-1754. It's 10 o'clock.
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
5: कौन सा?
4: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
5: अरे सारे तो सेम है.
4: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला.
5: ओ हाँ, ये तो अलग है.
6: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
7: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
8: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है.
7: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है.
8: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है.
6: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को, प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स. पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज. ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस. किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
9: Attention passengers. Flight Punjab 001 to Chandigarh Wale Irving is now boarding. Destination, real Punjabi flavor.
10: Arey yaar, Dallas mein Punjab?
11: Bilkul, Chandigarh Wale. Jahan butter chicken bhi asli aur naan bhi tandoor se garma garam.
12: From buttery curries and fresh naan to street-style Punjabi favorites, every bite takes you straight to Punjab. Shadi ho, party ho, ya corporate event, Chandigarh Wale brings live Punjabi catering straight to your celebration. Proudly awarded Best of Dallas for Indian Food by D Magazine. Skip the flight and take the shortcut to Punjab. Chandigarh Wale, Irving, where Dallas meets Punjab.
13: Shadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
14: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
15: प्लीज डोंट से योर यूजुअल प्लेस अगेन, आई एम टायर्ड ऑफ द सेम फूड.
16: एक्सक्यूज मी, इट्स कॉल्ड बीइंग लॉयल,
15: इट्स कॉल्ड बीइंग प्रेडिक्टेबल.
16: ओके देन, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
15: And what's so special at Neon Cactus?
16: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
15: Not bad.
16: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
15: Okay, this I didn't expect from you.
16: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
17: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338. 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
18: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
19: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
18: कहाँ?
20: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानीपुरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस lowest price match guarantee. And inside Foodistan, enjoy the premium Indian cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
0: Foodistan in Aubrey. Everything desi. One place, one vibe.
21: Ritesh, kabhi socha hai? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
22: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
21: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
22: वेट, व्हाट?
19: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
23: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
19: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
24: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film Only on Fun Asia Radio.

भीगने में काफी मजा आएगा वैसे, लेकिन हम यहाँ पे फिलहाल भीग रहे हैं स्वेट से. इट इज हॉट एंड ह्यूमिड अगेन टुडे विथ हाइज इन द लोअर टू मिड 90s दैट वी आर गोइंग टू हैव. हीट इंडेक्स हमारे वापस से ट्रिपल डिजिट्स में, लेकिन इसके बारे में विस्तार से बताएंगे अगले सेगमेंट में. दिस इज गपशप गली विथ मीठू.

0: keep listening to Financial Radio 104.9 FM.
1: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
2: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
3: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
2: Kya matlab?
3: Oora can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
2: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
3: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
2: Ab to karna hi padega, madam.
4: Don't let debt ruin your life. Visit oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
5: Zindagi ek safar hai suhana.
6: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 Kaiserway, Suite 205, Frisco.
7: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
8: Calculating route, rerouting.
7: अरे ये क्या? मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
8: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
7: क्यों?
8: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
7: अच्छा. तो सीधा वही ले चलो।
9: India Bazaar at 5152 Quadrant Way, Fort Worth. Switch the route.
8: Your new destination has arrived.
10: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth at mytimeequity.com. Equity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
11: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth at mytimeequity.com for professional advice.
12: Is shahar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadu? Dhuan. Kyun sab uljhe hain parivarik samasyaon mein? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता, जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
13: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा, लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव।
14: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401, प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
15: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम, ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा।
16: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
17: Hi, this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station, Financial Radio.
18: You on the right track.

इज गोइंग टू बी हॉट एंड ह्यूमिड टुडे, इसी के दास्तान सुनाने वाली हूँ आप लोगों को, यानी कि वेदर अपडेट लेकर आने वाली हूँ. दिस इज गपशप गली विथ मी टू. यस, आर हीट इंडेक्स इज गोइंग टू बी इन ट्रिपल डिजिट्स. वन थिंग दैट विल हेल्प अस इज द विंड. थैंक्स टू दैट, रियली अगर वो नहीं होता तो क्या होता पता नहीं. लेकिन काफी गस्टी विंड्स जो है हमारे 15 to 25 माइल्स पर आवर. ए वीक फ्रंट विल ड्रॉप डाउन फ्रॉम ओक्लाहोमा लेट टू नाइट गोइंग इन टू टूमोरो. Clouds will gradually increase overnight as a cloud and a cold front settles south towards the Red River area. और ज़्यादातर जो locations हैं वो dry रहेंगे, लेकिन showers और thunderstorms हो सकते हैं जो severe नहीं होंगे. लेकिन definitely watch out for the local weather and stay updated on that. और scattered showers और thunderstorms expect किया जा सकता है mainly north of I-20 from roughly 3 a.m. tomorrow through midday, that I can tell you. Make sure you are weather aware if you are living around that area. The heat and humidity will be a big factor going into the weekend, especially Saturday when the heat index could approach 105 degrees. Aur Saturday dry hoga, kuch thunderstorms possible hai Sunday ko. Isiliye keh rahi hu ki bhaiya aap thoda weather updated rahein, ya to koi jo app jo aap follow karte ho ya seedhe seedhe Phoenicia Radio 104.9 FM सुनते रहो. आप लोगों के लिए वेदर अपडेट टाइम टू टाइम हम लेकर आते रहते हैं हमारे शोज पे. ए बेटर चांस ऑफ स्कैटर थंडरस्टॉर्म्स एंड पीरियड्स ऑफ हैवी रेन रिटर्न्स संडे नाइट गोइंग इनटू मंडे एंड दीज इंक्रीज चांसेस ऑफ रेन विल आल्सो हेल्प ब्रिंग कूलर टेम्परेचर्स अर्ली नेक्स्ट वीक. सुन के थोड़ी सी तो खुशी हुई होगी, अगर हुई तो we are on the same page, let's say that. Today's high around 95, today's low around 77. Right now it is 84 degrees in Dallas. This is Gupshup Gali with me too.

Absolutely loved this movie starring Vicky Kaushal, Tapsee Pannu, Abhishek Bachchan, directed by Anurag Kashyap. It was Mann Marziyan. अब ऐसा है कि मन भी आपका तो मर्जी भी आप ही की होनी चाहिए. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के बारे में मैं बता सकती हूँ कि जब आपका मन करे ना जरूर जाएं और चेकआउट करें मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को. और मैं रीज़न बता देती हूँ, ये वो जगह है जहाँ पे आपको स्टनिंग डिज़ाइंस मिलेंगे, एलिगेंट, ब्यूटिफुल, जितने भी सिनोनिम्स हैं ना इस वर्ड के बस आप लगाते चले जाओ, क्योंकि वाकई में कलेक्शन बहुत बढ़िया है. चाहे आप ब्यूटिफुल कुछ सेट ढूंढ रहे हो अपने लिए, रिंग्स, ईयर रिंग्स, नेकलेसेस, एनीथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर, आपको वो ट्रेडिशनल से लेकर कॉन्टेम्प्रेरी डिज़ाइंस तक सारा कुछ मिल जाएगा. एंड दिस इज़ फॉर all of you to make your special occasion even more special. Yeah, जैसे कि मैंने कहा ना, अगर आपका मन करे, आपकी मर्जी हो, तो बिना किसी special occasion के भी आप जा सकते हो. Check out this place, ladies and gentlemen, and download the mobile app for Malabar Gold and Diamonds to get that latest collections that they have, updates that they send you, and also more details. Malabar Gold and Diamonds. It is on Preston Road in Frisco. Once again, thank you very much for tuning in. Ye hai Gapshap Gali with me too.

0: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility, and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety, and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
1: Paid for by Mark Hill for Mayor.
2: Hey, tumne kabhi insurance liya?
3: Liya.
2: Kabhi policy samajh bhi aaya?
3: Nahi aaya.
2: Mujhe bhi nahi aaya. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
4: Visit www.senadainc.com today.
5: मामू, देखो क्या हो गया.
6: ओ, क्या हो गया?
5: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया. और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
6: ओए, जर्मन का कमाल है.
5: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है.
6: ओ, नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार. तू

इस सेगमेंट में विच इज द फीफा सेगमेंट वेरी स्पेशली दैट आई एम गोइंग टू डू अंटिल जुलाई 19th लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ इंटरेस्टिंग बातें फीफा जो आज किक ऑफ कर रहा है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज भी और आने वाले दिनों में भी, और करते आए हैं टू गेट यू ऑल एक्साइटेड अबाउट इट, गेट यू ऑल वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट इट. और इसी के चलते मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गपशप गली विथ मीटू में लेट्स टॉक अबाउट द हाईली एंटिसिपेटेड 2026 फीफा वर्ल्ड कप विच इज ऑफिशियली किकिंग ऑफ टुडे. और ये जब मैं शो वाइंड अप करके जाऊंगी ना 12:30 बजे, दैट्स व्हेन द ओपनिंग सेरेमनीज आर गोइंग टू स्टार्ट. सेरेमनी इज गोइंग टू स्टार्ट क्योंकि 3 कंट्रीज में हो रहा है, मेक्सिको, कनाडा और यूएस में. इट इज किकिंग ऑफ टुडे इन मेक्सिको एंड टुमारो इट विल बी फॉर यू नो कनाडा एंड यूएस एज वेल. तो इस बार टूर्नामेंट की शुरुआत मेक्सिको सिटी के स्टेडियो एस्टेका में जो शुरुआत होने वाली है. पहला मैच बिटवीन मेक्सिको और साउथ अफ्रीका का होने वाला है आज जो होने वाला है. एंड इट इज जस्ट एग्जैक्टली 90 मिनट्स बिफोर द गेम विल बिगिन दैट द ओपनिंग सेरेमनी विल स्टार्ट. एंड ग्लोबल आइकॉन शकीरा एंड बर्ना बॉय विल टेक द स्टेज टू परफॉर्म द ऑफिशियल वर्ल्ड कप एंथम डाई डाई अलॉन्ग साइड एन एलीट लाइनअप ऑफ आर्टिस्ट इंक्लूडिंग जे बॉलविन एंड रमाना एंड टाइला सेलिब्रेटिंग मेक्सिकन कल्चर. इसके बाद कल यानी कि जून 12 को ये दो और ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनीज होने वाली है जो टोरंटो और एलए के मैचेस से ठीक पहले ऑर्गेनाइज की जाएंगी. पूरे टूर्नामेंट के का जो सबसे बड़ा म्यूजिकल हाईलाइट होगा वो होगा फाइनल्स के दिन, दैट इज संडे जुलाई 19th टू एंड दैट विल बी इन न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी स्टेडियम. दैट इज द नेम ऑफ दैट स्टेडियम फॉर नाउ अंटिल द मैचेस आर डन विथ. एंड दिस इज द न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम जहां पर फाइनल हाफ टाइम शो जो होने वाला है. एंड दिस इज इन द हिस्ट्री ऑफ फीफा दैट द फर्स्ट हाफ टाइम दैट वी आर गोइंग टू विटनेस ऑन जुलाई 19th. Curated by Coldplay's Chris Martin, this massive closing spectacle will feature a historic co-headlining performances by Madonna, BTS and Shakira once again, while also featuring special appearances by beloved characters from Sesame Street and the Muppets to support the FIFA Global Citizen Education Fund. So all the proceedings, the 100% of the proceedings will go to this fund, FIFA Global Education Fund. So ladies and gentlemen, get ready for all the excitement. Journalists from all over the world have started arriving in North Texas, and I think they have been doing that since past few days. Or जी हाँ, आज जो kick off होने वाला है with lot of pomp and show, we'll keep you posted on that. और इस segment में सिर्फ और सिर्फ sports drama का की जुगाने लेकर आ रही हूँ. Let's take you to this next one right here. This is the FIFA update segment for all of you on Funisha Radio 104.9 FM on my show between 10:45 to 11.

the day, ladies and gentlemen. It is the FIFA World Cup that starts in Mexico City today. And tomorrow, it is LA that will be hosting its first match in the US. And the FIFA World Cup 2026 tournament format has expanded to 48 teams this time, opening up rare opportunities for nations that have dreamed of this moment for generations. So, is bade change ki wajah se char aisi countries hain jo history mein पहली बार वर्ल्ड कप स्टेज पे यू नो दे आर गोइंग टू प्ले इंट्रोड्यूसिंग फ्रेश एनर्जी एंड ऑफ कोर्स यूनिक आइडेंटिटी एंड इनक्रेडिबल स्टोरीज ऑफ रेजिलियंस टू द ग्लोबल स्टेज. तो इन के बारे में बताना चाहती हूँ. फर्स्ट डेब्यूटेंट द आइलैंड नेशन काबो वर्दे, ए tiny powerhouse from the west coast of Africa with a population of just 500,000, ladies and gentlemen. उन्होंने अपने क्वालिफायर्स में ट्रेडिशनल पावर हाउस कैमरून को हरा कर सबको actually surprise kar diya, and here they are. Next is Curaçao, and Curaçao ek stunning Caribbean destination hai, making headlines as the smallest nation by population of merely what, 150,000, aur ye sabse chota country hai to ever qualify for a World Cup. The entire Curaçao 26 man squad jo hai, usme se sirf ek player hai jinka naam hai Tahith Chong, who was actually born on the island, and the rest were born and trained in the Netherlands, though they share heritage with Curaçao, which is an autonomous country within the Kingdom of Netherlands. Just FYI. Moving over to Asian football, and that's Jordan, ladies and gentlemen. Jordan has fought through a grueling traditional route to earn their place among the elite FIFA, club. Pehle hamesha ye team close finishes mein reh jaati थी, पर इस बार उनका परफॉर्मेंस कमाल का रहा, एंड दे आर पार्ट ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2026. एंड फाइनली द फोर्थ डेब्यूटेंट इन दिस वर्ल्ड कप सिनारियो दैट वी आर गोइंग टू सी, रिप्रेजेंटिंग सेंट्रल एशिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन टूर्नामेंट हिस्ट्री, वी हैव द इनक्रेडिबल रेजिलियंट स्क्वाड फ्रॉम उज्बेकिस्तान. और कई सालों से इनको अंडर अचीवर्स कहा जाता था, लेकिन अब ग्लोबल स्टेज पर अपना धमाका और अपना कमाल दिखाने के लिए दे आर सो रेडी. सो दीज फोर टीम्स प्रूव दैट द ब्यूटिफुल गेम इज एक्सपैंडिंग इट्स आइडेंटिटी, वेलकमिंग न्यू ड्रीम्स टू द एब्सोल्यूट pinnacle of sports. It's the FIFA World Cup 2026, ladies and gentlemen, and it starts today with the opening ceremony kicking off in the Mexico City at 12:30 p.m. Central Time.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: जिस बात का डर था वही हुआ, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन।
3: अरे कहना क्या चाहते हो?
4: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी, अब टेंशन का टाइम गया। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। हिंदी, तेलुगू, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर। फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, इरविंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू, कॉल 214-666-6259 और विजिट passionhealthprimarycare.com। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ, योर लैंग्वेज, योर कम्फर्ट।
5: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
6: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
7: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
8: एक बात बता, रिटायरमेंट में सबसे स्कैरी क्या होता है?
9: क्या?
8: सैलरी बंद हो जाती है.
9: और बिल्स बंद नहीं होते.
8: एग्जैक्टली. इसलिए स्मार्ट लोग वेल टैक्टिक्स से स्ट्रेटजी बनाते हैं.
9: मतलब?
8: ऐसी स्ट्रेटजी जहां इनकम रुकने के बाद भी पैसे का फ्लो बंद नहीं होता.
7: द वेल्थ टैक्टिक, स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर योर रिटायरमेंट इयर्स. फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
10: Chicken banana.
11: Chicken banana?
12: Bro, banana नहीं, banana. मतलब make the chicken right.
6: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
13: Documents या parcel भेजनी है?
12: हाँ.
13: घर relocate करनी है?
12: हाँ.
13: गाड़ी भी transport करना है?
12: हाँ भाई हाँ.
13: तो फिर tension क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को call कर.
14: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में trusted shipping और moving services. SFL Worldwide, हर मूव का perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.

0: am so ready to take your calls. 972-235-5555 स्टूडियो का नंबर है. लेकिन उसके पहले दो बातें जो आप लोगों से शेयर करनी है. तनिष्क आपके लिए लेकर आए हैं फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज. जैसे आपका और हमारा ये एनर्जी एक्सचेंज होता है ना इस कॉन्वर्सेशन ग्रुप में, वैसे ही ये कुछ जो बढ़िया सा डील है आप लोगों के लिए वो आप तक पहुंचा दिया जाए फ्रॉम तनिष्क. एक्सचेंज योर ओल्ड गोल्ड एंड गेट $5 एक्स्ट्रा पर ग्राम ऑन एक्सचेंज गोल्ड विथ डायमंड परचेजेस. और 9 कैरेट से ऊपर के ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर 0% डिडक्शन है. मैंने कहा था ना कमाल का डील है आपके लिए. सो टर्न योर ओल्ड गोल्ड इनटू समथिंग रियली न्यू ब्यूटीफुल एंड टाइमलेस ओनली एट तनिष्क यूएसए. ऑफ कोर्स टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, जिसके बारे में आपको और पता चल सकता है जब आप उनसे बात करोगे. वंस अगेन तनिष्क इज ब्रिंगिंग दिस फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज एंड फन एशिया ब्रिंग्स दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज एंड यू नो the question and answer that we have in the form of a conversation that we do here. Sawal bada simple sa hai ki aapke elementary years mein ya going into middle school years wo kaun sa game hai jiske sitare aap the aur aapki team thi, aapke friend circles mein aap the aur baaki aapki friends thi. Zarur batayega mujhe. 972-235-5555 number in the studio. And this you are playing for Red Hot Chili Pepper dry chili chicken aur saath mein jili चिली बेबी कॉर्न या तो फिर चिकन मक्खन वाला. इन तीनों में से कुछ भी आप चूज कर सकते हो. ये चॉइस आपकी है. लेकिन आपकी बचपन की चॉइस इज व्हाट आई वांट टू नो. यू आर लाइव ऑन एयर. थैंक यू फॉर होल्डिंग द लाइन फॉर मी. शाहीन टेल मी, क्या खेला करते थे? yeah. मोहल्ले का क्या गेम होता था?
1: Well, this is Shahina here.
0: Shahina,
1: and
0: thank
1: हम
0: you.
1: लोग बहुत सारे गेम्स खेलते थे. वैसे सारे पूरे बिल्डिंग के आजू लाइक हमारी बिल्डिंग होती थी, हमारे सामने बिल्डिंग होती थी. एंड वी ऑल द चिल्ड्रन यूज्ड टू बी ऑन द ग्राउंड एंड वी यूज्ड टू प्ले लाइक दबाई स्पाइस एंड लगोरी. एंड वी यूज्ड टू प्ले कलर करके गेम होता था.
0: अच्छा, लगोरी क्या होता था?
1: लगोरी इज लाइक द 7 stones.
0: ओ अच्छा,
1: फिर उसको मारना होता है.
0: करेक्ट. यस यस यस,
1: मार के भाग जाना होता है.
0: हाँ, याद है मुझे. अमेजिंग. वेल शाहीना, थैंक यू सो मच.
1: I have a message for Dallas.
0: Yeah, and it is.
1: Can I give the message? Small message for Dallas.
0: What is it about? If you could tell me.
1: Hello.
0: Yeah, what is it about? If you could tell me.
1: I just want to say, जैसे हम लोग बचपन में एक दूसरे को माफ कर देते थे.
0: हाँ.
1: जैसे हम बचपन में खेलते थे और फिर भूल जाते थे.
0: हाँ.
1: और हम लोग झगड़ा नहीं करते थे, फिर एक साथ हो जाते थे. वैसे ही हम जब बड़े होते हैं, सो प्लीज एक दूसरे को माफ कर दिया करो. एंड लाइफ का भरोसा नहीं है. लाइफ इज वेरी शॉर्ट, यू नो.
0: सो
1: जस्ट फॉरगेट एंड फॉरगिव.
0: एब्सोल्युटली अ वेरी गुड मैसेज देयर शाहीना. रियली अप्रिशिएट योर कॉल. लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉलर एंड फाइंड आउट व्हाट यू यूज्ड टू प्ले. टेल अस ब्रीफली.
2: हेलो.
0: हाय,
2: मेरा नाम यास्मीन है.
0: हाँ जी.
2: और हम बचपन में फ्रेंड्स लोग हम लोग बाई बाई खेलते थे.
0: भाई भाई खेलते थे.
2: बाई बाई बाई बाई
0: बाई बाई
2: का मतलब ये है, बाई बाई का मतलब ये है कि एक एक घर उनका बनता था, एक घर हमारा बनता था. फिर हम मिट्टी के चूल्हे होते थे.
0: अच्छा.
2: हम एक घर जाते थे.
0: अच्छा.
2: और खाना पकाते थे.
0: ओहो, वो घर घर खेलना जो होता था, घर घर खेलना. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. 972-235-5555 नंबर इन द स्टूडियो. यास्मीन जी, आपका नाम भी लिस्ट में आ चुका है. यू गाइज आर प्लेइंग फॉर रेड हॉट चिली पेपर. किसी एक विनर को हम देने वाले हैं. इस गाने के बाद लेते हैं कुछ और कॉल्स.

0: मैं बताती हूँ मैं कहाँ गई थी. कल मैं रेड हॉट चिली पेपर गई थी एंड वी हैड यू नो द बंगाली मेन्यू एट द एलन लोकेशन. क्या अमेजिंग खाना था यार, सीरियसली मजा आ गया. आई मीन आई एम अ बॉन्ग, यू कैन इमेजिन माई एक्साइटमेंट हियर. एंड टू एवरीबडी हु इन्जॉयज दोज बंगाली डिशेज, आप लोगों के लिए बहुत कुछ वेराइटी है वहाँ पर, जरूर जाइएगा. लेकिन फिलहाल वन ऑफ यू इज गोइंग टू गेट फ्रॉम रेड हॉट चिली पेपर. और हमारा सवाल सिंपल सा है यार, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप आज से शुरू हो रहा है, हमने सोचा कि यार आप क्या खेला करते थे बचपन के दिनों में, ये जान लेते हैं थोड़ा सा. यार हम भी अपने मोहल्ले के स्टार होते थे. हमारा होता था हाइड एंड सीक, हम चिपन चुपाई खेलते थे. और घर होता था एक ये मैसिव घर विद मैसिव बैकयार्ड, और घर के अंदर हम अलाउड नहीं थे, बाहर ही. आप सोच सकते हो कि मतलब कितनी क्रिएटिविटी लगती है टू फाइंड आउट स्पॉट्स टू हाइड. ये अपने आप में कला है, ईजी नहीं है सीरियसली. मतलब बहुत मेहनत लगता है टू फाइंड आउट द राइट स्पॉट्स. One would know if one has played. You are live on air. बताइए. Hello, you
1: मैंने
0: live.
1: बता दिया.
0: अच्छा आपने
1: बता दिया था.
0: अच्छा आप
1: मैं बोला था कि अपने बोला था होल्ड करने के लिए.
0: अच्छा ममता, मैंने सोचा कि ऑन एयर बातचीत कर लेते हैं. बताइए फिर से एक बार हमारे लिसनर्स को बताइए एक्चुअली कि क्या खेलती थी आप.
1: मैं छुपन छुपाई खेलती थी, जंप रोप खेलती थी, लूडो खेलती थी.
0: हम लोग मतलब मारती थे ना, मतलब कि अगर बैठ के कुछ खेलना तो भी हम गेम्स फाइंड कर लिया करते थे. अगर भाग दौड़ वाला कुछ खेलना है हम वो भी पता कर लेते थे क्या खेला जा सकता है. वी वर सो गुड वंट वी. वेल थैंक यू फॉर होल्डिंग द लाइन. चलिए आपने इतनी मेहनत की है, दोबारा सारा कुछ शेयर किया है, ऐसे ही आते रहें. एक और कॉल, आखिरी कॉल लेने वाली हूँ एंड देन वी विल अनाउंस द विनर. थैंक यू वेरी मच फॉर होल्डिंग द लाइन एंड यू आर लाइव ऑन एयर.
2: हेलो.
0: हाय.
2: यस आई एम मैम 80 इयर्स ओल्ड, सो वी वर प्लेइंग विद माय फ्रेंड्स द गुल्ली डंडा.
0: गिल्ली डंडा. हाँ गिल्ली
2: डंडा.
0: ओहो हो क्या मजे आते थे उसमें भी. मैंने भी देखा है, मैंने कभी खेला नहीं है बट आई हैव वॉच्ड किड्स प्ले.
2: उस टाइम तो और कोई गेम था ही नहीं हमारे टाइम में तो.
0: हाँ यही था सिर्फ. अच्छा सर जी नाम क्या है आपका.
2: अश्विन पटेल.
0: अश्विन जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल. लेट्स टेक दिस लास्ट कॉलर ऑन एयर एंड वी शुड बी डन. इतने सारे भी कॉल्स आ रहे हैं लेकिन अब ये आखिरी कॉल, सच्ची वाला आखिरी कॉल. यू आर लाइव ऑन एयर. बताइए क्या खेला करते थे बचपन में.
3: हेलो.
0: हाय व्हाट्स योर नेम.
3: हाँ मैं क्रिकेट खेला करता था.
0: हाँ जी मतलब कपिल देव से अपने आप को कम तो समझते नहीं होंगे आप आई एम श्योर.
3: जी जी हम लोग ग्राउंड ढूंढा करते थे. पहले बड़े ग्राउंड थे, फिर वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गया, फिर छोटे ग्राउंड में खेलते थे.
0: ओहो तो, हाँ बड़ा दुख हुआ होगा वैसे.
3: जी
0: क्या नाम है सर आपका.
3: नीरज.
0: नीरज होल्ड द लाइन. नीरज आई थिंक आई एम गोइंग टू गिव यू दिस गिव अवे. आपको मिलता है रेड हॉट चिली पेपर की तरफ से ईदर ड्राई चिली चिकन या चिली बेबी कॉर्न, या फिर आपको मिलता है चिकन मक्खन वाला विच यू कैन रिडीम एट ईदर रिचर्डसन मैकनी और एलन लोकेशन. प्लीज होल्ड द लाइन, आई विल टेक ऑल योर डिटेल्स ऑफ एयर. थैंक यू. एंड नीरज ने जीत लिया है ये इनाम. लेकिन एक और इनाम आ रहा है इन द नेक्स्ट सेगमेंट. और बाकी सबके लिए ये गाना, बिकॉज आप सवार हैं नॉस्टैल्जिया एक्सप्रेस पे जहाँ पे कोई भी डिसअपॉइंटेड वापस नहीं जाता.

0: Before I hit the break, I do want to ask Neeraj, who won this segment, Red Hot Chili Pepper ka ye giveaway unhone win kiya hai. Aur agar aap mujhe call karte hain during the break, great. Otherwise, I'm going to give it to Mamta. Mamta, please stand by. I'll let you know by the end of the end of the break if you have won this one. But for now, Neeraj is the winner. Neeraj, please call me back for that giveaway that you have won from Red Hot Chili Pepper. Ye aap chhod nahi sakte ho. Seriously. You are listening to Funisha Radio 104.9 FM. Ek break pe jane wale hai. Aur gapshap gali mein kuch aur gapshap hamari continued rahegi.
1: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
2: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
1: Renew?
2: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
1: What better way to celebrate than with something timeless?
2: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
4: Computer ji ka sawal ye hai, business owners ko loan lena mushkil kyun lagta hai? Option A, slow process. Option B, zyada paperwork. Option C, credit score ka concern. Ya option D, loan decline hone ka dar.
5: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा.
4: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए.
6: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है. नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं. रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में.
7: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338. 817-786-3338. The SBA लोन एक्सपर्ट्स. फैसला क्लैरिटी के साथ.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com. देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
7: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी. तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
12: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
13: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.
14: Tracks that put you on the right track.

यू नो फ्यू थिंग्स यू नेवर फॉरगेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो फिल्म थी खिलाड़ी, खिलाड़ी की जब ऑडियो कैसेट निकली थी, ऑडियो कैसेट में खिलाड़ी के साथ एक और फिल्म था जिसका नाम है दीवाना। ये साइड ए और साइड बी की बात हो रही है यहाँ पर। जी हाँ, मैं आपको वो ऑडियो कैसेट्स के ज़माने में ले जाना चाहती हूँ, जब यू नो कई बार होता था कि आपके फेवरेट मूवी के गाने आप जब उसका उनके गाने ऑडियो कैसेट्स में खरीदना चाहते हो, कई बार इट द बैरिंग वॉजन दैट ग्रेट, लेकिन कभी कभी ऐसा बिल्कुल गोल्ड माइन मिल जाता था कि ए साइड की फिल्मों के गाने भी बहुत अच्छे हैं और बी साइड की फिल्मों के गाने भी बहुत अच्छे हैं। और यही कॉम्बिनेशन था खिलाड़ी और दीवाना का, एंड दीवाना का गाना मैं लगाने वाली हूँ। लेकिन ऐसा ही एक कोई कॉम्बिनेशन जो आपके पास था मुझे ज़रूर बताइएगा। डू यू रिमेंबर द ऑडियो कैसेट टाइम्स, और ये जो ऐसे कॉम्बिनेशन मिलते थे फिल्म्स के, कभी कभी कुछ फिल्मों के ऐसे स्टैंड अलोन कैसेट्स भी होते थे ऑडियो कैसेट्स, लेकिन कुछ कुछ फिल्मों के कॉम्बिनेशंस मिलते थे, वो कॉम्बोज मिलते थे ऑडियो कैसेट्स में। तो अगर आपको कोई भी कॉम्बो ऐसा याद है ना, प्लीज़ रीच मी एट 972-235-5555, क्योंकि मेरे पास है आपके लिए एक गिव अवे जो कि मैं इस गाने के बाद बताने वाली हूँ। उसके पहले ये भी बताने वाली हूँ कि जैसे ये सारे किस्से कभी मिटाए नहीं मिटते ना, वैसे हमारे कुछ इंसिडेंट्स एक्सीडेंट्स होते हैं जो मिटाए नहीं मिटते हैं, लेकिन अगर कॉम्पनसेशन मिल जाए इफ़ इट इज़ द अदर पार्टीज़ फॉल्ट, तो फिर जख्म जो है वो भर जाता है, मोस्ट लिटरली ऑल्सो एंड टॉकिंग अबाउट द मेंटल स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑल्सो। तो अगर आपके कुछ अगर कार एक्सीडेंट में आप पड़े हो, यू नो, एंड स्लिप एंड फॉल का कोई केस हो, या फिर वर्क प्लेस कुछ इंजरी हो, तो अटर्नी ओमर ख्वाजा को ज़रूर याद करें। ही विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कॉम्पनसेशन दैट यू डिज़र्व। इंश्योरेंस कंपनीज के साथ माता पच्ची करना ना, it's hugely tiring, and therefore it is important कि आप इनके साथ बात करें, क्योंकि इनके साथ एक बहुत बड़ा एक प्रॉमिस जो लेकर आते हैं कि यू डोंट हैव टू पे अंटिल यू विन योर केस। तो फ्री कंसल्टेशन के लिए 4693005046 इज़ दैट नंबर, attorneyomar.com इज द वेबसाइट। गेट रेडी टू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर ऑल ऑफ यू। 90s में आपके पास अगर

0: दीवाना वॉज द नेम ऑफ द फिल्म और इस गाने के साथ एंट्री होती है शाहरुख खान की इन द फिल्म विच ऑल्सो स्टार दिव्या भारती एंड ऋषि कपूर. यू आर लिसनिंग टू फनीशा रेडियो 104.9 FM टॉकिंग अबाउट ऑडियो कैसेट्स. वो 80s 90s का जमाना जब हमें ना एक पेयर मिलता, एक कॉम्बो मिलता था, यू नो, कि ए साइड पे एक फिल्म का गाना होगा, बी साइड पे एक और फिल्म का गाना होगा. और उस कॉम्बो के बारे में ही बात करना चाहती हूँ. इज देयर अ कॉम्बो दैट यू रिमेंबर? 9722355555. दिस इज द वन फिल्म आई रिमेंबर जिसमें ए साइड में और बी साइड में दोनों साइड में हमारे पास जो ऑडियो कैसेट था इट हैड द सॉन्ग्स ऑफ तेजाब. एक कॉल लेते हैं और पता करते हैं क्योंकि यू ऑल आर प्लेइंग फॉर इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ. आई वॉन्ट यू ऑल टू रिमेंबर कि ये वो जगह है कि जहाँ पे आपकी सारी ग्रोसरी नीड्स पूरी तरह से पूरी होती हैं, यानी कि स्पाइसेस से लेकर ऑफकोर्स ग्रोसरीज और फ्रेश प्रोड्यूस की बात हो रही है यहाँ पर, और आपके डेली देसी एसेंशियल्स सारा कुछ आपको मिल जाएगा. इंडिया बाजार लोकेटेड एट 5152 क्वाड्रेंट वे इन फोर्ट वर्थ एंड इट इज़ मोस्ट कन्वीनियंट फॉर पीपल लिविंग इन फोर्ट वर्थ, केलर, हर्स्ट एंड हैसलेट. सो येस, टेल मी इफ यू कैन एक्चुअली रिमेंबर द ऑडियो कैसेट टाइम्स, और मुझे अगर आप बता सकें कि आपके पास कौन से कैसेट का कॉम्बो था बॉलीवुड फिल्म्स का. हाँ जी, यू आर लाइक, हाँ जी, आपका नाम
1: पूजा.
0: पूजा, टेल मी,
1: क्यामत से क्यामत तक और वारिस और एक है अर्थ और हम साथ साथ.
0: अरे वाह, कयामत से कयामत तक एंड वारिस, दे वर फ्रॉम डिफरेंट टाइम्स, सेम ईयर रिलीज हुए थे क्या दोनों?
1: 1988 और मैंने एक कैसेट चार बार खरीदी है मसूरी की माल रोड पे सुन सुन के.
0: घिसी है इतनी आपने तो. फिर कयामत से कयामत तक का कौन सा गाना जल्दी से बताएं.
1: पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, उसके हर सॉन्ग अच्छा था.
0: हाँ, दैट इज सो ट्रू. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा कमिंग अप फॉर यू पूजा. वी आर ट्राइंग टू
1: एंड वारिस का.
0: हाँ जी,
1: वारिस का भी मेरे प्यार की उम्र हो
0: इतनी सनम, क्या गजब का गाना है. एंड दिस इज गोइंग आउट टू यू पूजा. वी आर रिमेम्बरिंग द ऑडियो कैसेट का जमाना.

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: ऑलराइट, कुछ और कॉल्स आए मेरे पास. एक हमारे लिसनर है जिन्होंने बताया उनके पास कैसेट था मर्यादा और साथ में आपकी कसम का. दैट कॉम्बो, ऑडियो कैसेट कॉम्बो, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. यू आर लिसनिंग टू फाइनेंशियल रेडियो 104.9 एफएम. 90s, 80s, 70s, 60s, यू कैन गो डाउन टू द स्टार्ट ऑफ द फिल्म्स एंड वी हैव हैड ऑडियो कैसेट्स, जहाँ पे हमारे ऑडियो कैसेट्स में ना दो फिल्मों के अक्सर कॉम्बोज हमें मिलते थे. कभी कभी एक फिल्म का गाना इज व्हाट वी वॉन्टेड, दूसरा एवं आ जाता था. कभी वो पसंद आता था और कभी वो नहीं आता था. बहुत कम ही होता था कि दोनों साइड के हमारे फिल्मों के गाने बड़े अच्छे होते थे. समथिंग दैट वी रियली रियली वांटेड टू ऐड इन आवर लाइब्रेरी, यू नो. सो यू आर लाइव ऑन एयर, लेट्स हैव यू टॉक अबाउट द ऑडियो कैसेट कॉम्बो दैट यू वर टेलिंग मी.
1: हाय. So the audio cassette that I was talking was, that was the Jamana of the Pillari.
0: Yes.
1: So he had lot of hits those
0: yes.
1: time, and then back to back many, many movies. So one of the combination was Disco Dancer and Namak Halal. So these two movies, right, were both superstars, like
0: super,
1: you know,
0: and all the songs were super hits from both the films. And it used to be a very rare thing to get, you know, side A and side B, the choice that you really wanted to add to your library, as I said. Yeah, absolutely.
1: Exactly. And
0: thank
1: then also
0: you,
1: another thing is that, you know, the both superstars, Amitabh Bachchan and of course, you know, Mithunda.
0: Yeah,
1: Mithunda has become the superstar with that.
0: Yeah.
1: Of course, Amitabh Bachchan was already a superstar.
0: Superstar.
1: And the other combination was Jitendra. So, you know, Himmat Wala and Mawali.
0: Himmat Wala
1: and Mawali. Both are
0: yes, yes. And that was also a brilliant combination, I would say there. Well, thank you. Thank you, Iqbal. Thank you. Really appreciate your call here. Let's take one more call and go to a song here. You are live on air.
2: जी, आपका शो बड़ा जबरदस्त चल रहा है.
0: थैंक यू जी. थैंक यू. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है सर आपका?
2: मैं आतिफ. मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम लोग पाकिस्तान में जो है ना वो आता था एक बिना का गीत माना.
0: हाँ जी,
2: उसमें सारे के सारे जो है ना टॉप सॉन्ग होते थे.
0: बिल्कुल.
2: मेरे पास जो है ना एक साजन मूवी का था और प्लस उसके साथ एक और मूवी थी. देखिये, मुझे अभी नाम याद था, अभी अभी रूम से निकल गया. तो हाँ, बेसिकली हम लोग जब ट्रेवल करते थे कराची टू हैदराबाद,
0: हाँ जी,
2: तो उनके पास जो है ना कोच वालों के पास बड़ी जबरदस्त कलेक्शन होती थी. तो एक दिन मैंने उससे पूछा,
0: हाँ,
2: कि ड्राइवर से पूछा, बोले भाई तुम ये कैसे लेते हो?
0: हाँ.
2: तो बोले हम लोग जो है ना तस्वीर देख के लेते.
0: ओह, आई सी. मतलब वहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं.
2: बिकॉज़ दे डोंट नो, दे नेवर रीड द सॉन्ग. और उनके पास कलेक्शन ऐसी होती थी बेस्ट. बोले हम पिक्चर देख के लेता पठान होते थे ड्राइविंग करने वाले.
0: बाप रे.
2: बोले जिससे ज्यादा खूबसूरत लड़की का पिक्चर हो वही हम करते.
0: हाँ, क्योंकि उसके ऊपर अच्छे अच्छे ऐसे मतलब वो पोस्टर वाले पिक्चर्स मिलते थे. दैट वाज आल्सो टू कीप फॉरएवर एज अ मेमोरी. और मुझे तो याद है कि हमारे ना एक एक नहीं दो नहीं तीन चार शेल्फ्स होते थे और हमने उसको ना मी एंड माय सिस्टर वी हैड नंबर्ड ऑल आर ऑडियो कैसेट्स देयर. एक हमारा ऑडियो कैसेट का कॉम्बिनेशन था विच वी वर नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ. आई मीन वी वॉन्टेड आर डी बर्मन्स म्यूजिक फॉर सागर, लेकिन उसके साथ जो हमें मिला था वो था गिरफ्तार. और गिरफ्तार के गाने हमें उतने पसंद नहीं थे, लेकिन सागर इज वॉट वी वॉन्टेड. दैट इज वाई वी बॉट द कैसेट. क्या जमाना था सीरियसली. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
3: यार बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
4: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
3: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
4: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
3: ये क्या होता?
4: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
5: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
6: Are you tired of the same arguments, reactions, and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents, and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques, and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
7: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
8: Omar Khwaja.
9: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
10: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
11: क्या मतलब?
12: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही manage कर लेंगे.
12: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
11: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
13: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
15: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
14: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
15: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट.
16: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
17: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
18: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
19: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं, बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
18: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
4: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM Fun Asia Radio.
15: डालस की धड़कन 104.9 FM Fun Asia Radio.
3: Listen.
8: Listen, you are tuned into Financial Radio 104.9 FM. Koishak, thank you for joining us. This is Gapshap Gali with me too. And our bahut sari gapshap chali about audio cassettes. If you missed it, you have missed it, ladies and gentlemen. But I had a grand time talking with all of you. And kitne sare break ke beech mein bhi calls aate rehte hain about the segment. Thoda sa spillover hota hai during the break that I keep taking calls and everything. But I do expect a call from Mr. Iqbal. ज़रूर कॉल कीजिएगा अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो ज़रूर कॉल कीजिएगा बिकॉज यू आर द विनर इन द लास्ट सेगमेंट एंड यू वन फॉर योर सेल्फ फ्रॉम इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ सो गिव मी अ कॉल सो दैट आई कैन गिव योर वेरी डिजर्विंग गिफ्ट हैम्पर और आपके लिए तो भाई गाना भी लगा दिया मैंने डिस्को डांसर से तो ज़रूर कॉल कीजिएगा वंस अगेन दिस इज़ गपशप गली विद मी टू और इस आखिरी सेगमेंट में आई गेट यू सॉन्ग्स फ्रॉम द मूवीज़ दैट रिलीज्ड ऑन दिस डे अब देखिए ऐसा है कि मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की बस एक ही ऐसी फिल्म का के बारे में पता चला जो कि इस वक्त रिलीज़ हुई थी इस दौरान रिलीज़ हुई थी आज के दिन रिलीज़ हुई थी ठीक है सो वील प्ले दैट इन अ बिट बिकॉज इट्स एन अमेजिंग कल्ट क्लासिक दैट इट इज़ तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए इन द मीन टाइम जो कल्ट क्लासिक बनने के लिए तैयार है वो है दिस नेक्स्ट ट्रैक एंड दिस नेक्स्ट फिल्म एक्चुअली मैं वापस आऊँगा दिस इम्तियाज अली फिल्म जिसमें बहुत सारे हमारे बड़े सेलिब्रेटेड एक्टर्स भी हैं जिनके बारे में बताऊँगी आप गाना सुनो मैं वापस आऊँगा इट इज़ हिट द थिएटर्स टुडे इम्तियाज अली नेवर डिसअपॉइंट्स डज ही
20: फोकस कर रहे हैं वेरी गुड
21: क्या सीन है भाई
20: कुड़ी पसंद तो नहीं आ गई

डेफिनेटली ए वेरी इंपॉर्टेंट डे इन बॉलीवुड. बहुत सारी फिल्म आज रिलीज हुई हैं, जिनमें से एक और फिल्म भारत भाग्य विधाता है. एंड दिस वन इज अ फिल्म दैट ऑनर्स द अनसंग नर्सेज एंड हॉस्पिटल स्टाफ्स ऑफ मुंबई कामा हॉस्पिटल, जिन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा के कुछ 400 पेशेंट्स की जिंदगी बचाई थी 2008 मुंबई टेरर अटैक्स के दौरान. एंड दिस इज कंगना रनावत इन अ वेरी रिस्ट्रेन्ड रोल दैट शी हैज डन. द एक्टिंग इज वेरी गुड एज ऑलवेज. कंगना रनावत इज अगेन वन ऑफ दोज कि जब भी जो फिल्म लेकर आती हैं उनकी एक्टिंग सच में बहुत कमाल की रहती है. भले वो फिल्म चले ना चले, लेकिन एक्टिंग उनकी बड़ी अच्छी रहती है. लेकिन इस फिल्म की रिव्यूज़ भी मैं जो देखने की कोशिश कर रही हूँ, आई थिंक इट हैज़ गॉटन पॉजिटिव रिव्यूज़ सो फार. दैट्स वॉट आई एम लुकिंग एट. बट पता है, मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ, मैं रिव्यूज़ से ज़्यादा, क्रिटिक्स के रिव्यूज़ से ज़्यादा, मैं आम जनता के रिव्यूज़ पर ज़्यादा फोकस करती हूँ. एंड देन आई डिसाइड कि मुझे अपने 2 घंटे लगाने हैं कि नहीं थिएटर्स में, नहीं तो मैं OTT प्लेटफॉर्म पे आने का इंतजार करती हूँ. दैट्स अ वेरी दैट्स द माइंडसेट आई थिंक वी ऑल हैव नाउ, राइट? कि वो अगर 2 घंटे हो तो वो वर्थ वाइल वाला 2 घंटा होना चाहिए. तो यस, दैट्स दैट अबाउट भारत भाग्य विधाता. देर इज अनदर फिल्म दैट इज रिलीज टूडे, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. लेकिन उसके पहले जो बताना चाहती हूँ, इट इज अबाउट द वर्ल्ड म्यूजिक डे विच इज ऑन 21st ऑफ दिस मंथ. लेकिन हमारी तैयारी पूरी जोरदार चल रही है, यानी कि फन एशिया हम आपके साथ जो है सेलिब्रेट करने वाले हैं वर्ल्ड म्यूजिक डे. क्योंकि हम मानते हैं कि हर मूड के लिए, हर ओकेजन के लिए ना, हमारे दिमाग में हमारा एक फेवरेट गाना होता है और वो ज़रूर इंक्लूड करते हैं अगर हमारा वो स्पेशल इवेंट सेलिब्रेट हो रहा है. मान लीजिए वेडिंग का ही हो तो एक स्पेशल वेडिंग का गाना होगा. अगर आप थोड़े से दुखी मूड में हो तो एक उसके लिए भी एक गाना है. खुश हो तो उसके लिए भी हमारे दिमाग में एक स्पेशल गाना है. वी हैव अ फेवरेट, इसमें तो कोई शक नहीं है, राइट? तो June 1st से जो शुरू हुआ है 15 June तक बस चलने वाला है. गूगल फॉर्म भरना है एंड नॉमिनेट योर फेवरेट सॉन्ग्स अक्रॉस डिफरेंट म्यूजिक कैटेगरीज. दैट इज व्हाट वी आर आस्किंग यू टू डू. और ये तो इतना आसान काम है कि मतलब मजे से आप कर लो जाकर. नहीं, फनीशिया विल सिलेक्ट द मोस्ट लव सॉन्ग्स फ्रॉम ईच जॉनरा, ठीक है? एंड देन द सॉन्ग्स दैट हैव बिकम द हार्ट बीट ऑफ मिलियंस विल बी अनाउंस्ड ऑन June 21st वर्ल्ड म्यूजिक डे पर. हर शो पे उस दिन एक कैटेगरी, एक जॉनरा डेडिकेटेड होगा और जो विनिंग सिलेक्शन होगा वो फीचर की जाएंगी उस शो पे. Got it? And here's the exciting part. The listener whose song choices make it into our final playlist the most is going to win exciting prizes. Prizes इनके किसकी बत्ती नहीं जलती है, बताइए मुझे. I mean, I am always excited about winning prizes and giveaways, ladies and gentlemen. So I'm sure it has excited you enough to go onto our social media pages या फिर funasia.net, जहाँ पे आपको इस के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी और वो Google form भी मिल जाएगा. तो करिए, अपने categories में आपके अपने favorites जो हैं वो हमें बताइए. It will be so fun to hear it from you. The name of this next movie that I'm going to talk about is Governor. Manoj Bajpayee ki ye film jo aaj hi release hui hai.

दिस इज द फिल्म गवर्नर, जो कि आज ही रिलीज हुई है थिएटर्स में. और द साइलेंट सेवियर गवर्नर में मनोज बाजपाई इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ एस वेंकट रमनन. और ये वो हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ एसोसिएटेड थे. एंड दिस फिल्म इज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय द इवेंट्स सराउंडिंग द 1990 इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस, फीचरिंग द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बिटवीन द RBI एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और ये आज रिलीज हो गई है, तो दिस इज समथिंग फॉर यू टू चेक आउट. एक और फिल्म का गाना सुनवाने वाली हूँ जो कि आज ही रिलीज हुई है, हॉन्टेड 3D एकोज ऑफ द पास्ट. और विक्रम भट्ट वापस आ चुके हैं थिएटर्स में एंड टू हिज सिग्नेचर रूट्स एज वेल. और वो हॉरर फ्रेंचाइज जो है अपना लेकर आए हैं. और ये सुपरनेचुरल मिस्ट्री थ्रिलर जो है, इट हैज़ मिथुन चक्रवर्ती सन मीमो चक्रवर्ती. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट जॉनरा, प्लीज डू चेक इट आउट. फिल्म का नाम है हॉन्टेड 3D एकोज ऑफ द पास्ट.

दिस इज गपशप गली विथ मी टू. और जाने से पहले ना कुछ जरूरी बातें जो आप लोगों से करते जाना चाहती हूँ. टेक्सास प्राइमरी केयर के बारे में बताना चाहती हूँ. 13 साल से आपके साथ हैं, आप इनसे काफ़ी प्रभावित हैं एंड यू आर हैप्पी विथ देयर सर्विसेज एंड दे हैव बीन डूइंग सो मच फॉर द कम्युनिटी. सो नाउ दे आर ग्रोइंग विथ ए ब्रांड न्यू नेम एंड ए सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन, और ये है लुनॉक्सी मेडिकल. डॉक्टर अमनदीप आचार्य एट द हेल्म ऑफ इट. लुनॉक्सी मेडिकल ब्रिंग्स primary care, urgent care, in-house lab testing, x-rays, CT scans, cardiac diagnostics and Himalayan MedSpa services. ये सारी एक ही छत के नीचे मिलने वाली हैं. How about that? Open 7 days a week from 8 AM to 8 PM और आप किसी वक्त भी walk in कर सकते हैं. कोई appointment की कोई ज़रूरत नहीं है. अब जो ज़रूरत है हमें वो है उस गाने की जो आज ही के दिन रिलीज़ हुई थी, 11th of June 1980. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दैट्स वेयर आई एम गोइंग टू टेक यू. क्योंकि सुभाष घई जो है उनके लिए ये फिल्म एक सॉर्ट ऑफ एक इमेज चेंजर बनी. जी हाँ, फिल्म मेकर सुभाष घई, जिन्होंने उसके पहले सिर्फ एक एक्शन फिल्म बनाई थी और वो थी शत्रुघ्न सिन्हा के साथ. फिल्म्स लाइक कालीचरण, विश्वनाथ, गौतम गोविंदा, ये सारी फिल्म उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ बनाई थी. एंड ये जो 1980 की फिल्म थी ये बिल्कुल अलग थी, क्योंकि ही वॉज इंस्पायर्ड बाय दिस 1975 हॉलीवुड फिल्म द री इनकारनेशन ऑफ पीटर प्राउड, और उन्होंने इसको एक अपना इंडियन सोल देने की कोशिश की. Which basically had a message कि जैसा करोगे वैसा भरोगे. And that was Mr. Subhash Ghai bringing for us the reincarnation film Karz, starring Rishi Kapoor.

0: This part of my show is brought to you by AG Fintax, one of the fastest growing tax firm in the US, and they offer innovative financial services with untapped potential for both individuals and businesses. Ye trusted hai, efficient hai, aur aapko bilkul future ready kar sakte hai. 469-942-9888 inka number hai aur agfintax.com inki website hai. Alright, get ready for the opening ceremony that is going to start in just about a minute's time in the Mexico City, where we are kicking off FIFA World Cup 2026, Mexico versus South Africa, the first match right after the opening ceremony. This is my closing time.
1: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
2: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
3: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
4: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
5: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Hire moti main na chahun.
7: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग.
8: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
9: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
10: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
11: इतना सब और प्राइस?
10: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
12: मैं हीरो.
13: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
14: Calculating route, rerouting.
13: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
14: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
13: क्यों?
14: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
13: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
15: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट,
14: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
16: इस शहर को हुआ क्या, कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का.
17: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
18: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
19: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
20: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
21: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
22: Dude, life mein kuch aisa karna hai jisme main front page pe rahun.
23: Front page ka to pata nahi, but tera page 3 mein hona meri guarantee hai.
22: Kaise?
23: Page 3 eatery?
22: No, not another restaurant again.
23: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
22: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
21: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
0: यार बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस।
1: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं।
0: सच में? एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
1: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू। उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
0: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं वापस भी आएंगे।
1: एग्जैक्टली, अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
0: नंबर बोल जल्दी।
1: कॉल जेम्स @321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com।
2: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश।
12: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू। लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi। Exclusive Media Partner, Panacea।

A very good afternoon, my desi people. आप सुन रहे हैं Fun Asia 104.9 FM और मैं हूँ आपकी host, आपकी दोस्त RJ Simi और आज का show है Afternoon Adda. आज आप सुन रहे हैं Throwback Thursday में हम बात करने वाले हैं एक जबरदस्त theme के बारे में, which is villain का जमाना. Heroes तो ठीक हैं, लेकिन एक जमाना था जब film के villain ही पूरी movie की जान हुआ करते थे. आज हम याद करेंगे Bollywood के वैसे ही जेंडरी विलन्स को जो हीरो से भी ज्यादा फेमस थे और हैं. वैसे आपका फेवरेट विलन कौन है? कोई डायलॉग जो आपको किसी विलन का आज तक याद है या आप बताना चाहते हो मुझे, तो आप कॉल कीजिए @972-235-5555 पे.

आज का थ्रोबैक थर्सडे का थीम है विलन्स का जमाना, और हमें बहुत सारे लिसनर्स का कॉल आ रहा है। दुरे काजी जी का कॉल आया जिन्होंने याद किया मोगैम्बो को, मोगैम्बो खुश हुआ। और अजीत जी को तो बहुत सारे विलन्स के बहुत सारे डायलॉग्स याद है, स्टार्टिंग फ्रॉम गब्बर से लेके बहुत सारे उन्होंने बताए मुझे। और विद्युत को याद है शाहरुख खान ने जो विलन का रोल किया था इन द मूवी डर, किरण जी हाँ, वो भी तो विलन में ही काउंट होगा। और बॉलीवुड में विलन्स ना सिर्फ बुरे आदमी नहीं होते थे, वो पूरी की पूरी एक पर्सनालिटी होता था उनका। और सोचिए कि अगर कितने आदमी थे, बस ये तीन शब्द और पूरा का पूरा सीन आंखों के सामने एकदम रीप्ले हो जाता है। गब्बर सिंह ने लोगों को डराया, मोगैम्बो की खुशी से लोग खुद डर गए, और शाकाल ने तो पूरा का पूरा क्रोकोडाइल ही पाल रखा था भाई साहब। वैसे एक और फेमस डायलॉग है, देखते हैं आप इसको कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। डायलॉग ये है कि प्रेम नाम है मेरा डैश डैश। फिल इन द ब्लैंक्स गाइस, बताओ बताओ, मुझे कॉल करके बताओ कि इसके आगे का डायलॉग क्या है। 9722355555 पे।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility, and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety, and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
3: Paid for by Mark Hill for Mayor.
4: Sahiban, Meherban, Kadardan, Fun Asia celebrate kar raha hai World Music Day.
5: World Music Day.
4: गाने हर मोमेंट, हर मूड, हर मौके के लिए, चाहे वो रोमांस हो या फिर दर्द भरे, शादी हो या पार्टी, हमें बताइए आपकी पसंद.
6: From 1st June to 15th June, fill up our Google form and nominate your favorite songs from each genre. Manisha चुनेगा हर कैटेगरी के वो गाने जो बने हैं लाखों दिलों की धड़कन. And on 21st June, World Music Day, Manisha के हर शो पर राज करेगा एक अलग म्यूजिक जॉनर. जिस लिसनर्स के सबसे ज्यादा गाने सिलेक्टेड होंगे वो जीतेंगे एक्साइटिंग प्राइजेस. विजिट funisha.net एंड आवर सोशल मीडिया पेजेस फॉर डिटेल्स.
7: घर की याद नहीं आई तुझे जैसी?
8: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ.
9: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट.
8: सच में बिल्कुल घर जैसा.
9: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर. लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट. चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम.
4: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
10: लिया.
4: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
10: नहीं आया.
4: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
9: Visit www.sanadainc.com today.
11: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
12: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है.
11: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है.
12: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है.
13: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को, प्रॉस्पर और मैकिनी ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support, aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia, get $100 off your first month. Are you seeking clarity in life, wondering what destiny has in store for you?
14: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer ab Dallas mein.
13: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
14: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
13: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
15: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
16: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
15: Renew?
16: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
15: What better way to celebrate than with something timeless?
16: Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200 Frisco 75034. Tanishq, a Tata product.

आप सुन रहे हैं फन एजर रेडियो, मैं हूँ आरजे सिमी और ये शो है आफ्टरनून अड्डा। आज थ्रोबैक थर्सडे का थीम है विलन्स का जमाना और अभी ब्रेक में मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉल्स आए हैं राम के, अली के और अजीत जी के। और क्या मतलब, उन्होंने पूरा माहौल बना दिया था भाई साहब, एकदम इतनी इंटरेस्टिंग बातें बताई मूवीज के विलन्स के बारे में। एंड मुझे कई बार लगता है कि विलन हीरो से ज्यादा स्टाइलिश होता है, कुछ लोगों का स्वैग तो अनमैचेबल था। अमरीश पुरी की आवाज, डैनी का एटीट्यूड, गुलशन ग्रोवर का वो बैटमैन इमेज, और ये सिर्फ बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड की भी कहानी है। जोकर बैटमैन से ज्यादा आइकॉनिक नहीं था? आपको क्या लगता है, आपका फेवरेट विलेन कौन है, उसका फेवरेट डायलॉग कौन है? मीनवाइल शोले का जो अपने गब्बर का ये फेमस सॉन्ग एंजॉय कीजिए, दिस इज रिक्वेस्टेड बाय अजीत।

हीरो तभी तक हीरो लगता है जब तक सामने वाला विलेन स्ट्रांग हो। अगर गब्बर नहीं होता तो जय वीरो की कहानी अधूरी नहीं रह जाती, और अगर मोगैम्बो नहीं होता तो मिस्टर इंडिया का मजा अधूरा रह जाता। आज का थ्रोबैक थर्सडे पर सल्यूट है उन एक्टर्स को जिन्होंने विलेन बनकर हमें इंटरटेन किया और मूवीज को यादगार बना दिया। इसके साथ हम आज का सेगमेंट विलेन का जमाना यहीं पे खत्म कर रहे हैं, लेकिन आगे अभी बहुत सारी बातें, कुछ गिव अवेज और कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स बाकी हैं। तो स्टे ट्यून ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM विद मी यानी कि RJ सिमी।

ये था तुम्हें जो मैंने देखा फ्रॉम द मूवी मैं हूं ना, अभिजीत और श्रेया घोषाल की कमाल की आवाज में। और आपके लिए एक न्यूज है, आपको बता दूं कि अगर आप कोई घर खरीदना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं या फिर रिलोकेट करना चाह रहे हैं इन द DFW एरिया, तो बहुत सारे हैसल्स होते हैं, बहुत सारे ट्रबल्स होते हैं, लेकिन आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है क्योंकि नवनीता खेमका विथ केलर विलियम्स रियलिटी गाइड करेंगे आपको एवरी स्टेप पे, और वो देंगे आपको पर्सनलाइज सर्विस, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रहेगा बिल्कुल, और जेन्युइन केयर जो रहता है ना घर शिफ्टिंग के प्रोसेस में या घर खरीदने या बेचने के प्रोसेस में, वो प्रोवाइड करेंगे इनकी टीम। और क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि हर घर की एक कहानी है और आपको अपना घर बहुत अच्छे से जो है बिल्ड करना चाहिए उसमें रहने के लिए। और अगर आप रीच आउट करना चाहते हैं नवनीता खेमका को तो कॉल कीजिए एट 347-449-4242। आई रिपीट द नंबर फॉर यू, 347-449-4242। और अच्छे अच्छे गाने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, एक सॉन्ग होगा, एक ब्रेक होगा और उसके बाद होगा मजेदार गिव अवे, सो स्टे ट्यून्ड।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
4: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
5: माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म ओन्ड बाय सीपीए सुधीर पाई, ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एज अ सर्विस, फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, रियल एस्टेट, हाई यील्ड नोट्स एंड अदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। फॉर फर्दर डिटेल्स विजिट mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
6: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
7: जिस बात का डर था वही हुआ, lymphosarcoma of the intestine.
8: अरे कहना क्या चाहते हो?
9: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी, अब टेंशन का टाइम गया। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेस और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर। फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, अर्विंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू, कॉल 214-666-6259 और विजिट passionhealthprimarycare.com. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ, योर लैंग्वेज, योर कम्फर्ट।
10: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
11: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
10: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
11: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
12: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna, that's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
13: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

हाँ बता बता, मैं क्यों जालिमा कहलाई भाई, मैं तो आपके लिए एक गिफ्ट गिव अवे लेके आई हूँ, और $10 का गिफ्ट कार्ड लेके आई हूँ फ्रॉम फन पिज्जा किचन। और आज का जो हमारा थीम था विलेन का जमाना, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गिव अवे का उसके अराउंड ही होने वाला है, और मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना है, इंटरेस्ट लिया है, और अगर आपको जवाब पता है तो आपको मुझे कॉल करना है, आंसर बताना है, और आप जीत सकते हैं फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड। सवाल ये है कि जो मूवी शोले थी उसमें जो विलेन का कैरेक्टर था गब्बर का, वो किसने प्ले किया था, उनका असली नाम क्या था। आपको अगर जवाब पता है तो आपको कॉल करना है मुझे एट 972-235-5555 पे। आपको जवाब पता है ना, बताइए।

मुझे पता चल गया है कि आप लोगों को जो है गब्बर बहुत पसंद है और आप भी बहुत ही दिल से उन्हें पसंद करते हैं, पॉपुलर बना दिया है काफी, इसलिए तो मुझे इतने सारे जवाब आए, कॉल्स आए रिगार्डिंग दिस गिव अवे। जी हाँ, सवाल हमने ये पूछा था कि जो शोले मूवी में गब्बर का रोल जिन्होंने किया था उनका असली नाम क्या है। जवाब है अमजद खान, और सबसे पहले सही जवाब दिया है सुरोमा सिन्हा जी ने। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सुरोमा, आपको मिलता है फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड। फन पिज्जा किचन वो जगह है जहाँ पे दोनों ही वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस मिलते हैं आपको। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको ट्राई करना चाहिए अचारी पनीर पिज्जा, और अगर आप नॉन वेज खाते हैं, मीट लवर हैं, तो तंदूरी चिकन पिज्जा इज प्योर स्मोकी परफेक्शन फॉर यू, स्ट्रेट फ्रॉम दी तंदूर टू योर टेस्ट बड्स। अगर आपको माइल्ड पसंद है, मीडियम स्पाइस पसंद है, या अल्ट्रा हाई लेवल प्रो मैक्स स्पाइस पसंद है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। हर एक स्लाइस आपका इंतजार कर रही है इन फन पिज्जा किचन फ्रिस्को, तो जरूर जाएं और अच्छे अच्छे खाने का, अच्छे अच्छे पिज्जा का आनंद उठाएं। अगर आपको मेन्यू या कोई और डिटेल्स चाहिए तो आप जा सकते हैं उनके वेबसाइट पे, which is funpizzakitchen.com।

अब वक्त आ गया है कि मैं आपको बताऊं आज के मौसम का ताजा ताजा हाल। आज आफ्टरनून में डैलस एरिया में गर्मी अपने पूरे जोर पे रहेगी। टेम्परेचर 94 से 96 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहने का अनुमान है और हीट इंडेक्स 100 डिग्री से ऊपर फील हो सकता है। सो सैड। शाम होते होते टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे आएगा और 7 बजे के बाद लगभग 89 से 91 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास पहुंच जाएगा। आसमान ज्यादातर क्लाउडी होगा और हवा चलती रहेगी। रेन के चांसेस लेकिन काफी कम ही है। कुछ इलाकों में आइसोलेटेड शावर्स या थंडरस्टॉर्म की हल्की पॉसिबिलिटी बनी रह सकती है। सो लेट्स सी, आई होप कि मेरा घर उसी आइसोलेटेड लोकेलिटी में हो। दिस वेदर अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय मलाबार गर्ल्स एंड डायमंड्स एंड आई होप दिस वॉज यूजफुल टू यू। एंड फॉर गुड म्यूजिक कीप लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM विद मी आरजे सिमी।

वैसे अगर आप अपनी स्वीट हार्ट को लेके कहीं अच्छी जगह पे खाने के लिए जाना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि पेस्ट्री ईटरी जरूर जाएं। यहाँ आपको मिलेगा फ्रॉम सिजलिंग कबाब से लेके फ्लेवर फूड चाट तक, मतलब फ्यूजन बाइट और रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स। अगर आप अभी तक पेस्ट्री ईटरी नहीं गए, वहाँ का खाना एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो आप सीरियसली लाइफ में थोड़ा बहुत तो मिस कर रहे हैं, तो आपको जरूर जाना चाहिए। और यहाँ आपको मिलता है बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड अलॉन्ग विथ मॉडर्न फ्लेवर। आप ब्रंच के लिए, लंच के लिए, डिनर के लिए, डेट तो मैंने बोल ही दिया, या फिर अगर आप अपने दोस्तों के साथ फूडी मीटअप के लिए भी जाना चाहते हो तो भी दिस इज अ परफेक्ट प्लेस फॉर यू, बिकॉज पेस्ट्री लेके आए हैं मिक्स ऑफ फ्लेवर, एनर्जी एंड वाइब्रेंट वाइब्स। इट्स लोकेटेड एट हब 121। आप इसके बारे में और एक्सप्लोर कर सकते हैं बाय गोइंग ऑन देयर वेबसाइट व्हिच इज pastryeatery.com।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
0: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
3: Kya matlab?
4: Oora can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
4: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
3: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
5: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
11: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
12: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
11: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
13: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
14: इन प्लेनो।
13: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
10: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
15: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000+ गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज पावर्ड बाय लोन फैक्ट्री, NMLS 2025289, लाइसेंस्ड मॉर्गेज ब्रोकर इन टेक्सास। ऑल लोन सब्जेक्ट टू क्रेडिट अप्रूवल, इक्वल हाउसिंग लेंडर।
16: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
17: हाँ।
16: घर रिलोकेट करनी है?
17: हाँ।
16: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
17: हाँ भाई हाँ।
16: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
18: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
19: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
20: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
19: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
20: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
19: सच में? सब संभाल लेंगे?
20: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
15: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम. द शो इज आफ्टरनून अड्डा होस्टेड बाय मी यानी कि आरजे सिमी. और एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन आने वाला है फॉर ऑल ऑफ अस लाइक ऑल द म्यूजिक लवर्स विद जून 21st को जो कि है वर्ल्ड म्यूजिक डे. और म्यूजिक का सबसे बड़ा स्टेशन फन एशिया इसको बहुत जोर शोर से धूमधाम से सेलिब्रेट करने वाला है. इसमें चाहिए हमें आपकी थोड़ी सी मदद. आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा ऑन आर सोशल मीडिया हैंडल्स. आपको उसमें अपना गाना नॉमिनेट करना है अक्रॉस डिफरेंट म्यूजिक कैटेगरीज. और फन एशिया की टीम सेलेक्ट करेगी मोस्ट लव सॉन्ग्स फ्रॉम ईच ऑफ द जॉनरे. और अगर आपके सॉन्ग ने जगह बनाए इन द फाइनल प्लेलिस्ट ऑन जून 21st तो आपको जीतने का मौका मिलेगा एक्साइटिंग प्राइजेस. हम मानते हैं कि हर मूड का अपना एक मेलोडी होता है, चाहे वो रोमांस हो, हार्ट ब्रेक हो, वेडिंग एंथम हो, पार्टी फेवरेट हो. हम जानना चाहते हैं कि आपके फेवरेट सॉन्ग, आपके टॉप पिक्स क्या हैं. तो जाइए जाइए जल्दी से गूगल फॉर्म भर दीजिए. इट्स अवेलेबल ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स.

ये तो सुन लो सैनोरिटा की सैल्स चिकन क्या कह रहे हैं। सैल्स चिकन लेके आए हैं द अल्टीमेट इन्फर्नो स्पाइस चैलेंज, और ये हो रहा है ऑन जून 14th एट 4 PM ऑन द रिचर्डसन लोकेशन। और यहाँ पे आपको मिलेगा एक खतरनाक चैलेंज, देखते हैं किसमें कितना है दम। आपको मिलेंगे 10 मिनट, आपको फिनिश करने हैं 3 जंबो एक्स्ट्रा हॉट टेंडर्स विद ओनली 1 कप ऑफ मिल्क, और डिपिन इज एब्सोल्युटली नॉट अलाउड। और जो प्राइजेस है ना वो तो सारे पेंस का वर्थ इट है। अगर आप एक जंबो टेंडर्स फिनिश कर लेते हैं तो आपको मिलता है फ्री सैंडविच एवरी डे फॉर 7 डेज। अगर आपने 2 जंबो टेंडर्स खा लिए 10 मिनट के अंदर तो आपको मिलेगा फ्री सैंडविच फॉर 15 डेज। और अगर आप वो महारथी निकले जिन्होंने तीनों के तीनों स्पाइस्ड जंबो टेंडर्स चिकन खा लिए तो आपको मिलेगा ग्रैंड प्राइज विच इज अ फ्री सैंडविच एवरी डे फॉर 30 डेज। तो किस बात की देरी है, आप जाइए सैल्स चिकन के इवेंट के लिए रजिस्टर कीजिए ऑन June 14th 4 PM। और आपको सेल्स इनके जो इंस्टाग्राम पेज है ना उनको भी प्लीज फॉलो कर लीजिए, और पार्टिसिपेशन या रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है। वो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि खाओ रजिस्टर करके फ्री में।

एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है बिजनेस ओनर्स के लिए बाय कनेक्टिंग अमेरिका. यहाँ आप अपने कॉस्ट को कैश में बदल सकते हैं. जी हाँ, आपके बिजनेस एक्सपेंस है ना, एक पावरफुल इनकम स्ट्रीम में बदल सकता है बाय देयर यूनिक इंश्योरेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी, जो कि डिजाइन किया गया है बॉटम लाइन को इम्प्रूव करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए. और सिर्फ इतना ही नहीं, वो होम ओनर्स को भी हेल्प करते हैं अपने मॉर्टगेजेस को 10 साल या उससे भी कम समय में यू फिनिश कर देने में. अगर आपको इनसे कंसल्टेशन लेना है तो आप कॉल कर सकते हैं जेम्स को एट 321-888-7345 या फिर आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, विच इज कनेक्टिंग अमेरिका financials.com, और सपने देखने शुरू कर देने चाहिए आपको अपने डेली एक्सपेंस को इनकम में बदलने के.

अभी अभी हमें बहुत सारे कॉल्स आए और वो पूछ रहे थे कि ये जो वर्ल्ड म्यूजिक डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो गूगल फॉर्म हम फिल करने की बात कर रहे हैं फ्रॉम द फन एशिया टीम, वो कहाँ मिलेगा? तो वो आपको एक्चुअली बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स पे है। इंस्टाग्राम पे आप बायो में जाए, वहां पे एक लिंक है। अगर आप फेसबुक पे जाना चाहते हैं तो पिंक पोस्ट में है, या फिर आप funasianet.com पे भी जा सकते हैं, वहां भी आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा। तो जल्दी जल्दी जाइए, इट्स अ कॉल टू ऑल द म्यूजिक लवर्स की जाइए और अपना गाना नॉमिनेट कीजिए। इसके साथ ये शो आफ्टरनून अड्डा अब अपने चरम सीमा यानी कि फिनिशिंग लाइन पे है। हम आपसे दोबारा मिलेंगे अगले हफ्ते मंडे टू थर्सडे 12:30 to 2:30। मैं हूं आरजे सिमी और आपको जाते जाते बता देना चाहती हूं कि ये जो पूरा सेगमेंट था, दिस इज ब्रॉट टू यू बाय ओमर ख्वाजा विद द ट्रैफिक अपडेट्स अराउंड DFW एंड एक्सीडेंट रिपोर्ट। अगर आपको हेल्प चाहिए किसी एक्सीडेंट रिलेटेड इंसिडेंट को डील करने में विद इंश्योरेंस एजेंसी, देन यू कैन रीच आउट टू ओमर ख्वाजा एंड हिज टीम एट 4693005046, या फिर आप उनके वेबसाइट पे जाइए विच इज attorneyomar.com। दिस इज आरजे सिमी साइनिंग ऑफ, टेक केयर।

0: UNESCO is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
2: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
1: Renew?
2: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
1: What better way to celebrate than with something timeless?
2: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
4: Ritesh, kabhi socha hai? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
5: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
4: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
5: वेट, व्हाट?
6: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
7: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
6: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. Call 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
8: Desi cravings simple nahi hoti. Unke levels hote hai. Level 1, mix veg pakora. Light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, masala omelette aur dahi bhalla. Thora nostalgia, thora comfort. Level 3, Amritsari kulcha platter ya pindi chana. Full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhook ho next level, slow cooked keema matar. Rich, bold, no compromises.
6: Isiliye Tandoori Flame lekar aaya hai, new on the flame and new weekend menu. Visit Tandoori Flame in Garland at Shiloh and PGBT. Tandoori Flame, now serving new favorites. Craving ka level badhao, flavor hum sambhal lenge.
4: Hello, accident claim? Okay, name of the lawyer? उमर ख्वाजा.
9: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
10: साहिबान, मेहरबान, कदरदान, फन एशिया सेलिब्रेट कर रहा है वर्ल्ड म्यूजिक डे.
11: वर्ल्ड म्यूजिक डे,
10: गाने हर मोमेंट, हर मूड, हर मौके के लिए, चाहे वो रोमांस हो या फिर दर्द भरे, शादी हो या पार्टी, हमें बताइए आपकी पसंद.
12: फ्रॉम 1st June to 15th June, फिल अप आवर गूगल फॉर्म एंड नॉमिनेट योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम ईच जॉनर. मनीषा चुनेगा हर कैटेगरी के वो गाने जो बने हैं लाखों दिलों की धड़कन. एंड ऑन 21st June वर्ल्ड म्यूजिक डे, मनीषा के हर शो पर राज करेगा एक अलग म्यूजिक जॉनर. जिस लिसनर्स के सबसे ज्यादा गाने सिलेक्टेड होंगे वो जीतेंगे एक्साइटिंग प्राइजेस. विजिट funisha.net एंड आवर सोशल मीडिया पेजेस फॉर डिटेल्स.
13: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनीजिया रेडियो.

वेलकम नमस्कार खुशामदीद फनेशिया रेडियो 104.9 FM पर मैं मधुलिका करती हूँ आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं दूंगी आपका साथ शाम 5 बजे तक कवरिंग इन फॉर किरण। एंड यस, आज हम सुनेंगे वो गाने जिन गानों में कहीं ना कहीं कोई नंबर आता हो। सो इफ़ यू नो अ सॉन्ग विच हैज़ अ नंबर इन इट देन डू गिव मी अ कॉल। द स्टूडियो नंबर इज 972-235-5555। अ बिग शाउट आउट टू सिमी फॉर अ वंडरफुल शो दैट शी ब्रॉट टू अस टिल 2:30। And yes, just reminding you one more time, I'm covering in for Kiran, dungi aapka saath shaam 5 baje tak. Sunenge aaj hum Bollywood ke ya Hindi pop albums ke wo gaane, jin gaano mein kahin na kahin koi number aata ho.

दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सत्ता, दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सत्ता, और से देखा जाए तो बस है पत्ते पे पत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता।

अकेले कोई फर्क नहीं अलबत्ता कोई फर्क नहीं अलबत्ता।

0: That was taken from the movie Dukki Pe, or not Dukki Pe Dukki, but Satte Pe Satta. अच्छा, आज हम सुन रहे हैं बॉलीवुड के या हिंदी पॉप एल्बम्स के वो गाने जिनमें कहीं ना कहीं कोई नंबर आता हो, राइट? सो अगला गाना, जस्ट फॉर फन, लेट्स सी इफ यू कैन गेस, टेल मी विच सॉन्ग आई एम टॉकिंग अबाउट. मैं आपको एक इंग्लिश ट्रांसलेशन दूंगी उस गाने का, एंड यू हैव टू टेल मी विच सॉन्ग इज दैट. सो द ट्रांसलेशन इज समथिंग लाइक दैट, अक्रॉस सेवन सीज आई हैव फॉलोड यू. नाउ गेस विच सॉन्ग आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? सो अक्रॉस सेवन सीज आई हैव फॉलोड यू. स्टूडियो नंबर 9722355555. सुन रहे हैं आज हम बॉलीवुड या हिंदी पॉप एल्बम्स के वो गाने जिनमें कि कहीं ना कहीं कोई नंबर आता हो.
1: You see, the whole country of the system is juxtapositioned by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity.
2: What?
3: My name is Anthony Gonsalves.
2: Gonsalves?
3: Right. My name is Anthony Gonsalves.

0: वेल, जैसा कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, राइट, कि इस गाने का जो मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन दे रही हूँ, यू हैव टू टेल मी कि ये गाना है कौन सा. और ना केवल आप मुझे ये गाना बताएंगे, बट आप नियॉन कैक्टस की तरफ से एक गिव अवे है वो भी जीत जाएंगे. सो नियॉन कैक्टस जो है वो ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर आपको मैक्सिकन फ्यूजन ग्लोबल इन्फ्लुएंस के साथ मिलेगा. फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, ज़बीहा हलाल ऑप्शंस एंड प्लेंटी ऑफ वेजिटेरियन चॉइसेस भी हैं, राइट. सो ऑल पैक्ड विद बोल्ड फ्लेवर्स. और जो वाइब है उस जगह की, दैट्स यंग, कलरफुल, मॉडर्न एंड फुल ऑफ एनर्जी. सो परफेक्ट फॉर हैंग आउट्स, डेट नाइट्स, योर नेक्स्ट चिल प्लान, राइट. सो टॉप इट ऑफ विद क्यूरेटेड कॉकटेल्स, रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स, हैप्पी आवर्स मंडे थ्रू फ्राइडे एंड स्पेशल डील्स एवरी सिंगल डे. तो अगर आप, मैं जिस गाने की इंग्लिश ट्रांसलेशन दे रही हूँ, आपने हिंदी करके उसका गाना गेस कर लिया, देन यू विन अ $20 गिफ्ट कार्ड विच इज डाइन इन ओवर देयर. सो द ट्रांसलेशन इज, अक्रॉस सेवन सीज आई हैव फॉलोड यू एंड आई डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: Hi. So the answer to the question is सात समंदर पार मैं तेरे
0: पीछे
1: पीछे पीछे.
0: पीछे आ गई. वाह वाह वाह, ऑसम. एंड व्हाट्स योर नेम?
1: My name is Shweta.
0: Shweta, you have a beautiful voice and I love the way you actually sang the song. Awesome. So Neon Cactus ki taraf se jeet liya aapne ye giveaway and I'm gonna take you off air and take some details from you. Do enjoy this dine-in and thank you so
1: Thank
0: much for
1: you.
0: tuning in.
1: Thank you. Thank you.
0: Thank you.

Taken from the movie Vishwatma, that was Saat Samandar. And yes, आज हम सुन रहे हैं वो गाने बॉलीवुड के या हिंदी पॉप एल्बम्स के जहां पर नंबर्स मेंशन हो लिरिक्स में. सो वेल, अगला गाना प्ले करूं उसके पहले आपको मैं पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि यहां आपको डॉक्टर 5 या 10 मिनट नहीं, पूरे 30 मिनट का अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करते हैं. जी हाँ, बिकॉज ट्रूली अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम. सो पैशन हेल्थ इज सम प्लेस जहाँ पर आप एक सिर्फ पेशेंट नहीं, यू आर कंसिडर्ड लाइक अ फैमिली मेम्बर, राइट? सो फॉर यू, फॉर योर फैमिली एंड फॉर द हेल्थ ऑफ आर कम्युनिटी, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज देयर. एंड दैट्स नॉट ऑल, पैशन हेल्थ इज ग्रोइंग, राइट? सो दे आर इवन हायरिंग एक्सपीरियंस्ड प्राइमरी केयर डॉक्टर्स, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियंस, साइकैट्रिस्ट फॉर फुल टाइम या पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं एंड यू आर पैशनेट अबाउट पेशेंट केयर, देन आप अपना रिज्यूमे भी भेज सकते हैं उनको टू पैशन हेल्थ फिजिशियंस @gmail.com, और यू कैन टेक्स्ट देम 217-454-4639 for more information. You can visit passionhealthphysicians.com or call 214-666-6259 for more details.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
4: अरे भाई, वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट।
5: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन। चाहे शादी के लिए इंडिया जा रहा हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर। लॉसिन ट्रैवल फॉर नियरली 30 years, लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस। लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री। कॉल नाउ 214-631-2458 और विजिट lawsontravel.com।
6: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को।
7: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
6: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
8: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
9: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
8: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy।
9: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn। समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
10: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
11: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
10: K2 ड्राइव मतलब?
11: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लव फील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
10: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
11: 100%
12: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402। K2 ड्राइव, डायलिसिस स्मार्टेस्ट फ्लीट पार्टनर।
13: ये तेरा घर, ये मेरा घर।
14: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
15: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
14: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
16: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
17: Chicken banana. चिकन बनाना
18: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट।
19: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
20: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna, that's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
0: साहिबान मेहरबान कदरदान फन एशिया सेलिब्रेट कर रहा है वर्ल्ड म्यूजिक डे।
21: वर्ल्ड म्यूजिक डे,
0: गाने हर मोमेंट, हर मूड, हर मौके के लिए, चाहे वो रोमांस हो या फिर दर्द भरे, शादी हो या पार्टी, हमें बताइए आपकी पसंद।
22: फ्रॉम 1st June टू 15th June, फिल अप आवर गूगल फॉर्म एंड नॉमिनेट योर फेवरेट सॉन्ग्स फ्रॉम ईच जॉनर। मनीषा चुनेगा हर कैटेगरी के वो गाने जो बने हैं लाखों दिलों की धड़कन। एंड ऑन 21st June वर्ल्ड म्यूजिक डे, मनीषा के हर शो पर राज करेगा एक अलग म्यूजिक जॉनर। जिस लिस्ट के सबसे ज्यादा गाने सिलेक्टेड होंगे वो जीतेंगे एक्साइटिंग प्राइजेस। विजिट फनीशा.net एंड आवर सोशल मीडिया पेजेस फॉर डिटेल्स।
23: Hi, this is Konkana Sen Sharma and you're listening to me on Fun Asia Radio.
24: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.

You're listening to 104.9 FM, Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूँ मधुलिका, दूंगी आपका साथ शाम 5 बजे तक. स्टूडियो का नंबर 972-235-5555. सुन रहे हैं आज हम वो गाने, बॉलीवुड के या हिंदी पॉप एल्बम्स के वो गाने जिनमें कहीं ना कहीं कोई नंबर आता हो. सो उर्वशी, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस. एंड हियर इज अ सॉन्ग दैट यू रिक्वेस्टेड. आई डू होप यू आर स्टिल लिसनिंग. एंजॉय.

0: taken from the movie Ek Dooje Ke Liye, that was Sola Baras Ki. And yes, aaj hum sun rahe hain Bollywood ke wo gaane ya Hindi pop albums ke wo gaane jin mein kahin na kahin numbers aate hon. So numbers ki baat to hum karenge, lekin pehle main aapko Malabar Gold and Diamonds kahan khareed sakte hain, क्या क्या मिलेगा उसके बारे में बताऊंगी. जी हाँ, बिकॉज इफ़ यू आर लुकिंग टू ऐड अ लिटिल स्पार्कल टू योर स्पेशल मोमेंट्स देन यू नीड टू हेड टू मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, जो कि प्रेस्टन रोड फ्रिस्को में है. दैट्स योर डेस्टिनेशन फॉर स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी दैट्स एलिगेंट टाइमलेस एंड क्राफ्टेड टू शाइन. यू नो, चाहे आपको रिंग्स लेनी हो या इयर रिंग्स लेनी हो या नेकलेसेस या कोई भी कंटेम्प्रेरी डायमंड स्टाइल, विल फाइंड द परफेक्ट पीस. चाहे एंगेजमेंट के लिए हो, एनिवर्सरीज, सेलिब्रेशन, yes, simply just to treat yourself, right? So experience unmatched craftsmanship and brilliance at Malabar Gold and Diamonds in Frisco. And do not forget, definitely download the Malabar Gold and Diamonds mobile app for the latest collections, updates and more details. Kyunki yahan kya hai na, aap जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जो भी उनके कलेक्शंस हैं, वो घर बैठे बैठे भी देख सकते हैं एंड डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, राइट? सो दैट्स द बेस्ट वे कि आप ऐप डाउनलोड करें और उनकी अपडेट्स देख लें, उनका जो भी चीज़ें आई हुई हैं, यू कैन जस्ट टेक अ क्विक लुक देयर. सो दैट्स मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स एट प्रेस्टन रोड फ्रिस्को.
1: कोक स्टूडियो सीजन 10.

Well, that was a Tinak Din taken from Coke Studio Season 10. And yes, आज हम सुन रहे हैं बॉलीवुड और हिंदी पॉप एल्बम्स के वो गाने जिनके लिरिक्स में कहीं ना कहीं कोई नंबर आता हो. सो वेल, अगला गाना तो प्ले करूंगी, लेकिन उसके पहले आपको मैं बताना चाहूंगी विशाल एंड शेखर जो आपके लिए लाइव आ रहे हैं. जी हाँ, आपकी प्लेलिस्ट जो है वो अब बिल्कुल लाइव प्ले होगी एज विशाल एंड शेखर द डियो बिहाइंड सम ऑफ बॉलीवुड्स बिगेस्ट सुपर हिट्स आर ब्रिंगिंग द सुपर हिट टूर टू डैलस. ये होगा जुलाई 12th संडे को. ये होगा कर्टिस कर्वल सेंटर इन गार्लैंड. सो टिकट्स आर ऑन सेल नाउ एट cashpatelproductions.com. दैट्स cashpatelproductions.com.

दैट वाज टेकन फ्रॉम द मूवी राम लखन. जी हाँ, आज हम सुन रहे हैं बॉलीवुड हिंदी पॉप एल्बम कोक स्टूडियो के वो गाने जिन गानों में की नंबर्स आते हों लिरिक्स में, राइट. सो वेल, अगर आप अपने चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंसेज से तंग आ चुके हैं एंड यू आर थिंकिंग अबाउट सेइंग गुड बाय टू ग्लासेज और कॉन्टैक्ट लेंसेज, देन हियर समथिंग दैट यू मे नॉट नो एंड दैट इज लेसिक. इट्स जस्ट वन ऑफ सेवरल विजन करेक्शन ऑप्शंस अवेलेबल टुडे. डॉक्टर शहजाद बाटलीवाला, अ फेलोशिप ट्रेन्ड आई सर्जन एंड फाउंडर ऑफ विजनरी आई इन प्लेनो, इनकी अप्रोच बड़ी सिंपल है, एजुकेट फर्स्ट. जी हाँ, First, you need to know all the options that you have and so that you can make the best decision for your eyes with confidence. So, to learn more about your options and see if you are a candidate, aap unhe call kare. The number is 214-972-2020 or visit lasikplano.com and of course, mention FunAsia 2020 to receive a free consultation.

0: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility, and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety, and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
1: Paid for by Mark Hill for Mayor.
2: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
3: Calculating route. Rerouting.
2: Are, ye kya? Mujhe mere wale grocery store mein jana hai.
3: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
2: Kyu?
3: Kyunki Fort Worth, Keller, Haslett aur Hearst ke smart log jante hain. Daily groceries ho ya puja essentials. Authentic Indian products aur ghar ki har zarurat. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
2: Achha. तो सीधा वही ले चलो
4: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ स्विच द रूट
3: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड
5: आई एम सो स्ट्रेस्ड क्रेडिट कार्ड बिल्स अनसिक्योर्ड डेट्स व्हाट आर वी गोइंग टू डू
6: कुछ भी नहीं उरा डेट रिलीफ विल डू इट फॉर अस
5: क्या मतलब
6: उरा कैन हेल्प अस सेव अप टू 50% ऑन आवर टोटल डेट एंड द रेस्ट वी पे इन इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स
5: बट व्हाट इफ इट डजंट वर्क वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मोर मनी हम खुद ही मैनेज कर लेंगे
6: उरा डेट रिलीफ इज वन ऑफ द लीडिंग डेट सेटलमेंट कंपनीज दे डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी अंटिल आवर डेट इज सेटल्ड एंड दे हैव अ 100% मनी बैक गारंटी कॉल तो करो 888-888-9914
5: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम
7: डोंट लेट डेट रुइन योर लाइफ विजिट ura.org और कॉल 888-888-9914 एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग
10: इस शहर को हुआ क्या कहीं पे अंधविश्वास का काला साया कहीं पे काला जादू धुआं धुआं क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का
11: पंडित रामनाथ जी जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा लव प्रॉब्लम शादी में डिले करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव
9: विजिट psychicramnath.com कॉल 4693474401 प्लेनो मैकिनी अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध
12: सुनो कल बहुत काम है पहले ग्रोसरी फिर पूजा का सामान गिफ्ट्स भी खरीदने और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे
13: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
12: कहाँ फूडिस्तान इन ऑबरी फ्रेश ग्रोसरी हलाल मीट पूजा एसेंशियल्स लाइव पानी पूरी फ्रेश गन्ने का जूस बेकरी आइटम्स प्लस लोवेस्ट प्राइस मैच गारंटी एंड इनसाइड फूडिस्तान एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी वाइब एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर
9: फूडिस्तान इन ऑबरी एवरीथिंग देसी वन प्लेस One vibe.
14: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
9: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
15: Paid spokesperson. Principal Office, Dallas, Texas.
16: Papa, Father's Day pe kya gift chahiye?
17: Beta hai tu mera. Tum log saath baith jao. Yahi kaafi hai.
12: Aur wahi to sabse bada gift hai. All that your father need is good food, great company and unforgettable moments. This Father's Day weekend from June 19th to 21st, take your dad to the Flavor Lounge Frisco. Indulge in refined flavors, elegant dining, and moments that truly matter. Plus, every father gets one free cocktail or mocktail. The Flavor Lounge on Preston Road near Malabar Golden Diamond Complex. Call 469-712-3591 and reserve your table today.
18: Aaja meri gaadi mein baith ja.
19: Baith jaun? Pakka? Kali to teri gaadi ne signal pe dam tod diya tha.
4: Wo thoda overheating tha.
19: थोड़ा तेरी गाड़ी डेट पे कम वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है
20: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
21: इन प्लेनो।
20: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
22: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
23: आई एम राहुल, नाम तो सुना होगा।
24: जी नहीं।
25: क्या आपके बिजनेस के साथ भी ऐसा होता है? तो जरूरत है उसे प्रॉपर प्रमोशन की। इट्स टाइम टू एडवर्टाइज योर बिजनेस विद फन एशिया नेटवर्क। रेडियो, डिजिटल, इवेंट्स, कम्युनिटी आउटरीच, यू नेम इट, वी हैव इट। सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर। कॉल 4694243188 टू एडवर्टाइज विद अस। फन एशिया नेटवर्क, द वॉइस बिहाइंड योर ग्रोइंग बिजनेसेस।
26: डालस की धड़कन 104.9 FM, Phonesia Radio.
27: Well, you're listening to 104.9 FM, Phonesia Radio, bringing the community together. मैं हूँ मधुलिका, दूंगी आपका साथ शाम 5 बजे तक. अच्छा, कई बार होता है कि रिटायरमेंट की प्लानिंग तो हम सब कर लेते हैं, राइट? रिटायरमेंट प्लानिंग इज समथिंग दैट मेनी ऑफ अस थिंक अबाउट, बट नॉट एवरीबडी अंडरस्टैंड हाउ टैक्सेस कैन इम्पैक्ट देयर सेविंग्स एंड लॉन्ग टर्म वेल्थ. Today we are talking about retirement planning with tax smart strategies, how to build wealth, reduce taxes and prepare for a financially secure future. Joining us today is Anil Grandi, CEO of AG FinTax, a tax and financial advisory firm that helps individuals and business owners with proactive tax planning and wealth strategies. Good afternoon, Anil. How are you?
28: I'm doing great. Thank you.
27: Awesome. So I do have some questions on behalf of our listeners.
28: Sure.
27: Okay. So to start with, you know, start with the basics. Like, why is retirement planning so important, and especially from a tax perspective?
28: So one of the biggest misconception is that retirement planning starts when you are close to retirement. Even I talk to so many people 40, 50 years of age, still they have not started their retirement planning. They think that having some stock portfolio is a retirement planning. Mm-hmm. Actually, the retirement planning should start with your first paycheck itself. So because the better financial decisions you take today will decide how your future will be. I have seen so many cases in my experience. People have the same incomes, but someone with a proper tax planning, the other person doesn't have a tax planning, there's a big difference we are going to see when they are retired. So it's not a retirement planning is not like accumulating wealth. Mm. It's also preserving the wealth and eventually passing the wealth to the next generation without any much major effects or impacts.
27: Very interesting. So what are some tax efficient ways individuals can save for retirement?
28: So generally the tax code actually rewards people who save for retirement, because in America, very lesser people save money for the long run. So some few accounts such as 401ks, traditional IRAs, Roth IRAs, HSA, SEP IRAs, solo 401k can really provide a significant tax advantages, so tax savings. But here is the key. The goal is not to simplify the goal is not to simply maximize the contributions. It is about diversification, because we have three types of accounts: taxable, tax deferred, tax advantage. Tax is whatever savings you do. Like if you are investing in the stock market now, if you are selling it, you are earning it this year and you pay taxes this year. Tax deferred, like a 401k, you contribute now, enjoy the taxes now, but when you withdraw, you need to pay taxes. That's called tax defer. Tax advantage is like a Roth IRA, where you invest after tax amount, but money grows tax free. So you need to diversify all your investments in these buckets. That's why the more flexibility you have, the more control you will have over the taxes during the retirement.
27: Very interesting. So Anil, tell me something. How can people reduce taxes on their retirement income in the future?
28: So most people spend decades of time, spend their time over the decades accumulating the money, but they do very little planning on how to withdraw it. So withdrawal strategy is just as important as investment strategy. Like example, Roth conversions may reduce future taxes, and the timing of social security benefits can impact taxation. Strategic withdrawals can also help you in lowering the tax brackets. So retirement should be designed, not discovered. Everything has to be pre-planned from the beginning. Now onwards, whether you are 25 years or 50,

0: Well, that was taken from the movie Udta Punjab. We are listening to songs which have numbers in them. And now we have a giveaway coming up. The giveaway is from Foodistan. Ji haan, Foodistan ka ye giveaway hai. If you are looking for fresh Indian groceries, halal meat, fresh produce, bakery items, live pani puri, fresh ganne ka juice ya fir koi ek upscale dining experience, then you need to visit Foodistan in Aubrey. Foodistan jo hai brings everything desi all in one place, plus they offer a lowest price match guarantee on groceries and free delivery on orders over just $30, but it has to be within 5 miles, right? So here's your chance to win, you know, a free item from the Vibe restaurant, jo ki unka ek upscale Indian restaurant hai located inside Foodistan. To giveaway milega aapko is baat par ki aap mujhe is पर्टिकुलर गाने को जो मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन दे रही हूँ गेस करके बताएं कि मैं किस गाने की बात कर रही हूँ राइट सो द ट्रांसलेशन इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द सॉन्ग इज वेयर फोर फ्रेंड्स कम टुगेदर द नाइट बिकम्स लाइवली एंड जॉयफुल सो टेल मी विच सॉन्ग आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रांसलेशन वन मोर टाइम इज वेयर फोर फ्रेंड्स कम टुगेदर द नाइट बिकम्स लाइवली एंड जॉयफुल Now, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम सुन रहे हैं वो गाने जिनमें कि कहीं ना कहीं कोई नंबर मेंशन्ड हो सो हियर इज द नेक्स्ट वन टेकन फ्रॉम हम आपके हैं कौन
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,

0: Well, that was taken from "हम आपके हैं कौन?" Well, today we are listening to songs जिनमें कि कहीं ना कहीं कोई नंबर मेंशन्ड हो. और पूछा था मैंने आपसे सवाल कि मैं जिस गाने का इंग्लिश ट्रांसलेशन दे रही हूँ, यू हैव टू टेल मी व्हाट सॉन्ग और विच सॉन्ग आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है दैट वेयर फोर फ्रेंड्स कम टुगेदर द नाइट बिकम्स लाइवली एंड जॉयफुल. सो वी डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन
1: जहां
0: एयर. टेल मी विच सॉन्ग आई एम टॉकिंग अबाउट.
1: चार यार मिल जाए वही रात हो गुजर, जहां चार यार
0: टोटली
1: इतना
0: अग्री,
1: ममता
0: राइट?
1: बच्चन।
0: ये तो सच्ची बात है कि जहां चार यार मिल जाए वहां तो मतलब बल्ले बल्ले, है ना?
1: एब्सोल्युटली
0: बिल्कुल सही जवाब. व्हाट्स योर नेम?
1: भावना गांधी।
0: ऑल राइट भावना, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, जीत लिया आपने फूडिस्तान से ये गिव अवे. एंड टेल मी, आप अपने यारों से, दोस्तों से, हाउ ऑफन डू यू मीट?
1: मैं मेजोरिटी ऑफ माय फ्रेंड्स बैक इन इंडिया, पर
0: राइट.
1: हर वीक फोन पे बात हो जाती है। यहाँ
0: हाँ
1: पर जो फ्रेंड्स बने हुए हैं,
0: जी जी
1: वंस
0: जी
1: इन अ वाइल गर्ल्स नाइट आउट मिल जाता है।
0: ओह वाह, दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स रियली नाइस. राइट, जैसे मेरा तो अब मैं यहाँ पे अपने फ्रेंड्स को फैमिली बुलाती हूँ बिकॉज दे आर, यू नो, दे हैव बीन विद अस इन गुड एंड बैड, यू नो, दे आर ऑलवेज देयर फॉर मी एंड फॉर माई फैमिली. सो यस, फ्रेंड्स रियली आर द फैमिली दैट यू कैन चूज, एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव सच वंडरफुल फ्रेंड्स अराउंड मी. सो यस, जहाँ चार यार मिले, सच में रात हो जाती है गुलजार. वेल प्लेड. आई एम गोना प्ले दैट सॉन्ग फॉर आर लिसनर्स वाइल आई टेक यू ऑफ एयर एंड टेक सम डिटेल्स फ्रॉम यू. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग.
1: Thank you so much.
0: टेक केयर, बाय बाय.
1: Bye.

जान के लाले, बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे।

लाइफ मिजरेबल थी उनकी लाइफ ड्रंकड हस्बैंड फाइटर वाइफ बीवी बिगड़े शौहर अकड़े रोज के झगड़े रोज के लफड़े लफड़े झगड़े अरे झगड़े

हंस के बोली, जाने तमन्ना, अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार।

0: भागा भागरे भागरे भागरे भागरे भागा।
1: बोला देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी उल्फत जीती लुटी खुशी फिर लौट के आई। आई रे आई रे आई।

दिस इज मधुलिका, दूंगी आपका साथ शाम 5 बजे तक, कवरिंग इन फॉर किरण. स्टूडियो का नंबर 9722355555. आज हम सुन रहे हैं वो गाने जिनकी लिरिक्स में कहीं ना कहीं कोई नंबर आ रहा हो. तो एक गाना जिसने बच्चों को हिंदी के नंबर सिखा डाले, वो गाना तो अभी तक प्ले ही नहीं हुआ है, एंड दैट्स द सॉन्ग दैट आई एम गोना प्ले नेक्स्ट. जी हाँ, इस गाने ने ना केवल ये गाना इतना हिट हुआ, बट एक अच्छी बात इस गाने की ये हुई कि जो बच्चे थे इंडिया में, वो नंबर्स टू 30 इन हिंदी सीख गए. आई एम श्योर यू गेस द सॉन्ग. वेल, हियर इट इज़. एंजॉय.

0: इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिसे मैं करती हूँ प्यार।

वेल दैट वॉज टेकन फ्रॉम द मूवी तेजाब, और यही वो गाना है जिसने बच्चों को हिंदी गिनती सिखा दी थी अप टिल 30 बड़ी आसानी से, क्योंकि बच्चे दिन रात सुबह शाम यही गाना सुनते और गुनगुनाते, सो नंबर तो याद होने ही थे, राइट? अच्छा आपको बताऊं तो अगर कहीं आप गलती से कोई कार या ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गए हैं, या कोई स्लिप या फॉल इंसिडेंट, देन अटर्नी ओमार ख्वाजा को रखें याद, एज ही कैन फाइट योर केस एंड गेट यू द कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. ही विल डील विद ऑल द स्ट्रेस, यू नो, डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज, एंड साथ ही साथ यू डू नॉट पे अंटिल यू विन द केस. सो फॉर अ फ्री कंसल्टेशन आप उन्हें कॉल करें. द नंबर इज 4693005046, और विजिट attorneyomar.com. वेल दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय ओमार ख्वाजा. एंड येस, दिस इज मधुलिका, लेकर आती हूँ जस्ट चिल. एवरी सैटरडे एंड संडे मॉर्निंग होता है मेरा और आपका साथ, सुबह 10 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक. स्टूडियो का नंबर रखें याद, 9722355555. एंड आई एम गिविंग यू जस्ट फॉर फन अ सॉन्ग जिसका कि इंग्लिश ट्रांसलेशन दे रही हूँ. एंड जस्ट फॉर फन लेट मी सी इफ यू कैन गेस विच सॉन्ग आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? सो गाना ये भी काफ़ी हिट हुआ है, एंड द सॉन्ग ट्रांसलेशन जो पहली लाइन है, इट गोज समथिंग लाइक दिस, दैट मेकिंग 10 एक्सक्यूजेज टुक अवे माई हार्ट. इजी है ना? सो टेल मी विच सॉन्ग आई एम टॉकिंग अबाउट. मेकिंग 10 एक्सक्यूजेज टुक अवे माई हार्ट. सो वेल, स्टूडियो का नंबर 9722355555.

0: That was taken from the movie 1942, A Love Story. अच्छा मैंने ना जस्ट फॉर फन पूछा था कि मुझे बताएं कि मैं कौन से गाने की बात कर रही हूँ, एंड द ट्रांसलेशन वॉज मेकिंग 10 एक्सक्यूजेज टुक अवे माई हार्ट. एंड आई डू हैव अ लिस्टनर ऑन एयर विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: Hi, this is Richa.
0: Hey Richa, how are you?
1: I'm good, how about you?
0: I'm doing great, thank you for asking. तो बताइए कौन से गाने की बात हो रही है?
1: जी, 10 बहाने लेके गई दिल.
0: बिल्कुल सही, 10 बहाने लेके. एंड आपको कितने बहाने आपने दिए थे जब दिल दिया?
1: नहीं, मैंने तो आज तक नहीं दिया. मेरी शादी को कल 11 साल हो रहे हैं और मैं अभी भी बोलती हूँ मेरा दिल मेरे पास ही है.
0: वेल, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी इन एडवांस. एंड ये सही है यार, आपने अपना दिल अपने पास ही रखा, मतलब उनका ले लिया अपना नहीं दिया. वाह वाह.
1: जी, मैंने अपना अपने पास ही रखा है. नो सेल्फ से सब स्टार्ट होता है, यू नो.
0: बिल्कुल,
1: यू हैव टू लव योरसेल्फ फर्स्ट.
0: एब्सोल्युटली, आई टोटली अग्री. सो इज देयर अ सॉन्ग दैट आई कैन प्ले फॉर यू टू, यू नो, सेलिब्रेट योर एनिवर्सरी?
1: I don't know any anniversary songs.
0: How about 10 Bahane?
1: Yeah.
0: I can play that one.
1: 10 Bahane works,
0: yeah. All right.
1: Yeah, that would be great. Thank you.
0: Wishing you a very happy anniversary in advance. And thank you so much for participating.
1: Thank you.
0: Take care. Bye-bye.
1: Thank you so much. Bye-bye.
0: Bye.

Well, that was the title track from Das. अच्छा, नंबरों की बात हो रही है, राइट? आज हम वही गाने प्ले कर रहे हैं जिनमें कहीं ना कहीं कोई नंबर मेंशन्ड हो. सो नंबरों की अगर बात की जाए तो 13 नंबर कई लोग कंसिडर करते हैं अनलकी. यू नो, इन सम वेस्टर्न कल्चर्स लीडिंग मैनी बिल्डिंग्स टू स्किप द 13th फ्लोर. लेकिन मेरे लिए पर्सनली 13 इज़ वेरी लकी. अब वो क्यों क्या ये तो मैं ही जानती हूँ, लेकिन यस, 13 इज़ लकी फॉर मी. एंड 7 नंबर इज़ ऑफन कंसिडर्ड अ लकी नंबर इन मैनी कल्चर्स. सो जनरली होता है जब आप बिंगो भी खेल रहे होते हैं ना, तो जो नंबर अनाउंस कर रहे होते हैं दे से लकी नंबर 7.

0: पिछले सात दिनों में ये सब है खोया।
1: Well, that was taken from the movie Rock On. And yes, we are listening to songs which have numbers in the lyrics. This is Madhulika. Lekar generally aati hoon Just Chill, jahan karte hain hum, as the name suggests, Just Chill. Well, Just Chill mein lekar aati hoon Saturday and Sunday. Subha 10 se leke dopahar ke 12 baje tak hota hai mera aur aapka saath. Well, aaj I am just covering for Kiran. Dungi aapka saath shaam 5 baje tak. And baatein jab numbers ki ho rahi hain, to aapko batao कि सपनों का और नंबरों का भी कुछ एक कनेक्शन है. कई कल्चर्स में यू नो दे अटैच मीनिंग्स टू नंबर्स दैट अपीयर इन ड्रीम्स. जैसे कि अगर सपने में एक नंबर आए तो इट्स कंसिडर्ड कि न्यू बिगनिंग्स या इंडिपेंडेंस इट डिपिक्ट्स. अगर नंबर 3 आए इन योर ड्रीम देन इट्स क्रिएटिविटी ग्रोथ हार्मनी. 7 is often considered lucky, spiritual or mystical. And 9 is, you know, when you dream number 9, then it's like ki kuch completion, kuch fulfillment hone wala hai. So, sapno mein bhi numbers ka kuch na kuch khel rehta hai.

0: का छक्का तो कैच हो गया।
1: फुटबॉल में क्रिकेट?
0: हाँ, कहा ना। सपने में देखा सपना, ओ सपने में देखा सपना।
2: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
3: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
4: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
5: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
4: Renew?
5: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
4: What better way to celebrate than with something timeless?
5: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
6: Mamu, देखो क्या हो गया?
7: ओ क्या हो गया?
6: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
7: ओए जर्मन का कमाल है।
6: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
7: ओ नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623 कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
8: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
9: ये तेरा घर, ये मेरा घर।
10: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
11: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
10: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
12: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
13: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
14: लिया।
13: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
14: नहीं आया।
13: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jamani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
15: Visit www.sanadainc.com today.
16: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेंपल इन फ्रिस्को।
17: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
16: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
18: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI powered platform real time rates compare karta hai taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews, hazaron families ka bharosa. Visit myfamilyhomeloan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
19: Yaar, boss ne fir se daant diya, traffic alag और ऊपर से ये स्ट्रेस।
20: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
19: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
20: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
19: ये क्या होता है?
20: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
15: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
21: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन available.
14: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
19: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
14: K2 ड्राइव मतलब?
19: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
14: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
19: 100%
21: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2 ड्राइव.com और कॉल 214-814-0402 K2 ड्राइव डायलिसिस।

एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा। टन टन टन टन टन तारा, चलते है कैनों से पारा। टन टन टन टन टन तारा, चलते है कैनों से पारा। खड़ी खड़ी क्या सोच रही है, चल हो जाए 9 to 11।

0: शो की दो टिकटें हैं, खोल के पर्स दिखलाओ, चिपक के बैठो साथ तेरे में, टैक्सी में ले जाओ, समझना मुझको ऐसा वैसा,
1: मेरे पटुए में है पैसा,
0: तुझे खिलाऊंगा जी भर के,
2: गरम
0: समोसा इडली या

सीटी रोज बजाओ। बहुत दिनों से सोच रहा था फिल्म में तुझे दिखाऊं। शुक्रवार की शाम हंसी है।

फिल्म हंसी वो जाने मन है, ये फिल्मों में नंबर वन है। गोविंदा है हीरो उसका और माधुरी हीरोइन है। पिछली सीट की दो टिकटे हैं, गुच्छो प्यार करेंगे यारा। एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे तो बारा। टन टना टन टन टन तारा, चलती है क्या नौ से पारा। खड़ी खड़ी क्या सोच रही है, चल हो जाए नौ दो ग्यारह।

बातें कर रहे हैं नंबर्स की, राइट? वी आर लिसनिंग टू सॉन्ग्स विच हैव नंबर्स इन देयर लिरिक्स. तो मैंने सोचा 9 नंबर के बारे में भी आपको बताती हूँ, क्योंकि 9 नंबर के पास एक अपनी अनोखी प्रॉपर्टी है. जी हाँ, 9 हैज़ अ नीट प्रॉपर्टी. आपको पता है, इफ़ यू मल्टीप्लाई 9 बाय एनी नंबर एंड एड द डिजिट्स ऑफ द रिजल्ट रिपीटेडली, यू विल एंड अप विद अ 9. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, 9 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 63. सो आप ये जो रिजल्ट है 63, अगर इसको ऐड करें, 6 प्लस 3 इज 9, राइट? या फिर 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज 81. आप रिजल्ट को ऐड करें, 8 प्लस 1 मेक्स इट 9. सो ये है 9 नंबर की अनोखी प्रॉपर्टी.

दैट वॉज मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां हैं टेकन फ्रॉम द मूवी चांदनी. एंड द नेक्स्ट वन इज अ सॉन्ग रिक्वेस्ट. थैंक यू सो मच क्षितिज फॉर कॉलिंग इन. एंड हियर्स अ सॉन्ग दैट यू हैव रिक्वेस्टेड. इट्स टेकन फ्रॉम द मूवी हीरो नंबर वन.

Well, it's always, always fun talking to you all and playing some melodious songs along the way. It's time for me to say bye-bye, but aap kahin jaiyega nahi. Do stay tuned in to 104.9 FM, Fun Asia Radio, as yahan hamare shows aapko entertain karte rahenge. Coming up next is Banda Bindaas, Marvin Das. Main milungi aapko kal dopahar 2:30 baje, ji haan, 2:30 se 5 dungi apna saath, aapke saath. स्टूडियो का नंबर फिर से 972-235-5555. सो मिलती हूँ कल दोपहर 2:30 बजे. वेल, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. दिस इज़ मधुलिका साइनिंग ऑफ.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Kahan gaya? Kahan rakha tha? Suno na, mera wo wala set kahan hai?
9: Kaun sa?
8: Arre, wo gold wala, thoda traditional, usme polki bhi hai.
9: अरे सारे तो सेम है.
8: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
9: ओ हाँ, ये तो अलग है.
10: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
11: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
10: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी. तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे. Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG FinTax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG FinTax's advisory services.
12: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
13: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
12: सच में सब संभालेंगे?
13: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
10: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
14: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
15: हाँ.
14: घर रिलोकेट करनी है?
15: हाँ.
14: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
15: हाँ भाई हाँ.
14: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
16: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
17: चिकन बनाना
18: ब्रो? बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट.
19: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders. Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
15: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
20: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
15: Kya matlab?
20: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
15: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
20: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
15: Ab to karna hi padega, madam.
21: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
22: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

Wonderful, wonderful track. Haseen to Phasi was the film. Siddharth and Pariniti in this movie, which was Haseen to Phasi. Beautiful track, sung very well. And it's 5:11 in the studio clock. 5:11 ho chuke hain, janab. And deshte hi dekhte waqt jo hai hamare aage aage chalta rehta hai. Hum phir bhi pakadne ki koshish karte hain. But that's how time is. It does not get in our control. And ye baat hume janni zaruri hai, because जो भी आप करना चाहते हो ना, देखते देखते वक्त जो है वो निकलता जाता है. अभी 20, 30, फिर 40, फिर 50 के हो जाते हैं, फिर 60 के, फिर कहते हैं काश वो कर ये होता. क्यों भैया, क्यों काश? करना है तो करो ना यार. देखो, मेरे को ट्रैवल करना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता है, मुझे अच्छा खाना खाना अच्छा लगता है, और जो जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ, ताकि कल को ये ना कहूँ काश मैंने वो किया होता. सब अपने हाथ में है यार. दिस इज़ ऑल अप टू यू ओनली. सो खुशियाँ मार के जीना, क्या जीना है भाई. 10-20 साल हम पैसे जोड़ते रहते हैं, उसके बाद इंजॉय करेंगे, फिर रिटायरमेंट होगा, तब तक सेहत नहीं साथ देती. तो भैया जी, जो आज है ना, उसी में इंजॉय करना सीखिए. टेक टाइम आउट फॉर योरसेल्फ, बी दैट 4 दिन के लिए भी. यू नो, आई हैव द चांस टू गो टू लंदन, मैं 4 दिन के लिए भी चला जाऊंगा. फ्राइडे को जाओ, थर्सडे को जाओ, फ्राइडे सैटरडे संडे बना के मंडे को वापस आ जाओ. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. ऑल यू हैव टू डू इज मेक दैट विल. टुडे मार्क्स द बर्थडे ऑफ अ पंजाबी सेलिब्रिटी हु लेफ्ट अस अ लिटिल टू सून. उनके बारे में आज बहुत सारी बातें करूंगा राइट आफ्टर द 5:20 ब्रेक, एंड विल प्ले सम ऑफ हिज लेजेंडरी सॉन्ग्स एज वेल. आई एम टॉकिंग अबाउट शुभदीप सिंह सिद्धू पाजी, यानी के सिद्धू मूसेवाला. या मोर ट्रैक्स कमिंग अप इन जस्ट अ बिट. This part of the show brought to you by our very own Drive Time sponsor, attorney Omar Khwaja. If you ever get involved in an accident, ye naam aur ye cheez aapko janni zaruri hai ki aapke saath koi hoga, and that is attorney Omar. All you have to do is type in your Google browser or any other browser for that matter, attorney Omar or attorneyomar.com. You'll get all the information, and that is the person who will make sure that you get well compensated for whatever is the loss that you're going through. For now, it is Mashuka. I like this track because its flavor is very different. Here we go.

थिंक ये AI ने हमारा ना केक काटने के चक्कर में ये गाना काट दिया है. बट दिस इज नॉट दैट मशूका दैट आई वांटेड टू प्ले. हियर इज द मशूका दैट आई वांटेड टू प्ले, एंड दैट इज द ओरिजिनल वन फ्रॉम कॉकटेल 2.

भाई मुझे बाकी चीजें तो छोड़ो, मेरे को जो बाकी लैंग्वेज मतलब सुबह शिवल शिमले वो मेरे को बहुत समझ मतलब समझ कुछ नहीं आया, पर बड़ा अच्छा लगा मुझे। ऐसी ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं जो समझ नहीं ना पड़े, ऊपर से निकल जाए, इजी टू अंडरस्टैंड। खैर जो एक चीज़ है ना इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है वो है आपकी लाइफ, क्योंकि लाइफ जो है बस फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। अब बीवी से बहस जितनी जीतने का सपना तो हर आदमी का होता है, बट होता क्या है असलियत में, वो जब बहस होती है तो बस यही कहता है हाँ हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रही हैं, और यही प्रैक्टिस उसकी सारी उम्र चलती है, ताकि रात को शांति से दो रोटी और बिस्तर का एक कोना उससे नसीब हो जाए। एक गाने के बाद लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। फॉर नाउ फॉर ऑल द लेडीज जस्ट लाइक यू आर वाओ।

0: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: Attention business owners, what if your everyday expenses could actually make you money? That's right, with Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful stream of income via a unique insurance product. If you are looking to boost your bottom line, they got the strategy that works for you. Plus, they help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less.
2: Don't wait. Call James at 321-888-7345 today or visit ConnectingAmericaFinancials.com and discover how to turn your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash.
3: Ladies and gentlemen, you're not ready for this. Frisco mein itna pyar milne ke baad, Panch Tara is now open at a new location in Allen. Wahi swaad, wahi junoon aur wahi zabardast management aur customer service. Famous garma garam parhate, roz taazi bani mithaiya aur full service bar waiting just for you. Enjoy fine dining experience aur Punjabi buffet every day. Catering service is also available to make your every celebration memorable. Panch Tara now in Frisco and Allen. Mention Apna Punjab and get exclusive discount on your first visit.
4: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
5: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
4: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Because har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
2: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
6: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था ना वो हेल्प कर रहे थे ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं। आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ
2: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा आपका हक उनके जिम्मेदारी
7: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में रॉयल सोना मसूरी राइस हो नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यही मिलते हैं एक ही ट्रिप एक ही स्टोर और सारा सामान डन तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ HEB हियर एवरीथिंग्स बेटर
8: और सुनाओ हाउस हंटिंग कैसी चल रही है
9: क्या बताऊं इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग
8: यू नीड टू कॉल अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट ही इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर हु प्रोवाइड्स एक्सेप्शनल सर्विस प्लस कैशबैक एट क्लोजिंग अजय रिव्यूज ईच हाउस थरली एंड शेयर्स ऑल द प्रोस एंड कॉन्स एंड नेगोशिएट्स द बेस्ट प्राइस एंड बिल्डर इंसेंटिव्स जस्ट विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई पीपल आर रेविंग अबाउट हिम
10: इट्स ट्रू हम अपने सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
11: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

0: देखो यार, ये पुरानी कहावतों की ना बड़ी गलत बात है कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला और चोर की दाढ़ी में तिनका। नहीं, मुझे एक बात बताओ, अगर चोर लड़की होती तो फिर तिनका कहाँ होता? और बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, यहाँ फ्रिस्को की तरफ इतनी बुरी नजरें पड़ रही हैं, वो मुंह काला नहीं है, वो मुंह गोरा है।
1: रस पीने की प्यास है बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है बंदा ये बिंदास है।
0: 5:26 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में, 5:26 इन द स्टूडियो क्लॉक। थर्सडे की है जी शाम, यानी कि इस हफ्ते का मेरा लास्ट शो। मंडे टू थर्सडे करता हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे थोड़ा सा मी टाइम। एक्चुअली मी टाइम क्या, आपको पता ही है, बीवी तो आपकी भी होगी।
1: प्यास है बंदा ये बिंदास है।
0: Today was the day when the world actually saw, or moviegoers rather, met the lovable alien at the heart of Steven Spielberg's E.T. the Extraterrestrial. The emotional sci-fi hit opened to 11.8 million and became a box office phenomenon, earning nearly $360 million domestically. It held the record as the highest grossing film until Spielberg's Jurassic Park surpassed it in 1993. The year was 1982. The date was June 11th when E.T. otherworldly success came to theaters. This part of the show is brought to you by Dream Home Mortgage. If you are looking for a mortgage, one of the best people in the business are Sharmeen and Hussein Pajwani. Give them a call and they will not disappoint you. 972-245-5626. That's 972-245-LOAN. Or just visit the website dreamhomemortgage.com. Here we go with the next track. And wo jo track hai ji, that is none other than Sidhu Moosewala, because we're remembering him as it is his birthday today. Aaj hi ke din ye legend is dharti pe paida hui thi, but very soon he left us. Nonetheless, he's given us so much, so much to appreciate. One of them is this.
2: Big bird on the top. Big bird on the top.
3: Yeah. Big bird.

0: अरे लाज की बात करें, लज्जा तो इन्हें नहीं आई। बोले चारा चारा कहाँ गया? कहते वो तो गैया खा गई। देखते हैं हमारे साथ कौन जुड़े हैं आज की शाम। गुड इवनिंग, नमस्कार, हम फाइनेंशिया रेडियो, कौन बोल रही हैं?
1: जी, मेरा नाम आरती है और
0: आरती बोल रही हैं।
1: मैंने कॉल, हाँ जी,
0: आपने कॉल किया
1: आप कहने के लिए कि आप लालू प्रसाद यादव की बात कर रहे
0: अरे
1: थे।
0: लालू की बात, मुझे लगा आपने फोन किए हैं कि एक चाय हो जाए, दो पकौड़े मिल जाए पनीर के साथ में, तो मजा आ जाए आज की शाम।
1: जी, वो तो एनी टाइम होता है।
0: वो तो एनी टाइम होता है। आरती जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव हैं। कैसे लगते हैं आपको लालू जी?
1: ये कोई पूछने की बात है? आप क्या आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं?
0: अब मतलब फनी लगते हैं कि बुड़बक लगते हैं कि कैसन लगते हैं?
1: फनी लगते हैं?
0: फनी लगते हैं। हमारे से ज्यादा लगते हैं क्या?
1: नहीं, आपसे ज्यादा तो कोई हो ही नहीं सकता फनी।
0: बहुत बढ़िया, थैंक यू आरती। आप होल्ड कीजिए, आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन ऑफ द एरिया। आई एम टॉकिंग अबाउट लालू प्रसाद यादव जी। आज ही का दिन जन्म हुए थे, वो 11 जून का तारीख था ना, बहुत भूकंप वगैरह आए होंगे दुनिया में, 1948 था सन, और ये थे इंडियन पॉलिटिशियन। बट मैं आपको लेके चलता हूँ जी अगले गाने की तरफ, क्योंकि बात है तो चलती रहेंगी, साथ साथ गाना होना जरूरी। This is funny, yeah.

0: for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
1: What better way to celebrate than with something timeless?
0: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping, aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory, business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
3: अरे भाई वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट
4: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर लॉसिन ट्रैवल फॉर नियरली 30 इयर्स लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स वेकेशन पैकेजेस क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
5: Ritesh, kabhi socha hai? Kal agar tum nahi rahe, to mera kya hoga?
6: Arre relax, sab tumhara hi to hai.
5: Sach? Ya phir court decide karega?
6: Wait, what?
2: Yes, agar proper estate plan nahi hai, to aapki family ke decisions court leta hai.
7: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. Main families ko help karti hoon, unki mehnat ko protect karne mein. The right way with estate planning.
2: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए कॉल 669-243-5799 दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15 मिनट कंसल्टेशन
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
10: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com
13: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
14: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
13: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
15: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
16: Excuse me. It's called being loyal.
15: It's called being predictable.
16: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
15: And what's so special at Neon Cactus?
16: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
15: Not bad.
16: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
15: Okay, this I didn't expect from you.
16: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.

0: विशेषज्ञों का मानना है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय राठौर आखिरी वक्त तक विमान में ही रुके रहे ताकि घनी आबादी वाले अंबाला शहर में लेफ्टिनेंट अजय राठौर
1: सीएजी की रिपोर्ट है क्लियर नाइट सोटीज़।

0: डेफिनेटली यस, यू नो, इमोशनल टच देयर. जब भी ऐसी कोई बात होती है तो मैं तो भैया थोड़ा सा मोम जैसा हूँ, पिघल जाता हूँ जल्दी. कहने की बात नहीं है एक्चुअली. मैं यार द इमोशंस हिट मी अ लिटिल टू हार्ड एंड यू नो माय रिलेशनशिप विद माय मॉम वाज समथिंग व्हिच आई चेरिश टिल डेट एंड शी लेफ्ट मी अबाउट 7 years अगो. बट किसी ना किसी वजह से वो मेरे सपने में ज़रूर आती हैं. एक आश्वासन देती रहती हैं कि मैं आज भी तेरे को देख रही हूँ, यू नो, आई एम देयर फॉर यू एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू नो कि जो भी हमारी लाइफ से जाता है, वैन यू हैव अ वेरी क्लोज कनेक्शन, ट्रस्ट मी, दे आर ऑलवेज देयर लुकिंग आउट फॉर यू एंड दे आर ऑलवेज देयर मेकिंग द प्रेयर्स इन योर एबसेंस. आपके पीछे से आपके लिए क्या दुआएं करते हैं वो ही जानते हैं. बट आई स्ट्रांगली बिलीव दैट दे आर ऑलवेज वॉकिंग विद यू. विद दैट आई एम गोना टेक यू टू द नेक्स्ट ट्रैक, बट आई हैव somebody who is on the air. It's funny as you are. Good evening to you. How are you?
1: Doing well, and how are you?
0: God is good. Life is beautiful. It's just the way you look at it. मेरे लिए तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, and that's how I live every day. बताइए मैं आपके लिए आज क्या कर सकता हूँ?
1: Can you please play the song Walla from the new movie Cocktail 2?
0: Walla from the new movie Cocktail 2 is definitely coming up, and I am looking out for this movie. I hope you are looking out for this as well. Coming out very soon to a theater near you, and this is going to be, I think, aa chuki hai ki nahi aayi yaar. गाना तो पहले चलाएं जिसकी रिक्वेस्ट आई है जी हमारे पास. इन दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय माय टाइम एक्वरी. दे मेक श्योर दैट योर फ्यूचर इज सिक्योर. दे डू इन्वेस्टमेंट्स ऑन योर बिहाफ, चाहे हो जी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट, क्रिप्टो, दे डू इट ऑल. द एंड गोल टू गेट यू इन प्रॉफिट. गिव देम अ कॉल और जस्ट विजिट द वेबसाइट माय टाइम एक्वरी डॉट कॉम. उसके साथ साथ एक सवाल पूछना है मुझे आपसे. सवाल ये है जनाब कि ये जो हार्ट की सर्जरी होती है इसको बाईपास क्यों कहते हैं? जो मुझे देगा सबसे क्रिएटिव जवाब उसको मिलेगा फन, नहीं नहीं, फ्लेवर लाउंज की तरफ से. या तो ढाबा स्टाइल चिकन उनका ज़बरदस्त बनाते हैं, या फिर उनकी दाल मखनी जो घंटों तक पका के क्रीमी करके आपके टेबल पे आती है और कड़क तंदूरी रोटी के साथ आपने खा ली, लाइफ चेंज. क्या बताना है मुझे आपने? आपने ये बताना है कि बाईपास सर्जरी हार्ट की उसको बाईपास क्यों कहते हैं? क्रिएटिव आंसर खाना फ्लेवर लाउंज की तरफ से. 972-235-5555.

0: ऑलराइट विद दैट लेट्स गेट द कॉलर्स गोइंग बिकॉज़ सवाल ये था भैया जी कि इसको बाईपास सर्जरी क्यों कहते हैं, व्हाई डू दे कॉल इट बाईपास। गुड इवनिंग फनेजिया, हु इज दिस ज्ञानचंद?
1: Hi Marvin, this is Anshul.
0: Anshul,
1: and thanks for entertaining us.
0: Thank you, brother. मैं तो thank you करता हूँ ठक्कर family का और फनेजिया का, नौकरी दे रखी है इन्होंने, वो ज़्यादा ज़रूरी है और अगर हम अच्छे से कर पा रहे हैं तो उसके लिए thank you Anshul. Anshul, ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत। बताइए कि आपके हिसाब से ये bypass surgery क्यों कही जाती है सर?
1: नहीं देखो, ज्ञान वाले लोग तो ज्ञान देते रहेंगे, ये तो आपने बोला क्रिएटिव आंसर चाहिए आपको, तो फिर ऐसा विज्ञान नहीं अज्ञान वाला ज्ञान ले लो आप।
0: जो भी है देखो, ज्ञान से प्यार है अग हो या विग हो।
1: ओके, तो आप तो पंजाब से हो, तो हाँ, जब ऐसा चंडीगढ़ में या अमृतसर में ट्रैफिक बढ़ जाता है और अपने को वहां से जाना नहीं होता है तो क्या करते हैं अपन? या तो ऐसा साइड से निकल लेते पतली गली से, या अगर बड़ी गाड़ी हो तो बाईपास लेके निकल लेते हैं, तो बस वैसे ही बाईपास है।
0: अच्छा,
1: यहाँ पे ट्रैफिक जाम है, उससे बाईपास होके निकल लो।
0: बहुत बढ़िया, आप कहते हैं जी बाईपास इसलिए क्योंकि पतली गली निकल ले भैया, ये बात का इनका मुद्दा यहाँ पे आके खत्म हुआ। रेडियो का वॉल्यूम कम कर लो, कान का पर्दा फट गया तो सू करना पड़ेगा भैया। गुड इवनिंग, कौन बोल रहा?
2: मैं सुभाष बोल रहा हूँ।
0: सुभाष कैसे हो आप?
2: आई एम फाइन, हाउ आर यू?
0: आई एम ऑल्सो फाइन, माय मॉम सेड यू आर अ गुड बॉय, बस तेरी हरकतें थोड़ी सी खराब हैं, वो मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुभाष, ये बताइए कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाई बाईपास, सम क्रिएटिव आंसर, व्हाई इज अ हार्ट सर्जरी कॉल्ड अ बाईपास सर?
2: बिकॉज़ सी क्या होता है, व्हेन पर्सन गेट्स द फर्स्ट लव तो उसका ब्लड फ्लो सब बंद हो जाता है, द सर्जन गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू हैव द सेकंड लव इन योर लाइफ, इसीलिए द सर्जरी इज कॉल्ड द बाईपास।
0: सुभाष इज द वन हु सेज सेकंड लव। भैया जी शादी हो गई है?
2: हाँ होगी, और क्या।
0: हाँ तभी तो सेकंड लव ढूंढ रही है, लोगों को भी कह रही है ठीक है इरादा तुम्हारा, देखते हैं आगे कौन है मेरे साथ। गुड इवनिंग फनेजिया, रेडियो का वॉल्यूम कम आपका ज्यादा। हेलो, कौन बोल रहा है?
3: हाय मार्विन, दिस इज गिरीश।
0: हाय गिरीश, मस्ती की पाठशाला अपनी तो पाठशाला। गिरीश भैया, बाईपास काय को आला?
3: मेरे हिसाब से अगर सही हुआ तो पास, नहीं तो हमेशा के लिए बाय।
0: अरे वाह मेरे चतुर शेर, ये बात बनी कहाँ, दिल्ली से हो क्या?
3: नहीं, पुणे महाराष्ट्र।
0: पुणे महाराष्ट्र, मतलब इतने इंटरनेशनल एक्सपोजर ले लिया आपने, कमसम की गेड़ियां लगा लगा के, सिम्बॉयसिस की गेड़ियां लगा लगा के जी, वहां पे आपको हर किस्म का स्टूडेंट मिलता है, चाहे वो कहाँ, फिनलैंड से हो, पोलैंड से हो, अमरीका से हो, कनेडा से हो, बड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर है बड़े भैया आपके पास, इसीलिए पहुंच गए आप मेरे उस जवाब की तरफ जो मैं ढूंढ रहा था कि हाँ भैया बाईपास इसलिए कहते हैं कि अगर तो हो गया ठीक से तो हो जाएगा पास, नहीं तो बाय बाय। वेरी गुड ब्रदर, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मिला है जी फ्लेवर लाउंज का ये गिव अवे। आई होप यू कैन गो टू फ्रिस्को एंड एंजॉय दिस, कैन यू?
3: Yeah,
0: hold on the line for me, congratulations. एक कॉल और लेते हैं जी, उसके बाद चलते हैं गाने की तरफ वापस। अरे चलो, गुस्सा बहुत करती है जनता, बहुत जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग फनेजिया, रेडियो वॉल्यूम लो, पीछे की खिड़कियां बंद करो, कौन बोल रहा है?
4: हेलो, मेरा आंसर है बाय द पास्ट वाइफ।
0: बाय द पास्ट वाइफ,
4: पास्ट बाय द पास्ट वाइफ, या बाय द,
0: ओ बाय द पास्ट टू लाइफ। ओके ओके ओके ओके, बाय द पास्ट टू लाइफ। मेरे को तो एक ही पास खरीदना पड़ता था, उसको बस पास कहते थे, क्योंकि क्रिकेट खेलने के लिए स्टेडियम जाना पड़ता था गर्मियों में और गर्मियां बहुत होती थी। बट आई लाइक योर आंसर एज वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल, बट आई थिंक द वन दैट वन इज द वन दैट सेड व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, कि भैया सही हो गया तो पास है छोरा, वरना बाय बाय टाटा।

0: हाँ जी, बाईपास से क्यों कहते हैं? बाईपास इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जब छोटा भाई हमारा पास हो जाता है तो हम कहते हैं वो बाईपास हो गया। खैर, कहने का मतलब है भाई, आपको सिर्फ एंटरटेन करना हमारा मकसद है। छोटे से ब्रेक की तरफ मैं जा रहा हूँ, आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि ब्रेक के उस पार आई हैव मोर स्टफ कमिंग अप फॉर यू, एंड ये भी बताऊंगा कि और क्या खास होने वाला है, इंक्लूडिंग द कॉन्सर्ट दैट इज कमिंग टू टाउन, विशाल एंड शेखर, July 12th। कहाँ मिलेंगे टिकट्स, कैसे मिलेंगी? राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho, kisne jana.
8: Life ho ya health, kab kya ho jaye, pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust aur ab wahi ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर अर्जेंट केयर एक्सरे सीटी स्कैन हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा सब कुछ एक ही रूफ के नीचे लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 days a week 8 AM to 8 PM वॉक इन एनी टाइम 9191 काइजरवे स्वीट 205 फ्रिस्को हे मैप्स टेक मी टू माय देसी ग्रोसरी स्टोर
9: कैलकुलेटिंग राउट रीराउटिंग
8: अरे ये क्या मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है
9: लोकेशन अपग्रेडेड नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ
8: क्यों
9: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ
8: अच्छा तो सीधा वही ले चलो
10: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ स्विच द रूट
9: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड
8: आर यू टायर्ड ऑफ द सेम आर्ग्यूमेंट्स रिएक्शंस एंड इमोशनल स्ट्रगल्स मे बी इट्स टाइम टू चेंज द पैटर्न आरती वेदुला अ सर्टिफाइड एंड अक्रेडिटेड कोच हैज हेल्प्ड कपल्स पेरेंट्स एंड इंडिविजुअल्स ब्रेक फ्री यूजिंग NLP EFT हिप्नोसिस टाइम टेक्निक्स एंड सोमैटिक माइंड बॉडी कनेक्शन कॉल 269-281-1099 और विजिट thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
11: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Ductime removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jitu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with duck time.
12: सुनो कल बहुत काम है पहले ग्रोसरी फिर पूजा का सामान गिफ्ट्स भी खरीदने और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे
8: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
12: कहाँ फूडिस्तान इन ऑबरी फ्रेश ग्रोसरी हलाल मीट पूजा एसेंशियल्स लाइव पानी पूरी फ्रेश गन्ने का जूस बेकरी आइटम्स प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी एंड इनसाइड फूडिस्तान एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D-Vibe एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर
8: फूडिस्तान इन ऑबरी Everything desi, one place, one vibe.
13: Mera retirement plan ready hai.
14: Plan ya hope?
13: Matlab?
14: Matlab hai, plan matlab strategy. Hope matlab dekhte hain kya hota hai.
13: Okay, to mera wala hope hai.
14: Tabhi to, log wealth tactics se baat karte hain.
13: Kyun?
14: Because retirement ko hope pe nahi, strategy pe plan karna padta hai.
8: Wealth tactic.
15: Retirement planning with clarity and strategy. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
16: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
17: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
16: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
17: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाय सुपरहिट
18: सुनीता तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली
19: हाँ बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है
18: सेम टीचर सेम स्कूल फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है
19: डिफरेंस स्कूल का नहीं है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है
15: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
20: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
15: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
21: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
22: Hi, I'm Rajkumar Rao, and you're listening to the most popular FM station in the US. 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: सो नेक्स्ट टाइम यू सी अ लड़का लड़की विद अ गोडेज जीन्स के गोडे फटे हुए, मुंह खुला हुआ है गोडे का जीन्स के, तो आपने बताना है हाँ हाँ हवा लगवा लो दिमाग को, फ्रेश हो जाएगा.
1: सीधा करना भाई, क्या कर रहा?
2: अरे तू अपना करना यार.

0: आपको देख
1: मेरे पुराने चावल।
2: बिल्कुल ही छोटी सी स्टार कास्ट वाली मूवी है जी ये भी। भाग्य भानुशाली, आदित्य सिंह, वीरी कोडावरा, जीटू वर्मा, सुदेश बेरी, पुनीत इसर, पंकज धीर जी, लेट पंकज धीर जी, फिरोज खान विच इज अर्जुन, एंड देन ब्रजेंद्र काला, हेमंत पांडे, उर्वशी रौतेला, विंदु दारा सिंह, जाकिर हुसैन, किरण कुमार, यशपाल शर्मा, मुकेश तिवारी, आफ्ताब शिवदसानी, दलेर मेहंदी, किकू शारदा, कृष्णा अभिषेक, राजपाल यादव, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, जॉनी लीवर, फरीदा जलाल, लारा दत्त, रवीना टंडन, परेश रावल, जैकी श्रॉफ, अर्शद वारसी, जैकलीन फर्नांडिस, दिशा, हाय दिशा, सुनील शेट्टी एंड अक्षय कुमार आर इन दिस मूवी। क्या स्टार्स, मतलब पैक्ड है बिल्कुल। या तो ये फिल्म होगी बिल्कुल फुल ऑन एंटरटेनिंग या होगी बिल्कुल ही ठंडा फ्लॉप। कौन है मेरे साथ, करते हैं इनसे बात। गुड इवनिंग फन एशिया, हुज दिस? यार ये तो बात ही नहीं करते, हमारे पास इतना बिजी टाइम, लोग हमारे से बात नहीं कर रहे, ये क्या हो गया? खैर आपको ये बता दूं, विशालन शेखर आर कमिंग टू टाउन, जुलाई 12th की डेट है, आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है दिस डेट एंड दिस शो, बिकॉज विशालन शेखर हैज गिवन अस सम वंडरफुल वंडरफुल ट्रैक्स, और आपकी प्लेलिस्ट में उनके गाने जरूर होंगे फ्रॉम यू नो दोज हिप हॉप फेकर्स, विशालन शेखर, एक मैं और एक तू है, वहां से लेके और बहुत सारे गाने बनाए हैं इन दोनों ने, एंड द टिकट्स आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट विच इज cashpatelproductions.com। गुड इवनिंग फनेश, या कौन बोल रहे हैं?
3: जी मैं हामिद बोल रहा हूँ।
2: हामिद भाई क्या हाल है आपके?
3: जी बढ़िया भाई, आप कैसे हो?
2: मैं ठीक हूँ हामिद यार, बस गोडे में थोड़ा सा दर्द हो रहा था कल, बाकी ठीक है। आप बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में, क्या कर सकता हूँ आपके लिए?
3: जी बस एक कुछ अच्छा सा गाना लगा दीजिए।
2: अभी तक अच्छे नहीं लगे?
3: अच्छे लगे थे, एंजॉय करा मैं अभी जो वेलकम का।
2: अच्छा आपका, आप ये बताएं आपके लिए क्या अच्छा है, वो लगा देता हूँ यार मैं, चाय के साथ बिस्किट भी दूंगा, बताओ क्या अच्छा है आपके लिए?
3: आइला रे आइला,
2: आइला रे लड़की मस्त मस्त तू, आइला रे। कहाँ से हो आप हामिद भाई? हैदराबाद के क्या मियाँ?
3: हैदराबाद।
2: हैदराबाद के मियाँ, बड़े कमाल के मियाँ होते तुम यार। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। आई ला रे लड़की मस्त मस्त तू आई ला रे, बट उससे पहले विशाल और शेखर का एक गाना, उसके बाद आई ला रे कमिंग अप। देखो 10 बहाने जो है ना वो आईआरएस के सामने नहीं चलेंगे, इसलिए गाना तो चलेगा 10 बहाने, बट गेट विद एजी फिनटेक्स, वो आपके सारे बहानों को साइड पे करके सही राह पे ला के आपकी टैक्सेस का मैक्सिमाइज जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, चाहे वो आपकी टैक्स लाइबिलिटीज हो, दे विल मेक श्योर दैट दे रिड्यूस इट। एजी फिनटेक्स.com।

0: गई। आपको पता है गलतफहमी किसे कहते हैं? बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है, पर कईयों को ये पता नहीं होता गलतफहमी क्या होती है। मैं आपको बताता हूँ गलतफहमी होती क्या है। गलतफहमी ये होती है जनाब कि एक आदमी को अपनी सेक्रेटरी से ये सोच के वो शादी कर लेता है कि वो शादी के बाद भी पहले की तरह कहना मानेगी। इसको कहते हैं गलतफहमी।
1: इश्क में जीने मरने को हम तो है तैयार, गोली मारो दुनिया को, खुश रहो ना यार।

0: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility, and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety, and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
1: Paid for by Mark Hill for Mayor.
2: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
3: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
2: के टू ड्राइव मतलब
3: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब के टू ड्राइव हैंडल करता है।
2: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
3: 100%
4: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट k2drive.com और कॉल 214-814-0402 Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
5: Desi cravings simple nahi hoti. Unke levels hote hai. Level 1, mix veg pakora. Light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, masala omelette aur dahi bhalla. Thora nostalgia, thora comfort. Level 3, Amritsari kulcha platter ya pindi chana. Full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhook ho next level, slow cooked keema mutton. Rich, bold, no compromises.
6: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
7: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा।
6: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
8: भूख लगी
9: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
10: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
11: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
12: Ye tera ghar, ye mera ghar.
13: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
14: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
13: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
6: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
15: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna, that's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
16: Attention passengers, flight Punjab 001 to Chandigarh Wale Irving is now boarding. Destination, real Punjabi flavor.
17: Arre yaar, Dallas mein Punjab?
18: Bilkul, Chandigarh Wale, jahan butter chicken bhi asli aur naan bhi tandoor se garma garam.
19: From buttery curries and fresh naan to street style Punjabi favorites, every bite takes you straight to Punjab. Shadi ho, party ho, ya corporate event, Chandigarh Wale brings live Punjabi catering straight to your celebration. Proudly awarded Best of Dallas for Indian food by D Magazine. Skip the flight and take the shortcut to Punjab. Chandigarh Wale, Irving, where Dallas meets Punjab.
20: Aji sunte ho, soch rahi thi bete ki shadi India mein kare?
21: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
20: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
21: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
20: सच में? सब संभालेंगे?
0: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

एक बार एक बेचारा शरीफ सा पति मेरे जैसा घर जाता जाता लेट हो गया। अब क्या होता है कि जो पति होते हैं ना, इनका एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स होता है, बीवी को पता होता है कि इतने बजे इन्होंने आना है। जो कोई होता है वो 6:30 बजे घर पहुंचता है, कोई होता है वो 6:30 से 7 बजे के बीच में, कोई 7:15 7:30। सो एक स्टैंडर्ड टाइम सेट हो जाता है। अब अगर पति उस टाइम पर लेट हो जाए तो पत्नी तो पूछेगी ना, भैया कहाँ थे? तो ऐसी बस एक शरीफ से आदमी से लेट हो गया घर का काम, आते आते घर तक कुछ रास्ते में काम पड़ गए, बैटरी बैटरी गाड़ी की डेड हो गई थी, जंप करके बेचारे ने स्टार्ट किया। घर पहुंची तो बीवी ने पूछा, क्या बात है, लेट क्यों हो गए थे? वो कहता, नहीं वो पास वाली पड़ोसन भाभी है ना, उनके घर रुक गया था। बीवी ने पूछा, किस लिए? कहता, नहीं नहीं नहीं नहीं लिए।

0: He used to compose in Urdu and Hindi under pen names Ram ya Agyat, yani ki anonymous, and Wounded. Wounded ka naam jo hai, wo hi naam main aapse dhoond raha hu. Becoming widely known under the latter, which is the name that I'm looking for. In his pen name, Pandit was an honorific title conferred to him due to his specialized knowledge on several subjects. He was also a translator. He was associated with Arya Samaj and was one of the founding members of the revolutionary organization Hindustan Republic Association. On the 19th of December 1927, he was hanged for his revolutionary activities. All right, with that, let's go to see who do we have on the air with Fun Asia who can give us the right answer. Good evening to you, Fun Asia. What's your name?
1: Nishit.
0: Nishit bhai, kaise hain?
1: Theek ho sir, aap kaise ho?
0: Upar wala meherban, khuli hamari dukaan, 7 baje tak jo hai pakwan bech dalunga. Ye bataiye ki aap ye bataiye ki aap
1: mar
0: ye bataiye
1: Mangal Pandey.
0: मंगल पांडे नहीं है सर. मुझे तो लगा आप जाएंगे बिल्कुल सही डायरेक्शन में. आप थोड़े से पहले उतर गए हैं ट्रेन पे. अगले स्टेशन तक आते तो ज़रूर आप शायद मेरी बात तक पहुंच जाते. बट आपकी कॉल का धन्यवाद करता हूं सर. बहुत बहुत थैंक यू फॉर कॉलिंग. लेट्स सी हु डू वी हैव नेक्स्ट विद अस. गुड इवनिंग फन एशिया. रेडियो का वॉल्यूम कम अपना बढ़ा लो. कौन बोल रहा है जी?
2: सर मैं दीपक चौधरी बोल रहा हूँ.
0: दीपक चौधरी साहब कैसे हैं आप?
2: एकदम बढ़िया. आप कैसे सर?
0: बढ़िया बढ़िया सर. आप तो वाकई में गणेश चौधरी लाग रहे. ये बताओ चौधरी साहब, किसकी किसकी बात कर रहा हूँ जी मैं आज?
2: हम बात कर रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी की.
0: ये बताइए, रिचर्डसन जा सकते हैं खाना वाना खाने?
2: बिल्कुल जा सकते हैं सर, सब परिवार.
0: अरे बहुत बढ़िया आया, कमाल कर दिए हैं चौधरी साहब. बिल्कुल राम प्रसाद बिस्मिल ही है, क्योंकि बिस्मिल का संदेश है काकोरी जाके लूटेंगे, काकोरी कबाब खा के लूटेंगे, बम बनाएंगे बम. फिर वो कहता है वो गाय ने दूध देना बंद कर देना. वो कहती है गाय ने दूध देना बंद कर देना, तुम बम कह के डराई जाना उन्हों. यस सर, एब्सोल्युटली राइट आंसर. इट इज राम प्रसाद बिस्मिल. होल्ड द लाइन फॉर मी, आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन ऑफ द ईयर. टुडे वाज द डे 11th ऑफ जून 1897 व्हेन दिस लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर वाज बॉर्न. एंड ऑन द 19th ऑफ दिसंबर 1927 ही वाज हैंग्ड for his revolutionary activities. We remember Ram Prasad Bismil on today's date, and his pen name, which widely became known, was also Bismil.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस। ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क। ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न। या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर।
2: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
1: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
3: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं, रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
4: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338। The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ।
5: जिस बात का डर था वही हुआ, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन।
6: अरे कहना क्या चाहते हो?
7: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी, अब टेंशन का टाइम गया। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर। फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अब

0: परीक्षा की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी, अब टेंशन का टाइम गया। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर। फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, इरविंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू, कॉल 214-666-6259 और विजिट passionhealthprimarycare.com। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ, योर लैंग्वेज, योर कम्फर्ट।
1: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को।
2: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
1: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
3: इस शहर को हुआ क्या, कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
4: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
5: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
6: मामू देखो क्या हो गया।
7: ओ क्या हो गया?
6: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है।
7: ओए जर्मन का कमाल है,
6: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
7: ओ नहीं, ओए जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, VW और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं, और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623, कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
8: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
9: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
10: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
11: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
12: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
11: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
13: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
14: इन प्लेनो।
13: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
10: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
15: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
16: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.
17: हिटलर नु जानते हो?
18: अडॉल्फ हिटलर? हाँ जी,
17: वो भी मार्स का है, मार्शल।
19: वो मेरे एक्चुअली दादाजी डेथ बेड पे, पता नहीं बार बार उठ जाते हैं और कहते हैं मुझे सरगोधा जाना, और आप सबको पता है कि सरगोधा तो है
12: बॉर्डर के उस साइड।

0: कहाँ मैच?
1: चांद पे।
0: चांद पे मैच है? अच्छा मून पे है, ठीक है।
1: गैरों कभी मून।
0: मैं नहीं, वो जेफ बेजोस और एलन मस्क कर रहे हैं ट्राई, बेचारों को एंट्री नहीं दे रहे।

0: और आप लोगों को भी कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमन हमारे साथ भी हैं, और अमन है उरा डेट के साथ, जो कि आपके साथ साथ चल के अमन से आपके इस डेट के सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलेंगे. लेट्स गेट हिम ऑन द एयरवेव्स. अमन, गुड इवनिंग टू यू. दसो जी, टेल आवर पीपल हाउ कैन यू हेल्प अमन से उनका ये चैन वापस दिलवाना एंड गेटिंग देम आउट ऑफ डेट.
1: जी हाँ, अमन चैन आपको वापस दिलवाएंगे ताकि आप डेट फ्री हो जाएं. और अमन और उरा की तरफ से नमस्कार. महीना चल निकला है, पहला हफ्ता भी हो गया, सेकंड वीक भी शुरू हो गया, लेकिन अब इस वीक में अब तक तो आपको क्रेडिट कार्ड की चिट्ठियां मिलनी शुरू हो चुकी होंगी और आपने स्केड्यूल करना भी शुरू कर दिया होगा मिनिमम पेमेंट. लेकिन वो गलती बार बार मत दोहराइए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट से क्रेडिट कार्ड नहीं उतरता, ये तो फॉर श्योर है. क्योंकि किसी क्रेडिट कार्ड का 20, किसी का 22, किसी का 40% इंटरेस्ट आप पे करते हैं महीने दर महीने, वो नहीं उतरता. और अगर आपके क्रेडिट कार्ड पूरे फुल हैं तो वो तो समझ लो कि आप फुल हैं या बंद हैं, दैट इज अ इक्वल थिंग. क्योंकि जब उसमें खर्चने लायक कोई जूस बचा ही नहीं तो फिर उसका मिनिमम पेमेंट देने का फायदा क्या. इससे बेटर है सेटलमेंट कराइए, आधे से ज्यादा कर्जा माफ हो जाएगा. आधा क्रेडिट कार्ड का कर्जा माफ करवाना हो तो उरा को कॉल कीजिए. क्रेडिट कार्ड हो, पर्सनल क्रेडिट कार्ड, बिजनेस के क्रेडिट कार्ड, स्टोर के क्रेडिट कार्ड, या पर्सनल लोन भी अगर आधा माफ करवाना हो, या गाड़ी का लोन जो रीपोजेस या गाड़ी टोटल हो चुकी है, उन तरह के लोन्स जो आपके सर पर हैं और महीने दर महीने आप मिनिमम पेमेंट भर भर के परेशान हो चुके हैं, तो जस्ट गिव अस अ कॉल. फ्री एनालाइज करके आपको बताएंगे कि आप कितना पैसा बचा सकते हैं. डेट फ्री हो जाएंगे, आधा कर्जा माफ हो जाएगा, जो बाकी बचेगा उसकी इंटरेस्ट फ्री किश्तें बन जाएंगी, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है. और डेट फ्री होने का बेनिफिट का आप क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करेगा इवेंचुअली, आपके कोई लोन्स अप्रूव होने आसान हो जाएंगे क्योंकि कर्जा खत्म हो जाएगा. सो हमारा टोल फ्री नंबर नोट कीजिए, 1-888-888-9914, 1-888-888-9914. और अगर आप मुझसे अपने दोस्त अमन से बात करना चाहते हैं, एनी टाइम कॉल मी, टेक्स्ट मी, व्हाट्सअप मी. मेरा डायरेक्ट नंबर है 9167736355, 9167736355. और हमारी वेबसाइट है www.ura.org. तो मिनिमम पेमेंट करने से पहले कॉल जरूर कीजिए, आधा कर्जा आपका माफ हो जाएगा.

एक लड़का मेरा जैसा छोटा था जब गया भागता हुआ मम्मी के पास, और मम्मी को बोलता, मम्मी आज आखिर बता ही दो कि हमारे पापा का नाम क्या है। मम्मी कहती, बेटे तुम्हारे पापा का नाम है सुनील कुमार। वो कहता, मम्मी अगर पापा का नाम सुनील कुमार है तो टीचर ये क्यों कहती रहती है कि तू कमाल का लड़का है, कमाल का लड़का है। मैं भी कमाल का लड़का हूँ जी, फिलहाल मेरे पापा का नाम माइकल है, बट यहाँ कमाल करने आता हूँ जी। फॉर नाउ इट इज़ टाइम फॉर मी टू से बाय बाय, अदियोस, आई विल सी यू ऑन मंडे इवनिंग। नाउ जिंदगी रही तो फिर से होगी जी मुलाकात, मंडे टू थर्सडे 5 to 7 PM रहता हूँ आपके साथ विद द शो द बिंदास शो, थैंकिंग फन एशिया एंड द ठक्कर परिवार फॉर दिस वंडरफुल स्टेशन एंड फॉर माई जॉब जिसमें मैं लेता हूँ जी खूब मजे आप लोगों के साथ। And I try to entertain you to the fullest of my capacity. दुआओं में मुझे याद रखिएगा, I'll do the same for you. And जाते जाते बोल दूं कि मेरे बाद जो आएंगी उनका नाम है इपी द हिपी, न्यू एडिशन टू द फन एजिया फैमिली, फुली सपोर्ट हर, कॉलिंग शॉलिंग करो उनको जी, और गाने वाने रिक्वेस्ट किया करो, बातें उनकी लाइट हैं, और आई एम श्योर दैट इफ यू हर्ड हर यू विल एंजॉय द कॉन्वर्सेशन, इफ यू हैवंट स्टे ट्यून्ड एंड यू विल गेट टू हियर इपी द हिपी। जाते जाते ये भी कहूँगा कि किड्स आर यू नो इन योर हैंड, यू कैन गिव देम अ लॉट मोर इन देयर यूथ, जैसे कि आप उनको बैंकिंग सिखा सकते हैं, उनको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में सिखा सकते हैं, हाउ डज रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट्स वर्क, एंड अगर घर में बैकयार्ड है आपके पास तो बेसिक वेजिटेशन, सब्जियां कैसे उगाई जाती हैं। दीज आर स्मॉल थिंग्स बट इवेंचुअली दे आर बिग लाइफ लेसन्स। और अगर गाड़ी की बैटरी अगर डेड हो जाए जंप कैसे करेंगे, टायर पंचर हो जाए स्टेपनी कैसे चेंज होती है, ट्राई टू इन्वॉल्व देम इन थिंग्स दैट यू डू एज वेल एंड गिव एज मच टाइम टू योर फैमिली एज पॉसिबल, बट इन द प्रोसेस डोंट फॉरगेट योर सेल्फ बिकॉज यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। चाहे आप लेडी हैं, चाहे आप लेडा हैं, आई मीन मैन और फीमेल, यू गॉट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ first because everything around you is because of your wellness and your joy, so never kill the kid inside you, us bacche ko hamesha jaga ke rakhein jo aapke andar hai, and always make yourself the priority and everything else will fall in place. With that, it is adios, bye bye, good night, shabakhair.